चापत चरण मोहन लाल, धन धन राधिका के चरण, समग्र विश्व में लक्ष्मी नारायण के चरण दबाती हैं। पर धन्य है वो ब्रजभूमि जहां मोहन बैठ करके दिन रात श्री किशोरी जी के चरण दबाते हैं, राधा रानी के चरण दबाते हैं। जब कृष्ण ब्रज की धरती को छोड़कर के मथुरा जा रहे थे, सारी गोपियां कृष्ण के रथ के सामने लेट जाती। हे कान्हा, आप और हम विचार करके देखें, अगर थोड़ी देर के लिए हमारी श्वास हमसे छीन ली जाए तो हमारी क्या दशा होगी, कैसे जी पाएंगे? यही दशा गोपियों की थी। कृष्ण से दूर मतलब प्राणों से दूर, सब सामने लेट गई। हे उद्धव, हे अक्रूर, तुझे रथ चलाना है तो हमारे ऊपर से निकाल के लेके जा। श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों को कि गोपी क्या बात करती हो तुम, दो दिन के लिए इतना ये सब क्या करने की आवश्यकता है, दो ही दिन की बात है, मैं वापस भी तो आने वाला हूं। पर जो प्रेमी दिल होता है, जो प्रेमी हृदय होता है, वो समझ जाता है कि हाँ, ये कह तो रहे हैं कि वापस आएंगे, पर मन कह रहा है कि ये अंतिम बार है। गोपियों को लग रहा है जितना देख सकती है कृष्ण को देख ले, उसके बाद पता नहीं ये अवसर ये मौका आए ना आए। तभी कृष्ण ने गोपियों से पूछा, गोपी राधा कहीं दिखाई नहीं दे रही, क्या वो मुझे विदा करने के लिए नहीं आएगी? गोपियों ने बताया कि कान्हा, आई तो है किंतु कहीं उसको देख करके तुम्हारे मन में कोई ग्लानि ना आ जाए, कहीं तुम अपनी लीला में उसको बाधा ना समझने लगो, इसलिए एक पेड़ के पीछे कोने में छुपी बैठी है। श्री कृष्ण स्वयं रथ से उतरे और जहां राधा बैठी है, श्री कृष्ण उस वृक्ष की ओर बढ़े। श्री किशोरी राधा रानी ने देखा कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, हृदय कंपन करने लगा, कांपने लगा। श्री कृष्ण आए और राधा को कहा, राधा कोई जाने न जाने पर तू तो जानती है मेरे अवतार का उद्देश्य, क्या दूर हो जाने से प्रेम कम हो जाता है? क्या राधा कभी कृष्ण से अलग हो सकती है? क्या हमारा प्रेम कम हो सकता है? कभी नहीं। लेकिन आज मैं कृष्ण एक वादा चाहता हूं तुमसे, मैं जा रहा हूं इस ब्रज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तेरे भरोसे। मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद ये ब्रज टूट जाएगा, इस ब्रज के लोग अपना धैर्य नहीं रख पाएंगे, पर मैं ये भी जानता हूं मेरे जाने के बाद इस ब्रज को एकमात्र कोई संभाल सकता है तो वो तुम हो। इसलिए मैं भले चला जाऊं, ये ब्रज भले कमजोर हो जाए, लेकिन राधा तू अपने हृदय को संभाल के रखना और आज मुझसे एक वादा कर दे, अगर मुझसे कभी प्रेम किया हो, अगर मुझे कभी अपना माना हो,
तो कभी भी इस आंख से अश्रु मत गिरने देना। आंख से अश्रु गिरेगा तो ये पूरा ब्रिज जो तेरी शक्ति से चलने वाला है वो जी नहीं पाएगा। और वो वादा लेकर के श्री कृष्ण मथुरा की ओर चल पड़ते हैं। यशोदा भी दुखी थी कि कृष्ण गया है, नंद बाबा भी दुखी थे, ग्वाल बाल गोपियां भी दुखी थी, लेकिन राधा की पीड़ा कौन जान सकता है। जिसका हृदय भरा है कृष्ण प्रेम से, किसी ने पूछा राधा कौन है, तो कहा कि जिसका हर रोम रोम कृष्ण के प्रेम से बना हो वही राधा है। वो दिखती एक कन्या जैसी है लेकिन वो कृष्ण के साक्षात प्रेम का स्वरूप है। प्रेम ने एक आकार धारण कर लिया और उसी आकार का नाम राधा है। ये प्रेम की ही परिभाषा तो हो सकती है कि वहां राधा याद करती है और वहां द्वारिका में बैठे बैठे कृष्ण की आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। ये प्रेम की गाथा है। प्रेम का मतलब संकीर्णता से मत लगाइएगा कि एक पुरुष और नारी का प्रेम राधा कृष्ण का प्रेम है, बिल्कुल नहीं। एक समय ऐसा आता था कृष्ण के जीवन में जब कान में राधा सुनता नाम सुनाई देता था तो कृष्ण खड़े खड़े कांपने लगते थे, शरीर कांपता था, हाथ कांपने लगते थे। प्रेम में आनंद है तो प्रेम में पीड़ा भी बहुत है, पर इस पीड़ा में भी आनंद है। श्री कृष्ण तो वादा करके चले गए कि वापस आऊंगा, प्रतियात व्रज में लौट करके आऊंगा। मुझे एक शब्द बहुत प्रिय है और वो शब्द है भरोसा, अर्थात जिनसे आप प्रेम करते हो उनकी हर बात पर आपको पूर्ण विश्वास होता है, भले वो आए या ना आए। लेकिन ब्रजवासियों को इसी बात पे भरोसा था कि वो कह कर के गया है कि वो वापस आएगा, मतलब जरूर आएगा, उस बात पर विश्वास है हमें। और फिर एक दिन आया जब कृष्ण तो नहीं आए पर कृष्ण ने अपना एक मित्र भेजा, उद्धव। उद्धव ने आकर के इन ब्रज गोपियों को, इन पागलों को, प्रेमी कौन होता है, पागल ही तो होता है, समझाने का प्रयास किया, पर यहां कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था, कोई तैयार नहीं था।

श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी तो जानू क्या होता है राधा का प्रेम, दिन रात सुनते हैं राधा का प्रेम राधा का प्रेम, कैसे जान पाओगे? उसके लिए तो राधा बनना पड़ेगा, राधा जैसा हृदय राधा जैसा स्वभाव लाना पड़ेगा, क्योंकि कृष्ण के पास भी राधा जैसा हृदय नहीं है। इतनी उदार

ऐसी शिरानी श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी जानना है क्या होती है प्रेम की पीड़ा, कैसी दशा होती है प्रेम। तो ठीक है, बन जाओ राधा, लाओ राधा जैसा हृदय, और फिर वही कृष्ण रूप कृष्ण का और दिल राधा का लेकर के बंगाल में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होगा। महाप्रभु के चारों ओर लोगों को बिठाना पड़ता था कि कोई भी उनकी कुटिया में घुसे तो कह देना कोई कृष्ण नाम नहीं बोलेगा, क्योंकि कृष्ण सुनते ही महाप्रभु का शरीर रोमांचित हो जाता था। हा कृष्ण कहते कहते बेहोश होके धरा पर जमीन पर गिर पड़ते थे। उसी राधा प्रेम को जानने के लिए महाप्रभु प्रकट हुए और समस्त जगत में महाप्रभु ने उस प्रेम का प्रचार प्रसार किया। गोपी भाव मंजरी भाव क्या होता है उसको अपने परिकरों में प्रसाद के रूप में बांटा। प्रेम ऐसा ही होता है, इसलिए कहा है

राधा नाम से श्री कृष्ण को, वही प्रेम हमें भी जिस दिन उस राधा नाम से हो गया कि उस राधा नाम के बिना

सबसे धन्य दिन होगा। वो मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि हमारा हृदय, हमारा मन उन श्री किशोरी जी के चरणों में लग जाए, जिनका रोम रोम कृष्ण प्रेम से गढ़ा है, बना है। प्रेम शब्द की सार्थकता जहां जिनके चरणों में होती

कोई नहीं कर सकता। किसी में इतनी हैसियत ही नहीं है कि उस प्रेम की परिभाषा उसकी

वेदना होती है, पीड़ा होती है। यद्यपि मीरा और राधा की कोई तुलना नहीं है, राधा राधा है, वो भक्त नहीं है, वो साक्षात कृष्ण की इष्ट है। मीरा भक्त है श्री ठाकुर के चरणों की, पर फिर भी मीरा की भक्ति भी प्रणम्य है। एक आई थी अकेली, लेकिन हजारों को दीवाना बना गई, प्रेमी बना गई, प्रेम करना सिखा गई। लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि मीरा द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, कभी वापस नहीं आई। कुछ कहते हैं कि समाई नहीं थी, निकल गई थी वहां से, कहीं और चली गई, फिर मिली नहीं कभी, कैसे समा सकती। लेकिन ये जो भक्त आते हैं इस दुनिया में, ये भगवत स्वरूप ही होते हैं। भगवान भेजते हैं इनको कि दुनिया को दिखाओ मुझसे कैसे प्रेम करना चाहिए। और मीरा भी उन्हीं में से एक थी, और वो जहां से आई थी वही समा गई, कृष्ण से आई थी और कृष्ण में समा गई। मौत भी स्पर्श नहीं कर पाई है उसका। भक्ति को मौत कभी मार नहीं सकती है, काल कभी मार नहीं सकता है। इसलिए मीरा मीरा है, राधा राधा है, और ब्रज की गोपियां उनकी भक्ति भी प्रणम्य है, प्रणाम के योग्य है। तो हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, ना हम राधा बन सकते हैं, राधा बनना तो कोई मूर्खता है सोचना भी। भक्त कहते हैं हमें राधा दास से प्राप्त हो जाए, यही जीवन की धन्यता है। ना हम मीरा बन सकते हैं, ना हम गोपी बन सकते हैं, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चल करके हमेशा प्रयास यही करना चाहिए कि जो भगवान की वास्तविक भक्ति है उसकी प्राप्ति बस हमें हो जाए।

रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: सब ठीक हो जाएगा, पॉजिटिव सोचो, इतना क्यों सोच रहे हो। कभी कभी ये लाइंस मोटिवेशन नहीं प्रेशर बन जाती है। हेलो एवरीवन, मैं हूं आज पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं जस्ट टॉक अबाउट इट सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और आज हम बात करेंगे टॉक्सिक पॉजिटिविटी पर। क्या हर वक्त पॉजिटिव रहना जरूरी है या कभी कभी अपनी फीलिंग्स को फील करना भी हेल्दी होता है। मेरे साथ हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। वेलकम मैम।
1: ओम शांति। थैंक यू।
2: ओके ज्योति जी, टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है?
1: बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन लिया है। टॉक्सिक भी है और पॉजिटिविटी भी है। तो जरूरी बात है, जब पहला शब्द ही टॉक्सिक आ रहा है तो पॉजिटिविटी में कुछ ना कुछ तो मिक्सचरिटी होगी। टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब ही होता है कि जब किसी को पॉजिटिव करने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, उनको बार बार, वो चाहते कुछ और हैं लेकिन उनको कहा जा रहा है आप पॉजिटिव रहिए, आप पॉजिटिव सोचिए, आप पॉजिटिव ही आपको सोचना है, करना है, और उस व्यक्ति की अपनी मेंटल स्टेट नहीं है उस चीज़ को सोचने की। हमारे थॉट भी इस तरीके से होते हैं, एक होते हैं राइट थॉट और एक होते हैं पॉजिटिव थॉट। राइट थॉट वो है कि आप जो चीज़ जैसी है वैसे ही आपने बताया, उसको कहा जाता है राइट थॉट्स। लेकिन जो पॉजिटिव थॉट्स की अगर बात की जाए तो पॉजिटिव थॉट्स उसको कहा जाता है कि गलत सिचुएशन में भी आप उसको अच्छा कैसे देख सकते हैं। जो यहाँ टॉक्सिक पॉजिटिविटी की बात कही गई, ये एक्चुअल में राइट और रॉन्ग थॉट की बात है। जो राइट थॉट है माने जो व्यक्ति गलत है उसको हम गलत ही कह रहे हैं, जो राइट है उसको हम राइट ही कह रहे हैं। तो इसको राइट थॉट्स कहे जाते हैं कि आप गलत नहीं हैं, कि वो व्यक्ति वैसा है, लेकिन अब हमें अगर पॉजिटिव करना है तो पॉजिटिव थॉट्स का मतलब होता है कि पॉजिटिव में नेगेटिव है हमें ये पता है, लेकिन फिर भी हमें उसके लिए पॉजिटिव कुछ अफर्मेशन या कुछ ना कुछ सोचना है, उसको पॉजिटिव थॉट्स कहा जाता है। जो इनसे भी ऊपर उठते हैं उनको कहा जाता है एलिवेटेड थॉट्स। एलिवेटेड थॉट का मतलब है कि रफ से रफ सिचुएशन, आपका दुश्मन सामने खड़ा है, आप उसके लिए भी वेल विशर हैं। जब ऐसे थॉट हमारे हो जाते हैं तब हमें उन लोगों के बीच में उन लोगों की उपाधियां दे दी जाती हैं, जैसे महात्मा हो गए, देवात्माएं हो गए, उनको कहा जाता है। लेकिन हम सब अपने आप को उस लेवल पर नहीं देखते, तो हमें ये लगता है कि जो व्यक्ति गलत है उसे गलत हम क्यों ना समझें, है ना। और फिर कोई कह रहा है कि नहीं आप उसको गलत नहीं समझो, आप उसको सही समझो, आप उसके प्रति। अब जब वो प्रेशराइज हमें मिलता है तो उसे कहा जाता है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, जो हमें प्रेशर दे रहा है दूसरों को पॉजिटिव सोचने के चक्कर में। हम अपने अंदर बहुत ज़्यादा अपने अंदर सप्रेशन ले रहे हैं, अपने अंदर एक दबाव दे रहे हैं जिसमें मुझे खुशी नहीं हो रही है। और जब मुझे खुशी नहीं हो रही है तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव ही है और वो टॉक्सिक ही बनेगा। तो टॉक्सिक ही इसको ले तो ज़्यादा बेटर है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी ना कह करके टॉक्सिक थॉट कहना ही इसको राइट वे में बात होगी। क्योंकि पॉजिटिविटी में कहीं भी टॉक्सिक चीज आ ही नहीं सकती है। पॉजिटिविटी का मतलब ही सिर्फ पॉजिटिव है। अगर दूसरा हमें एक सजेशन दे रहा है कि आप सोचे, ये उसकी ओपिनियन है, चूज आपको करना है कि आप उसको किस वे में लेना है। अगर आपको लगता है कि आप उस चीज को कर सकते हैं तो आपके लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आप जबरदस्ती उसे कर रहे हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव नहीं, वो नेगेटिव थॉट्स बन जाएंगे और वही फिर टॉक्सिक बन जाते हैं।
2: बिल्कुल सही बात है।
1: और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण अगर हम देखें, जैसे अभी ही तीन लड़कियों ने जो सुसाइड किया, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हम जो आ रही है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो हमने सुनी है बातें कि उनके फादर ने सिर्फ उनको मना किया कि आप मोबाइल में कोरियन चीज़ें या उसी चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ना लें, सिर्फ उसको मना करने के पीछे। अब वो राइट ही था, रॉन्ग तो नहीं था, अगर हम सब देखें तो वो रॉन्ग नहीं है कि उनको मना किया जा रहा है ज़्यादा टाइम मोबाइल्स में नहीं आप रहो, लेकिन उनके अंदर वो इस कदर रच बस गई हैं कि उनको अपनी मौत ज्यादा इजी लगी बशर्ते उन चीजों को छोड़ने। तो पॉजिटिव थॉट उनके लिए टॉक्सिक हो गया है। तो था उनके फादर का पॉजिटिव, लेकिन उन्होंने उसको टॉक्सिक के रूप में लिया और अपने ही जीवन की जो कहे कि एक कहानी थी, एक सुंदर जीवन बनता, तो उसको उन्होंने खत्म कर लिया। इसी को कहा गया है कहीं ना कहीं टॉक्सिक और पॉजिटिविटी। मैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं कहूंगी क्योंकि पॉजिटिविटी में कभी टॉक्सिक नहीं होता है।
2: जी बिल्कुल सही।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी।
1: प्रिया जी, क्या हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना जरूरी होता है?
2: मैं फिर से इसमें आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आप अपनी लाइफ में चीजों को, अच्छी चीजें जो भी हैं, बढ़ाना चाहेंगी या घटाना चाहेंगी?
1: बढ़ाना चाहेंगी।
2: तो बस फिर पॉजिटिव रहना जरूरी होता है, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब ही है अच्छा, यानी बढ़िया साइड। और बढ़िया साइड को हर कोई बढ़ाना ही चाहेगा, और इसका अगर हम स्टार्टिंग बहुत छोटे टाइम से कर दें, आज से कर दें, चलो आज मैं 50 साल की हूँ लेकिन मेरा जीवन हमेशा उतराव चढ़ाव में रहा है और मैं हमेशा नेगेटिव ज़्यादा सोचती हूँ, पॉजिटिव कम, लेकिन अब मैं अगर बदलना चाहती हूँ तो आज और अभी मुझे अपने आप को पॉजिटिव दिशा में ज़्यादा ले जाना चाहिए। जितना मैं पॉजिटिव रहूँगी, और जो मैं कहती हूँ कि जैसे नेगेटिविटी आज हम चारों तरफ देखते हैं, ये बढ़ रही है, ऑफकोर्स बढ़ ही रही है, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बिल्कुल।
2: तो ये नेगेटिविटी जो बढ़ रही है, तो इसको काटने की जो दूसरी चीज है, जो वायरस आता है तो एंटीवायरस उसको देते हैं, तो जितना वायरस है उस लेवल का एंटीवायरस दिया जाता है। तो आज नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है हमारे चारों तरफ, तो उसको काटने के लिए हमारे को फिर पॉजिटिविटी, ऑफकोर्स पॉजिटिविटी ही लेना पड़ेगा। तो उसी लेवल का, उसी क्षमता का उतना ही जो कहें अमाउंट, हमें पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम अपने जीवन के हर उस नेगेटिव को काट सकें जो हमारे अंदर अब आ चुका है, हमारे वर्ड्स में, हमारे थॉट्स में, हमारे एक्शंस में, हमारे हर चीज़ के बिहेवियर में। इनफैक्ट डेस्टिनी में भी हम अब देख रहे हैं कि लोगों को नेगेटिव जो है वो अचीव हो रहा है, और ये ऑल बिकॉज ऑफ मी है, ये दूसरों के कारण नहीं है। जो हम अगर अच्छे से गांठ बांध लें कि मैं आज अगर दुखी हूँ तो वो मेरी वजह से हूँ, मेरे साथ कुछ भी अगर हो रहा है उसका मूल कारण मैं ही हूँ। बीच में कई पहलू, कई चित्र हम देखते हैं, लोगों को हम नाम दे देते हैं, उसका डिबिट हम दे देते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जो भी मेरे आसपास हो रहा है, उसका मूल कारण, जो मेन जो रीज़न है, वो मैं ही हूँ। तो अगर मैं अपनी सोच, मैं अपने बोल, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाता हूँ तो वो मेरी डेस्टिनी तक ज़रूर अचीव होता है। लेकिन हाँ, मेरे अंदर क्या उतना पेशेंस है, मैंने कोई चीज़ बिगाड़ी है, आज मैंने कोई चीज़ बिगाड़ दी है, तो एक क्षण में कोई चीज़ जब बिगड़ी नहीं है तो एक क्षण में वो चीज़ बनती भी नहीं है। तो उसको अगर बनाना है, तो अगर मैं और नेगेटिव होता हूँ तो वो बनती नहीं, वो और बिगड़ती है। चाहे वो बात ही है, घर में कोई बात हो गई, मैं नेगेटिव हूँ, चार लोग पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो वो मेरे को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भी दे रहे हैं, बातें भी दे रहे हैं, लेकिन मैं नेगेटिविटी ही बढ़ा रही हूँ। मैंने अब एक को अपनी और साइड कर लिया, यानी नेगेटिव बना दिया, धीरे धीरे तीसरे को भी नेगेटिव बना दिया, तो बात सुलझेगी या बिगड़ेगी?
1: बिगड़ेगी।
2: तो उसी प्रकार से नेगेटिव को काटने के लिए मुझे पॉजिटिव होना, मुझे अपने आप को चेंज करना, ये बहुत बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: अच्छा, जब हम किसी नेगेटिव सिचुएशन में होते हैं और हमें नहीं चाहिए कि कोई बार बार बोले सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी वो सिचुएशन नेगेटिव फेज में चल रही है, तो ये क्या सब ठीक हो जाएगा कहना कब हार्मफुल हो जाता है सामने वाले पर्सन के लिए?
2: जब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले व्यक्ति को, जिसको भी हम बात समझाने जा रहे हैं, उसकी मेंटल स्टेट को देखना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल,
2: इसीलिए कहा भी जाता है कि दवाई नब्ज देख के दी जाती है। किसी को नब्ज, अगर कोई हाई डोज नहीं ले सकता है तो उसको बहुत मीठी गोलियों से दिया जाता है और तब जाके वो उस गोली को लेता है। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही हार्ड दे देंगे तो व्यक्ति झेल नहीं पाएगा और उसका कुछ गलत इफेक्ट हो जाता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव सिचुएशन में चल रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी मन की बात को, मन की स्थिति को समझने की कि वो एक्चुअल में चाहता क्या है, और उसके मन की स्थिति इस समय सिर्फ अपने मन की बात सुनाना चाहती है, उसको नहीं चाहिए कोई सजेशन। एक्चुअल में आज की जो समय चल रहा है वो इसी तरीके का है। आज हर कोई अंदर भरा हुआ है और हर कोई अपने आप को खाली करना चाहता है, लेकिन उसने अपने माइंड को एक चीज़ दे दी है, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और टाइम बहुत सारा है, लेकिन उस टाइम को कहीं और लगा रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ टाइम देना बहुत ज़्यादा हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है, या रिश्तों को बनाने में इतना समय दे करके बैठना हमारे लिए इतना कंपल्सरी नहीं है, हम अपनी लाइफ थोड़ी सी इंजॉय करें। इंजॉयमेंट किस में दे रहे हैं? जो शायद चीज़ें मेरे पास सदा नहीं रहने वाली। आज व्यक्ति दूर बैठे दोस्त से ऑनलाइन बात कर रहा है, उससे अपने मन की बातें शेयर कर रहे हैं, लेकिन जो घर के अंदर बैठे लोग हैं उनके पास बैठने के लिए आज किसी के पास टाइम नहीं है। घर के अंदर ही है, सब अपने अपने मोबाइल्स में लगे हुए हैं, किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि एक दूसरे का चेहरा भी कभी ढंग से देखा हो। पहले यही होता था कि मोबाइल्स ही होते थे और चेहरों के भाव ही समझ जाते थे। आज न माता पिता न बच्चे किसी के भी भाव समझ नहीं पा रहे हैं। अगर कोई समझ रहा है तो शायद उनको समझाने का तरीका सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा अगर बच्चा छोटा है तो बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाना पड़ता है, एप्पल दिखाना पड़ता है, तब वो ए शब्द जानता है, ए लिखना जानता है। अगर हम उसको पहले दिन ही एप्पल ना दिखा करके ए लिखना सिखाएं या पूरा एप्पल लिखना सिखाएं तो शायद नहीं कभी सीख पाएगा। तो इसके लिए पहले उसको रटाया जाता है, उसके माइंड में वो चीज़ फीड की जाती है। सेम ऐसे ही किसी भी व्यक्ति अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन में चल रहा है तो सबसे पहले ज़रूरी है उसको ये कहने के लिए कि आपको खुशी किस काम में मिल रही है, वो काम आप करें। आपको गेम्स में खुशी मिल रही है, आप गेम करें। आपको म्यूज़िक में खुशी मिल रही है, आप म्यूज़िक सुने। आपको डांस में खुशी मिल रही है, आपको ड्राइंग में खुशी मिल रही है, जिस चीज़ में आपको खुशी मिल रही है उस काम को करें। लेकिन वो खुशी का जो प्रोसेस, हम वो मेरी कोई हॉबी होनी चाहिए। आजकल क्या है कि हमने हॉबी किसको समझ लिया है, मुझे कुछ नहीं करना है उसको हम हॉबी कहते हैं। वो हॉबी नहीं है, उसको बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन उसको कहा जाता है। इसका अर्थ है कि हम सिचुएशन से भाग रहे हैं, तो कब तक हम भागेंगे? भागने से तो कभी भी समस्याओं का हल नहीं होता है। तो थोड़ा सा अपने मन को जो मुझे हेल्दी कर दे, वो टाइम हमें हेल्दी टाइम अपने आप को देना है, ताकि मैं अपने इंटरनल में स्टेबिलिटी ला सकूं। जब मेरे इंटरनल में वो पीसफुल होगा, वो स्टेबिलिटी होगी, तो हमें किसी की भी बात पॉजिटिव फिर नेगेटिव नहीं लगेगी। लेकिन होता क्या है, व्यक्ति पहले ही भरा हुआ है, उसके बाद से दूसरा भी कोई बोल रहा है, तो वो बातें फिर चुभन हो जाती हैं और वो व्यक्ति इतना इरिटेट हो जाता है कि जो सही लोग हैं उनके पास भी कभी नहीं बैठना चाहता है, वो उनसे दूरी बना लेता है, और वो बहुत हार्मफुल है। हम एक गेम कराते हैं, आपने भी शायद देखी हो, कि बैलून को फुलाया जाता है और बैलून को तोड़ने के लिए कहा जाता है, तोड़ने का कहा भी नहीं लेकिन तोड़ना लोग शुरू कर देते हैं। एक जगह हम यही गेम करा रहे थे, तो एक बच्चे ने अपना बैलून, जब दूसरा उसको फोड़ने आ रहा था, उसने अपना बैलून खुद फोड़ दिया। और ये सिचुएशन बहुत हार्मफुल होती है कि जैसे ही कोई नेगेटिव चीज़ हम और आती हुई देखते हैं, तो हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, हम अपने लिए ही उसको हम जीवघात कर लेते हैं, हम अपने लिए सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, हम लोगों से रिलेशन ख़त्म कर देते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है पहले जिस भी नेगेटिव व्यक्ति हो रखा है उसके नेगेटिविटी को पॉजिटिव नहीं करके पहले नेगेटिव को कम करने के लिए उसको खुशी कहाँ से मिलती है वो खुशी की बातें बताना।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात है।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: प्रिया जी, क्या टॉक्सिक पॉजिटिविटी इमोशंस को सप्रेस करने की आदत बना देती है?
2: जैसे कि ज्योति जी से पहले बात हुई कि या तो हम टॉक्सिक ही बोल लें या तो पॉजिटिविटी बोल लें, लेकिन क्योंकि ये वर्ड आ चुका है और ये वर्ड हमारी आने वाली ये जो जनरेशन है जो चल रही है जनरेशन जी, उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्शियस कर रहा है कि क्या ये चीज़ें जो आपने कहा हमारी इमोशंस को सप्रेस करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि इसके साथ टॉक्सिक वर्ड जो लगा है तो जहाँ जहर होगा वहाँ वो जो मरने जैसी फीलिंग है, दबने जैसी फीलिंग, वो तो आएगी ही आएगी, ओबियस है। लेकिन यहाँ ये बात है कि पॉजिटिविटी यानी सामने वाला आपको अच्छा अच्छा बोल रहा है, अच्छा समझा रहा है, और कई बार माता पिता जो हमारी लाइफ में होते हैं और वो हमारे को प्रेशराइज कर देते हैं, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो भी हमें कहता है अरे तू इतना गलत नहीं सोचते, अरे ऐसे नहीं सोचते, ये मत सोचा कर, ये तू गलत सोचता है। तो लेकिन एक मौका जो हमें हर व्यक्ति को देना चाहिए कि क्या सोचते हो उसको क्लियर वो बोल सके, और मैं समझती हूँ उसे मिलता भी होगा। हर एक को अपने भाव व्यक्त करने का मौका यहाँ नहीं तो कहीं मिलता तो जरूर होगा, और अगर कहीं भी वो व्यक्त नहीं कर सकता है तो वो लिख तो सकता ही है। और हम जहाँ की हम स्पिरिचुअल जो मैं मानती हूँ कि अगर लिख भी नहीं सकते हो तो भगवान के आगे बैठकर आप अपने भाव व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो इन सब में असमर्थ है, वो नहीं कर पा रहे हैं और उनकी बात भी कोई नहीं समझ पा रहा है, तो वो अपना ही एक जोन बना लेते हैं जिस जोन से वो बाहर आना नहीं चाहते और किसी को अंदर आने देना भी नहीं चाहते। कोई इतना इजीली सहज उनके कमरे में घुस नहीं पा रहा है, उस जोन में घुस नहीं पा रहा है, क्योंकि वो आने नहीं देना चाहते, जिसकी वजह से फिर वो टॉक्सिक हो जाते हैं। और क्योंकि सामने वाला जो आ रहा है वो पॉजिटिव है तो इसलिए उन दोनों ने दोनों ही शब्दों को जोड़ दिया, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। मैं टॉक्सिक हूँ, आप पॉजिटिव हो, इसलिए मुझे फोर्स मत करो। लेकिन इस दिशा में अगर हम बढ़ते चले गए तो ये हमारी जिंदगियों को, हमारी हर चीज़ को ये तहस नहस कर देगा। इसलिए इस वर्ल्ड से, इस दुनिया से, इस कमरे से बाहर आइए। अपना जो आपने जोन बना लिया है वो किलिंग जोन है, वो आपको धीरे धीरे मानसिक रूप से ख़राब करेगा, धीरे धीरे फिजिकल, इमोशनल, हर चीज़ से आपको बिगाड़ देगा। इसलिए इन सब चीज़ों को अगर आप छोड़ दें, बाहर आ जाएं, तो बहुत बेहतरीन दुनिया है। आपके नेगेटिव जो भी इमोशंस हैं आप उसको पहले शेयर करें, जिससे भी शेयर करना चाहते हैं ज़रूर ज़रूर शेयर करें। कई बार हमने देखा है कि एक बार शेयर करते हैं, दो बार शेयर करते हैं, तीन बार शेयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उसी से भरे हुए, वो इस सीन से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। तो व्हाट यू वांट, फर्स्ट आस्क योरसेल्फ कि मैं चाहता क्या हूँ, क्योंकि सुनाने के लिए मैंने कईयों को सुना दिया लेकिन मैं अभी भी वहीं हूँ। और अगर मैं मूव नहीं कर रहा हूँ तो फिर क्या ही उसका इलाज हो सकता है, क्योंकि करना तो मुझे ही है। मैं जिस कमरे में कैद मैंने अपने आप को किया है, अंदर से कुंडी मारी है, बाहर से कुंडी नहीं है कि कोई भी आके खोल देगा, ये कुंडी मैंने मारी है, अंदर से मारी है, इसलिए मुझे ही उठकर उस कुंडी को खोलना होगा, और कोई इस कुंडी को खोल ही नहीं सकता है। इसलिए इतनी हिम्मत, इतना करेज अपने आप में लाएं और इस कुंडी को खोलें, और खोल करके लोगों को अंदर आने दें या खुद बाहर आ जाएं, क्योंकि उस बंद कमरे में घुटन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट।

0: के बाद वेलकम बैक शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: क्या सैडनेस एंगर या फ्रस्ट्रेशन को फील करना भी हेल्दी होता है? आप दोनों का इस पे क्या कहना?
2: आपको क्या लगता है सैडनेस में मिलती है सुकून?
1: नहीं, बट कभी कभी हाँ।
2: एक्चुअल में सैडनेस में कभी सुकून है ही नहीं। वो जैसा कि पहले भी बताया है कि हमने उस चीज को समझ लिया है कि हाँ वो सुकून दे रहा है, लेकिन सुकून नहीं है, क्योंकि हम सदा सैडनेस में नहीं रह सकते, लेकिन सदा खुश
1: बिल्कुल
2: रह सकते हैं। सदा खुश रहने वाला व्यक्ति, इसका मतलब खुशी मेरे लिए परमानेंट है, लेकिन दुख परमानेंट नहीं है, है ना? दुख से कभी भी हमें जो कहे कि एक हेल्दी कहे वो नहीं हो सकता। जब हेल्दी नहीं रहते तभी दुख आता है, तभी फ्रस्ट्रेशन होती है, तभी सैडनेस होती है। तो हेल्दी तो हम इसको कभी भी किसी भी तरीके से नहीं कह सकते हैं। सिर्फ हमने अपने आप को ये समझा लिया है कि शायद यही जीवन का दस्तूर है और यही जीवन है कि हाँ ये तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कई लोग कहते हैं एंगर बहुत ज़रूरी है, अगर थोड़ा गुस्सा नहीं किया जाए तो काम ही नहीं होता है। एक्चुअल में दोष मैं नहीं कहूँगी आज के बच्चों का है या किसी का है, दोष है हमारी जो चलता आ रहा है। क्योंकि जब हमारी दादी हुआ करती थी तो उस समय पर क्रोध करना माना उनकी सिर्फ आँख ही अगर वो दिखा दे तो उसको ही क्रोध समझ लेते थे, गुस्सा कर रहे हैं। थोड़ा समय बदला तो एक थप्पड़ लगा दिया करते थे, तो पता चला कि बहुत देर तक बात करने के बाद एक थप्पड़ लगने पे काम होता है। तो इतना पेशेंस था उनके पास कि एक थप्पड़ तक वो टिल वेट करते थे, पेशेंस में रहते थे। और समय बीता तो वो चीज़ें बढ़ गई। अब जो जनरेशन है उनको ये लगता है कि इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही माइंड में सेट कर रखा है। आप किसी भी व्यक्ति से आज मिलेंगे, अगर आज की जनरेशन से, वो यही कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। और ये कहते कहते कहते उनके पास सच में ही उन्होंने अपने आप को ऐसा बना लिया है कि अब टाइम नहीं है कि हम पेशेंस रखें, अब टाइम है बस मारो और काम करो, काम करवाओ, क्योंकि वही उनकी नेचर बन रही है। लेकिन वो नेचर क्या उनके लिए खुद से पूछ के देखे, नेचर वो अच्छी होती है जो दूसरों को देना वही अच्छा है जो मुझे खुद के लिए पसंद है। क्या मुझे कोई थप्पड़ मार के काम कराए तो मुझे पसंद होगा, अच्छा लगेगा? क्या मुझे कोई गलत बोल करके काम कराना चाहे तो क्या हम करेंगे? या 24 घंटे हमें गलत ही बोलता रहे तो क्या मेरी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? हमारा मन ही वहाँ से हट जाएगा। तो ऐसे ही सारी दुनिया के अंदर हर व्यक्ति ऐसा ही है, जिसे गुस्सा नहीं चाहिए, जिसे प्यार चाहिए। लेकिन आज प्यार की परिभाषा हमने बहुत खराब कर दी है। प्यार का पता ही नहीं है किसे कहते हैं। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं। प्यार का मतलब है अगर मैंने आपसे प्यार किया है तो प्यार का मतलब है कि मैं आपके लिए कितना एफर्ट कर सकती हूँ। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पहले समझें कि मुझे क्या चाहिए। तो क्या मुझे दुख में खुशी मिलती है, क्या मुझे उदासी में कभी खुशी मिलती है, या मुझे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं तो क्या मेरी एनर्जी बढ़ती है या हमारी और घट जाती है? घटती है ना। तो ऐसी ही जो चीज मेरे जीवन में से डे बाय डे घटा रही है चीजों को, तो वो कैसे हम कहेंगे कि हाँ ये हेल्दी है? तो ये हेल्दी नहीं होता है। हेल्दी जो चीज है वो खुशी ही हेल्दी है। इसीलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। कभी ये नहीं कहा गया है रोने जैसी खुराक नहीं या दुख जैसी खुराक नहीं। हमेशा ये कहा जाता है खुशी जैसी खुराक, क्योंकि वही हमें हेल्दी बनाता है, वही हमारी हर सिचुएशन को सॉल्व करता है।
1: बिल्कुल सही बात है। प्रिया जी आपका क्या कहना है इस पे?
3: जी जैसे कि कहा कि नेगेटिव वर्ड्स हैं, और नेगेटिव वर्ड्स के साथ आपने एक एक पॉजिटिविटी जोड़ रखी कि हेल्दी हो सकता है क्या। तो वही बात है कि जैसे मैं ये कहूँ कि हर व्यक्ति की क्षमता के ऊपर डिपेंड है कि कितना भी नेगेटिव होने पर वो पॉजिटिव रह सकता है। ये आपकी अपनी क्षमता है, हर एक के साथ ये लागू नहीं होता। सैडनेस जो कि नॉर्मल नहीं है, एंगर कहें या फिर फ्रस्ट्रेशन कहें, ये सब नॉर्मल इमोशंस नहीं है। इसके लिए हमारे अंदर बहुत एनर्जी चाहिए, इसको व्यक्त करने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए और इसको अंदर रखने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए। तो यानी हमारी बहुत एनर्जी वेस्ट होती है नेगेटिव को एक्यूमुलेट यानी संभालने के लिए, रखने के लिए। और वहीं पे आपने एक नेक्स्ट जो वर्ड डाला है वो हेल्दी। तो हेल्दी इज हेल्दी, ये तो है ही पॉजिटिव। तो जैसे कहते हैं कि जहर जहर कभी अमृत हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है। अगर धीरे धीरे धीरे धीरे एक पर्सन जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया था, चाणक्य जी ने दिया था, वही जहर उनको इतना बलशाली बना देता है कि शत्रुओं के आगे उनका जहर काम नहीं करता है ना, शत्रुओं के दिए गए जहर से चंद्रगुप्त मौर्य को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बात यही है कि आपने किस तरीके से लिया है, कैसे लिया है, उसको किस दिशा में लिया है। मैंने अपने जो क्रोध है उसको अपनी ऊर्जा बना ली है, ठीक है, मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन जो है उसको अपना ईंधन बना लिया है अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, तो दिस कैन बी हेल्दी। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये चीजें कभी भी हेल्दी नहीं होती, क्योंकि हमारी ये नेगेटिविटी को बढ़ाती है, नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा इसमें बढ़ जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा बहुत ज्यादा खपत होने लगती है। यानी अंदर आग लगी है तो अंदर का जो कपूस है, जो पॉजिटिव साइड है, उसको वो जलाई चली जा रही है। अगर अच्छाई जल रही है और उसकी अग्नि बढ़ती चली जा रही है तो आप खुद समझ सकते हैं कि पूरा ही घर एक दिन जल जाने वाला है, तो ये कहाँ से हेल्दी हो सकता है।
1: सही बात।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: ज्योति जी, सोशल मीडिया ने टॉक्सिक पॉजिटिविटी को कैसे नॉर्मलाइज कर दिया है?
2: इसकी अगर हम बात कहें तो टॉक्सिक शब्द को पहले हम ये चीज समझेंगे कि ये चीजें हम जो लोग देख रहे हैं, टॉक्सिक ही चीजों की तरफ हमारा ध्यान है, फोकस है जो हम ले रहे हैं सोशल मीडिया में। आजकल सारी जगह आप देखेंगे तो नेगेटिविटी का ही बोलबाला है, हर जगह नेगेटिव ही न्यूज़ है। चाहे आप न्यूज़पेपर उठा लें, चाहे आप टेलीविज़न ऑन करें, चाहे आप मोबाइल्स में कोई स्क्रॉल करते करते कोई मूवी देख रहे हैं या कोई चीज़, उसमें क्या चीज़ हम देख पा रहे हैं? सिर्फ लड़ाई झगड़ा, नेगेटिव चीज़ें, जो कि देखते देखते हमारे अंदर वो इमोशंस बना रही हैं, वैसा ही हमें बनाती जा रही है अंदर से। क्योंकि हम कोई भी चीज़ जितना सुनने से नहीं सीखते उतना देखने से सीखते हैं। तो जो चीज़ हम देख रहे हैं वही चीज़ हमारे अंदर इंटरनल, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो जा कर के प्रिंट हो रही है। और जब वो प्रिंट हो जाती है तो नेचुरली मेरे भी जो नेचर है, मेरे भी बिहेवियर में वो चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। आज इसी बच्चे ने देखा कि छोटेपन में एक छोटी सी बंदूक हाथ में दे दी गई कि खिलौना है। अब उसे वो खिलौना चलाने आया, थोड़े दिन बाद उसने बड़ा वो ले लिया।
1: सही बात।
2: तो वो चीज़ क्या है उसका इम्प्रेशन, फिर उसको ये लगता है कि नहीं मैं तो ये चलाऊं तब मुझे आनंद आएगा। तो वहाँ कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया, हम क्या चीज़ उसमें देख रहे हैं ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं ये नहीं कहती कि पूरा ही सोशल मीडिया ख़राब है, लेकिन उसमें मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर हम खराब चीज़ देखते जाएंगे तो नेचुरली हमारे अंदर वो नेगेटिविटी ही पनपेगी, वही टॉक्सिक बन जाएगा। आज कैसे बच्चों को सुसाइड करने का इतनी हिम्मत हो रही है, कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया ही इसका रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि उनको वो ओपिनियन मिल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब एक सीरियल आया करता था, सबने देखा, आपने भी सुना होगा और देखा भी होगा, क्राइम पेट्रोल नाम से, तो जी सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल, तो उसमें एक बच्चे का इंटरव्यू आया। एक बच्चे ने जो कि घर में रहता था और बहुत छोटेपन से ही वो टीवी पे देखता था और उसको क्राइम पेट्रोल ही बहुत अच्छा लगता था, वो देखने लगा। उनके घर में ही, जिसके घर में वो काम कर रहा था और बड़े बच्चे की तरह उसको वो पालते थे, उनके उसके मन में उसको देख करके आया कि मैं भी ऐसा करूं। और उसने घर में छोटी बच्ची जो कि उसके पास ही रहती थी, उसको ही भैया कहती थी, उसके साथ ही, सिर्फ उसने उसको देख करके उसकी उसको भी मार दिया और घर का सारा सामान लेकर के चला गया। जब पकड़ में आया, क्योंकि प्रोफेशनल तो था ही नहीं, जब पकड़ में आया तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे मन में ये सारी जितनी भी प्लानिंग थी ये कहाँ से तुम्हारे माइंड में आई, कौन तुम्हें गाइड कर रहा है? तो कहा मैं क्राइम पेट्रोल बहुत देखता था और उससे मैंने अपने माइंड को जो है मैनेज किया, मुझे सारी टेक्निक्स आई, कहाँ मुझे अपने फिंगरप्रिंट्स हटा देने हैं, कहाँ कैसे करना है, माना हर एक चीज़। तो कहीं ना कहीं मीडिया में ये चीज़ों को जो हाईलाइट किया जा रहा है तो उसके कारण बहुत सारी चीज़ें बच्चों पर इफ़ेक्ट डाल रही हैं। तो इसके लिए पॉजिटिव चीज़ों को जितना हम दिखाएंगे, जितना हम बताएंगे और उन्हीं चीज़ों पर फोकस करेंगे तो नेचुरल पॉजिटिविटी ही लोग लेंगे। तो इसके लिए सोशल मीडिया बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है, पॉजिटिविटी देने के भी और नेगेटिव देने का भी।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी।
1: प्रिया जी, क्या हम बिना टॉक्सिक हुए पॉजिटिव रह सकते हैं?
2: बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं, अपने दादा दादी जी को भी देखते हैं, और ये फिर भी अगर कहीं ना कहीं टॉक्सिक होते हैं तो हम उनके पीछे का भी सोच सकते हैं कि जो बिल्कुल ही चक्की पे आटा पीसते थे और गाय भैंस ही जो उनको पालन करते थे, पालते थे, उनके द्वारा ही अपना जीवन संचालन करते थे, जहाँ लाइफ बहुत स्लो थी, जो हमारे दिशा में हम देखते हैं तो लाइफ बहुत स्लो थी, लेकिन लाइफ स्लो होने का मतलब सोच भी बहुत स्लो थी। तो सोचने में स्लोनेस लाना, इसका मतलब नंब होना नहीं होता या डम होना नहीं होता, स्लो होने का मतलब है उतना ही स्पिरिचुअल थे। तो जितना हम स्पिरिचुअलिटी को आज भी अपने जीवन में महत्व देते हैं, अपने लाइफ में बढ़ाते हैं स्पिरिचुअलिटी को, तो उतना ही हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं और इतना ही हम अपने जीवन को और बेहतरीन बना सकते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आपने कहा कि टॉक्सिक हुए बिना हम अपना जीवन जो है बहुत अच्छे से पॉजिटिव रह सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल, क्योंकि आज हमें लगता ही नहीं कि टॉक्सिक हुए बिना ऐसा हो सकता है। हम गुस्सा हुए बिना किसी से अपने काम नहीं करवा पा रहे, हम गुस्सा हुए बिना कोई काम खुद भी नहीं कर पा रहे, आसपास जितने लोग हैं हमें लगता है गुस्सा कर देने से वो फास्ट करेंगे, जल्दी करेंगे और रिजल्ट्स भी मिलते हैं, तो हमें लगता है कि गुस्सा तो करना जायज़ है, बनता है। और इसीलिए आज की डेट में एक बहुत बड़ा वर्ड आता है कि गुस्सा तो नॉर्मल है, बाकी में अगर देखें तो नॉर्मल तो नहीं है, गुस्सा नॉर्मल नहीं है। हमने तो धारावाहिक में भी ऐसे सीन्स हमारे दिखाए गए हैं जो कि मैं नहीं मानती वो सत्य होंगे, कि हमारे देवी देवताओं को भी गुस्सा करते हुए दिखाया है, जो मेरा मानना है कि वो सत्य नहीं है, वहाँ कहीं ना कहीं कोई मिक्सिंग की गई है, क्योंकि देवी देवता भी अगर गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो हम मनुष्य होकर अगर गुस्सा कर लेते हैं तो क्या ही बड़ी बात है। लेकिन वास्तविकता यही है कि वो कभी गुस्सा नहीं करते थे, भगवान कभी गुस्सा नहीं होते। अगर वो गुस्सा होते तो गुस्से को कभी भी नेगेटिव टर्म या फिर नेगेटिव साइड में नहीं लिया जाता।
1: बिल्कुल सही बात।
2: तो हम वाकई में पॉजिटिव रह सकते हैं और बिना टॉक्सिक हुए अपने कामों को बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को ये देखना होगा कि मैक्सिमम मैं कौन से लेवल पे रहता हूँ। मैक्सिमम जो मेरा सर्कल है या जो भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ या जो भी मैं खा रहा हूँ या जहाँ भी मैं बैठा हूँ, वो पॉजिटिव है या नहीं।
1: बिल्कुल,
2: जो मैक्सिमम होगा वो उसका इम्पैक्ट जरूर होगा। आप दो बच्चे हैं घर में, एक को आप गुरुकुल में रखिए या साधुओं संतों के बीच में रखिए, और एक को जो नॉर्मल जो आज का है माहौल उसमें रखिए। डीजे भी है, सब कुछ है, बार है, डिस्को है, स्कूल है, लाइफ है, सब कुछ है, और एक को वहाँ जंगलों में रखिए जहाँ पर साधु संत रहते हैं। बहुत बड़ा चेंज आप देखेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: जितना ही वो शांत होगा यहाँ वाला उतना ही हाइपर होगा, वो जितना ही स्लो है उतना ही फास्ट। लेकिन जितना ही स्लो का मतलब स्लो नहीं कहूंगी, जितना ही स्लो होने के कारण उसकी जो क्षमता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की क्षमता है, यहाँ उसमें वो जीरो होगा। और अगर थोड़े बहुत नंबर मिल भी जाएं तो 10-5 ही मिलेंगे, यानी उसका अगर उसके अंदर पॉजिटिविटी है तो 10%, अगर उसके अंदर सहन शक्ति है तो 1%। तो इस तरीके से हर चीज़ अगर हम देखते हैं तो वही बच्चे हैं, वही पेरेंट्स हैं, लेकिन आसपास के माहौल से बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो अपना माहौल बदलिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और उसके बाद अपने जीवन में देखिए तो बहुत बड़े चेंजेस आएंगे।
1: बिल्कुल सही बात है। ज्योति जी, लिसनर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
3: मेरा यही है कि किसी को भी अगर समझना है या समझाना है तो सबसे पहले उनके मन के भाव को समझने की कोशिश करें।
1: बिल्कुल।
3: अपने मन को शांत करके पहले उनको सुने वो क्या कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद ही उनके मन को जब दिशा बदलेगी तभी उनकी दशा भी बदलेगी, तभी वो पॉजिटिव हो पाएंगे। तुरंत अपने अनुभव या अपनी चीज़ें शेयर नहीं करें, उनके आगे थोपे नहीं किसी के ऊपर, हर एक को अपनी लाइफ के हिसाब से उनको उनके तरीके से ही दें। अगर बच्चा है तो बच्चे को बच्चे की तरीके से ही चीज दी जाएगी। अगर हम सोचे कि बुजुर्गों की तरह दे दे तो पॉसिबल नहीं होगा। अगर उनके मन के हिसाब से चीजें दी जाएंगी तो हर एक सिचुएशन को संभालना बहुत इजी हो जाएगा।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: आज की डिस्कशन से एक बात क्लियर है, पॉजिटिविटी तब तक हेल्दी है जब तक वो हमारे इमोशंस को डिनाई नहीं करती। अपनी फीलिंग्स को समझना, एक्सेप्ट करना और प्रोसेस करना ये वीकनेस नहीं, इमोशनल मैच्योरिटी है। बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी का दिल से शुक्रिया इस इनसाइटफुल कन्वर्सेशन के लिए। मैं हूँ आरजे पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे थे जस्ट टॉक अबाउट इट सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: तो अर्ज क्या है?
0: अर्ज
1: करते हैं
0: इरशाद,
1: जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, जेबों में आइस क्यूब डालकर गर्मी भगाता हूँ, तौलिया और बनियान पहनकर ऑफिस आता हूँ।
0: ऑफिस जाते हो या शौचालय?
1: अरे आगे सुनो।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी,
1: सोचा वरना हंसता रह जाए।

0: हमेशा लौट कर आएगा। सच्चाई, अच्छाई, बुराई और लालच।
1: पर वो ये भूल जाता है कि जो चीज देवी ने खुद अपने पेट में लॉक कर दी, उसे छूना मतलब मौत को इनवाइट करना है। हस्तर वो राक्षस जो सोना चाहता था, पर लालच इतना था कि रोटी भी उसके हाथ से फिसल गई। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, जैसे इंसान का लालच। पर विनायक हर बार अपनी मौत से बच के सोने के सिक्के ले आता है। पर एक सवाल, लालच की कोई सीमा होती है या एक ना एक दिन वो इंसान को निगल जाता है?
0: डरा नहीं रहा हूँ, तुम्बाड़ के लिए तैयार कर रहा हूँ।
1: दुनिया में सबसे बड़ा श्राप क्या है? लालच। और तुम्बाड़ शहर ये सबक एक कहानी की तरह नहीं, एक लोरी की तरह सुनाता है। सोचा

0: मित्रा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
0: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, लाइफ हो या प्यार, दोनों में थोड़ा ड्रामा तो बनता है। तो पॉपकॉर्न उठाओ, ओवर एक्टिंग एक्टिवेट करो, क्योंकि अब शुरू होगा असली फिल्मी तमाशा। बोले तो दिल से फिल्मी।
1: आसान ही आशिक हो जाना, पलकों पे कांटों को सजाना।
2: जब मोहब्बत इबादत बन जाए तो कुर्बानी कैसी। प्यार वो नहीं जो सिर्फ जीने दे, प्यार तो वो है जो खुद को मिटाकर भी दूसरे को जीने का हौसला दे।
1: तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: राहुल जेकर, एक मशहूर सिंगर जिसका सुर दुनिया के लिए एक जादू था।
1: सुन रहा है
2: के अंदर का दुख एक ऐसा राग था जो सिर्फ वो समझता था। और फिर एक दिन, एक बारिश भरी रात में, उसकी आवाज से ज्यादा खूबसूरत एक आवाज उसके दिल तक पहुंची। आरोही।
3: आरोही
4: क्या?
3: कुछ नहीं, बस यूं ही।
1: हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा।
2: एक सिंपल सी लड़की जो सिर्फ गाना चाहती थी, राहुल ने उसके सपनों को पंख दिए, उसे बुलंदियों तक ले गया।
4: कितना अच्छा गाते हो तुम।
3: मैडम, ट्रेनिंग मेरी नहीं, आपकी है। चलो गाओ।
5: तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं आना।
2: पर खुद वो प्यार जो उसके जीने की वजह बना, वही उसके होने का बोझ बन गया।
6: क्यों आए तुम? दूर ही रहना था ना।
7: अरे यही तो बात है, जब तुम नहीं थी तो मेरा दुश्मन सिर्फ मैं ही था। इसके पहले कि मैं तुम्हारा बन जाऊं, जस्ट गो अवे।
1: भुला देना मुझे, है अलविदा तुझे।
2: आरोही का प्यार उसके लिए दुआ था, पर कभी कभी दुआएं भी किस्मत से नहीं जीत सकती। एक प्रेम कहानी जो अधूरी होकर भी पूरी थी, एक आशिकी जो मरने के बाद भी जिंदा थी।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

Yeah.

0: कभी लिया? ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनिका और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ओनली ऑन रेडियो महारानी। और रेडियो महारानी पास संघर्ष की कहानी में एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जो आपके दिमाग के परकच्चे उड़ा देगी। अरे नहीं भाई, खून खराबा करने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पर एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप अपनी पीढ़ियों को क्या ट्रांसफर कर रहे हो। मैं अगर आपसे सामने से एक क्वेश्चन करती हूँ कि अगर आपको अपने आगे आने वाली जनरेशन को कुछ देना है तो आप उन्हें क्या दोगे, तो बहुत सारे लोगों का आंसर हो सकता है शायद उनकी संपत्ति, उनके संस्कार, पैसा, गाड़ी, धन दौलत, वो सारी फैसिलिटीज जो चाहते हैं कि उनकी आगे आने वाली जनरेशन जो है फील करे और फैसिलिटीज में जिए, वो फैसिलिटीज़ वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे, उनको तकलीफ ना हो, वो अच्छे से रहें, शायद ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे। पर एक चीज़ जो शायद आप में से किसी ने नहीं सोची और वो चीज़ है साफ हवा, सांस। क्या आपने कभी सोचा है कि आप आने वाली जनरेशन को साफ हवा दोगे, ऑक्सीजन दोगे? इस बारे में तो शायद किसी ने नहीं सोचा, और 5% लोगों ने अगर सोचा भी है तो वो इस पर काम कर रहे हैं। और उन्हीं में से एक स्टोरी आज हमारे साथ जुड़ चुकी है, और आज कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है समर्पित कर दी पेड़ पौधों को। उन्होंने नहीं देखा कि जिंदगी में और क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, बस उनके दिमाग में ये चीज बसी हुई थी कि मुझे अपनी जमीन को, अपने आसपास घरों को बंजर होते हुए नहीं देखना है, उनको हरा भरा बनाना है, और चाहे कितने ही बाढ़ क्यों ना आ जाए, चाहे कितने ही बड़े तूफान क्यों ना आ जाए, मैं अपने घर के आसपास की जमीन को और अपने गांव की जमीन को बंजर तो नहीं होने दूंगा। और ये चीज उन्होंने जब माइंड में बिठाई और उसके बाद उन्होंने उस चीज को अपनी पूरी लाइफ दे दी, और आज हम सभी उन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो क्या है उनकी कहानी और क्यों कर रहे हैं हम इस पर बात, सारी चीजों पर बात करेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बात। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो महारानी पर संघर्ष की कहानी।

0: खराब लगे।
1: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ इसलिए गधा हूँ।
2: सुन भाई सुरेंद्र।
3: हाँ भाई सुरेंद्र।
2: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
3: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी की 9.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष की कहानी में। मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। और जैसा कि आपको पता है कि हर वीकेंड संघर्ष की कहानी में मैं लेकर के आती हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपके ही आसपास की हैं, आपके देश की हैं, आपके गली मोहल्ले की हैं, पर अभी तक आप तक नहीं पहुँची हैं। तो उसका जिम्मा उठा लिया है मोनिका ने और लेकर के आ गई है एक ऐसी कहानी जिसके बारे में जानना तो आपका बनता है। और वो कहते हैं ना कि कभी कभी जिंदगी का सिर्फ एक इंसिडेंट इंसान का पर्पज ही बदल देता है। तो ऐसा ही हो रहा था जादव पायेंग के साथ। जादव पायेंग असम की मंजुली आइसलैंड के रहने वाले हैं। मंजुली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड माना जाता है जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा हुआ है। लेकिन हर साल आने वाली बाढ़ और मिट्टी के कटाव ने इस जगह को बहुत नुकसान पहुंचाया है। साल 1979 में जब जादव सिर्फ 16 साल के थे, असम में एक भयंकर बाढ़ आ गई। पानी उतरने के बाद वो नदी के किनारे गए जहाँ उन्होंने रेत पर सैकड़ों मरे हुए सांपों को देखा। तेज धूप और पेड़ों की कमी की वजह से उन जानवरों की मौत हो गई थी। ये नजारा देखने के बाद उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछा कि यहाँ पेड़ क्यों नहीं लगाए जाते हैं। उन्हें जवाब मिला कि इस रेतीली जमीन पर कुछ उगाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, बांस के पेड़ लगाए जा सकते हैं। बस उसी दिन जादव ने फैसला किया कि अगर जंगल नहीं है तो वो जंगल खुद उगाएंगे। और तभी जादव ने बांस के पौधों को लगाने की शुरुआत की। रोज सुबह कई किलोमीटर चलना, नदी पार करना, पौधों को पानी देना और उनकी देखभाल करना उनका पूरा रूटीन बन गया था। धीरे धीरे उन्होंने बांस के साथ अर्जुन, गुलमोहर, बनियान ट्री और दूसरे देसी पेड़ भी लगाने स्टार्ट कर दिए। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि 16 साल के लड़के का ये फैसला पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएगा। तो क्या है आगे की कहानी, हम बढ़ेंगे जरूर। तब तक एंजॉय करिए छोटी काशी से रानी जी की फरमाइश पर ये प्यार।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: डॉन की खोज तो 7 देशों की पुलिस कर रही है, पर पानी की खोज सारी दुनिया।
1: डॉन को पकड़ना शायद आसान भी हो, पर पानी के बिना जीना मुश्किल। तो आज से ही पानी यूज करो उतना, जरूरत हो जितना।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी। मैं हूं आपकी होस्ट मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। और आज संघर्ष की कहानी में कहानी चल रही है असम के जादव पायेंग की। जादव पायेंग जिन्होंने 16 साल की उम्र से ही पेड़ लगाना स्टार्ट कर दिया था एक ऐसी जमीन पर जहां पर पेड़ों का उगना नामुमकिन था। जादव पायेंग ने एक या दो साल नहीं बल्कि 40 साल से भी ज्यादा अपनी जिंदगी पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने में लगा दी। आज उनके लगाए हुए जंगल को मोलाई फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये जंगल लगभग 1360 एकड़ में फैला हुआ है। हैरानी की बात यह है कि जहां कभी सिर्फ रेत ही रेत हुआ करती थी, आज वहां हजारों पेड़ हैं और हाथी, गेंडे, हिरन, जंगली सुअर,

और 100 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी अपना घर बना चुके हैं। जादव सिर्फ पेड़ नहीं लगाया करते थे, वो बीज इकट्ठा करते थे, पौधे तैयार करते और पानी देते और उनकी रक्षा भी किया करते थे। उनके लिए ये सिर्फ प्लांटेशन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का मिशन था। आज उनकी बेटी मुनमुनी पायेंग भी इस मिशन को आगे बढ़ा रही है। वो एनवायरमेंट अवेयरनेस और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट में एक्टिवली काम कर रही है ताकि उनके पिता का सपना आने वाली जनरेशन तक जिंदा रहे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद क्या उनकी मेहनत को वो पहचान मिली जिसकी वो हकदार थी? और भारत सरकार ने उनके इस काम को किस तरह से सराहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।

वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष की कहानी में। मैं हूँ होस्ट मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। और जैसा कि आपको पता है कि संघर्ष की कहानी में आज कहानी चल रही है असम के जादव पायेंग की और उनकी बेटी मुनमुनी पायेंग की। जादव पायेंग की मेहनत को आखिरकार पूरी दुनिया ने पहचाना। आज उन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और साल 2015 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े सिविलियन ऑनर पद्मश्री से भी सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी सम्मान मिला, क्योंकि उन्होंने अकेले वो कर दिखाया जो अक्सर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनकी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज अवार्ड नहीं है, बल्कि ये है कि जिंदगी में पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन साफ हवा और जीने लायक एनवायरमेंट नहीं। और हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि हमारा नेचर है, प्रकृति है, जो हमें बिना किसी शर्त के ऑक्सीजन, साफ हवा और एक बेहतर जिंदगी देती है। और कहीं ना कहीं अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आप कुछ पहुंचाना चाहते हैं तो आप साफ हवा पहुंचाइए, ऑक्सीजन पहुंचाइए, और महीने में ना सही साल में एक दो पेड़ जरूर लगाइए। आपकी ये धरोहर है जो कि आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे चलती रहेगी। और आपको पता नहीं है कि आज के टाइम में एक पेड़ की कीमत क्या है। जब आप एक पेड़ की शुरुआत करेंगे आपको पता नहीं चलेगा आपके जीवन में कितना सुधार आ जाएगा। तो पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए और प्रकृति को और सुंदर बनाइए। आपको जो ऑक्सीजन सिलेंडर में लेनी पड़ती है वो शायद सिलेंडर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेड़ की कीमत बहुत ज्यादा है, इसको समझिए। और साथ ही साथ जाने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगी, आप खुश रहिए, अपनी केयर करिए, अपने अपनों का बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं, कुछ ऐसे किस्से हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, या लोगों की कहानियां हैं जो हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप हमारे नंबर 9654896896 पर कॉल या मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें अपना प्यारा सा कोई भी मैसेज शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक टाटा।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: 89.6 FM पर सुन रहे हैं आप पोषण की पाठशाला। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे अंजलि, जहां हम बात करते हैं माँ और बच्चे की सेहत और सही पोषण की। और आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, यानी कि जब बच्चा 6 महीने का होता है तो शुरुआती दौर में एक नया फेज शुरू होता है, यानी पहला खाना। ये वो टाइम होता है जब माँ के दूध के साथ साथ बच्चे को सॉलिड फूड देना जरूरी माना जाता है। लेकिन इन सबके बावजूद सवाल ये उठता है, पहला खाना क्या होना चाहिए, कैसे शुरू करें और क्या गलतियां हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। इन्हीं सभी जरूरी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेनू खुराना, जो कि आज हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग और बच्चों के सही पोषण पर अपने एक एक्सपर्ट गाइडेंस हमारे साथ शेयर करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रेनू आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। डॉक्टर, अगर बात की जाए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि 6 महीने के बाद बच्चे के लिए माँ का दूध काफी क्यों नहीं होता, और अगर बात की जाए पहले खाने की, तो पहला खाना शुरू करना क्यों जरूरी होता है। एंड साथ ही अगर बात की जाए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो इसका सिंपल मतलब क्या है जो हर पेरेंट आसानी से समझ सके।
1: हाँ अंजलि, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसा आपने पूछा कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग 6 महीने कंप्लीट होने पर ही क्यों स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली 6 महीने तक बच्चे की न्यूट्रिशनल जरूरत जो है वो ब्रेस्ट मिल्क से पूरी हो जाती है। लेकिन 6 महीने कंप्लीट होने के बाद बच्चा तेजी से बढ़ता है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उसकी हड्डियां और मांसपेशियां बढ़ रही हैं, प्रतिदिन उसकी एक्टिविटी बढ़ती जाती है, तो इसीलिए उसकी न्यूट्रिशनल जरूरत भी बढ़ जाती है। केवल ब्रेस्ट मिल्क इस समय काफी नहीं होता, तो 6 महीने के बाद ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ, ध्यान रखिए, ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ जो हम सॉफ्ट फूड या सेमी सॉलिड फूड देते हैं उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री फूड कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे लिसनर्स तक ये इतनी इम्पोर्टेंट बात पहुंचाने के लिए। जैसे कि अभी डॉक्टर ने क्लियर किया कि 6 महीने के बाद सिर्फ दूध नहीं बल्कि सही कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी उतनी ही ज्यादा जरूरी होती है जितना कि बच्चे के लिए माँ का दूध। इसलिए शुरुआती दौर में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: इस शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर रेनू खुराना और आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। तो डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि बच्चे का पहला खाना क्या होना चाहिए, साथ ही ये खाना घर पर बना हो या फिर मार्केट पैक्ड फूड भी चल सकता है। अक्सर देखा गया है पेरेंट बच्चों को बिस्किट रस्क या फिर पैक्ड फूड खिला देते हैं क्योंकि वो इजी ऑप्शंस होते हैं। तो ये कितना सही है, कितना हार्मफुल है एक बच्चे के लिए। साथ ही बात की जाए नमक और चीनी की, तो कब से देना चाहिए, कब सही समय है देने का, और अक्सर देखा गया है कई बार बच्चे खाना नहीं खाते, इस केस में पेरेंट को क्या करना चाहिए।
1: अंजलि, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो न्यू पेरेंट्स की तरफ से आता है, तो हम इस बारे में बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि खाना सेमी सॉलिड होना चाहिए, दूसरी बात खाना घर का बना हुआ होना चाहिए, और तीसरी बात ये है खाना जो है वो कैलोरी डेंस होना चाहिए। जैसा कि हमने बात किया कि खाना सेमी सॉलिड या सॉफ्ट होना चाहिए, खाना ना तो बहुत लिक्विडी हो और ना ही बहुत गाढ़ा, ताकि बच्चा उसको आराम से खा सके। और जो हमने बात की कि खाना घर का बना हुआ होना चाहिए, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। अगर खाना घर पर बन रहा है तो आपको मालूम है कि वो सेफ है, हाइजीनिक है, न्यूट्रिशियस है और बिना प्रिजर्वेटिव के है। सो बच्चे को इस समय पर सेफ और हाइजीनिक खाने की जरूरत है। और तीसरी बात है कि खाना कैलोरी डेंस हो, ताकि उसकी छोटी सी भूख में उसकी न्यूट्रिशनल जरूरतें पूरी हो सके। कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे दाल अच्छे से पकाकर मैश करके देना, चावल को पकाकर उसको मैश करके खिला सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं, और किसी भी अनाज का दलिया बनाकर दे सकते हैं, सब्जियां पकाकर दी जा सकती हैं। तो बेहतर यही है कि आप घर का बना हुआ खाना दें बच्चे को, ना कि मार्केट के पैक्ड प्रोसेस्ड फूड दें। बच्चे को एक साल तक चीनी और नमक की जरूरत नहीं है। अभी वो जो कॉम्प्लीमेंट्री फूड हम शुरू कर रहे हैं उसके टेस्ट से फेमिलियर हो रहा है, तो नमक और चीनी कभी कभी ओरिजिनल टेस्ट को ओवर पार कर लेते हैं और वो असल खाने को समझ नहीं पाता है। मैं यहाँ एक चीज स्पेशली कहना चाहूंगी, प्लीज क्विक फिक्सेस अवॉइड करिए। अगर बच्चा मील रिजेक्ट कर रहा है या वो रो रहा है, तो बिस्किट या पैकेज स्नैक्स देना उस मोमेंट में आपको इजी लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे की प्रेफरेंस वही खाना बन जाती है और वो उसकी हैबिट तोड़ना मुश्किल हो जाता है, और फिर नॉर्मल खाना देना और डिफिकल्ट हो जाता है। उसके बजाय जो फेमिलियर फूड है, जो वो पहले एक्सेप्ट कर चुका है, वही खाना दीजिए। आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन, डिफरेंट टेक्सचर उन्हीं खानों के साथ ट्राई कर सकते हैं। क्विक सॉल्यूशन के लिए प्रोसेस फूड की बजाय फेमिलियर खाना दीजिए, शॉर्टकट ना अपनाएं।
0: जी डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर की बातों से एक बात जरूर क्लियर हुई है, घर का बना सिंपल और फ्रेश खाना ही सबसे बेस्ट होता है। सो जितने भी पेरेंट्स आज हमें सुन रहे हैं, प्लीज बिस्किट और पैक्ड फूड को इग्नोर कीजिए। अगर आप अपने बच्चे का पहला खाना यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो कुछ चीजों का ख्याल जरूर रखिए जो आज हमें डॉक्टर बता रहे हैं। साथ ही घर का बना खाना सबसे बेस्ट होता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी घर के बने खाने को ही दीजिए। इसी के साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेणु खुराना और आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। डॉक्टर, अगर बात की जाए खाने की यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, तो ये जानना चाहते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे की जाए। क्या एक ही तरह के खाने को हमेशा बच्चे को खिलाया जाए या फिर बच्चे के खाने में वैरायटी इंट्रोड्यूस करना जरूरी होता है। इसी के साथ बात की जाए अगर कंसिस्टेंसी की, तो किस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए खाने की, ज्यादा पतला, ज्यादा गाढ़ा या बिल्कुल पेस्ट जैसा जो बच्चा आराम से खा सके। ये कई तरह के डाउट्स हैं जो हर पेरेंट्स के मन में रहते हैं। आज हम उन्हीं डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। इसी के साथ डॉक्टर, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, अगर बच्चा शुरुआती दौर में खाना खाना शुरू कर रहा है तो दिन में कितनी बार खाना खिलाएं 6 से 8 महीने के बच्चे को?
1: हाँ अंजलि, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का पर्पस बस बच्चे का पेट भरना नहीं है, बल्कि उसे न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट देना है। अगर हम बेबी को बार बार एक ही तरह का खाना देते हैं, जो कि कुछ माओं को बहुत आसान लगता है, तो उसकी सारी न्यूट्रिशनल जरूरत उस खाने से पूरी नहीं होगी। इस एज में उसको कई तरह के विटामिन्स चाहिए और आयरन और जिंक जैसे कई मिनरल्स की जरूरत है। प्रोटीन और हेल्दी फैट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए धीरे धीरे हमें उसके डाइट में अलग अलग तरह के फूड ग्रुप्स इंक्लूड करना जरूरी होता है, जैसे हरी सब्जियां हैं, नॉर्मल सीजनल सब्जियां, दालें, लेग्यूम्स, रूट ट्यूबर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, एज अप्रोप्रिएट नट्स और सीड्स, ऑफ कोर्स इन पाउडर फॉर्म एंड वेल कुक्ड फूड। 6 से 8 महीने के बच्चे को 1 टेबलस्पून दिन में 2 बार हम दे सकते हैं और धीरे धीरे हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो हम वैरायटी की बात कर रहे हैं खाने की, जो हम खाने में वैरायटी ऐड करने की बात कर रहे हैं, उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जितनी वैरायटी हम इंक्लूड करते हैं, उतना बच्चे की एक्सेप्टेंस बढ़ती जाती है अलग अलग तरह के खानों के लिए, और उसकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में भी उसका बहुत बड़ा रोल है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया, शुरुआती दौर में ध्यान रखें, खाना हमेशा सिंपल और सॉफ्ट होना चाहिए। अगर बात की जाए क्वांटिटी की, तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी के साथ ही हमें बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपका बेबी अडेप्ट करता है खाने की हैबिट को, उसी तरह से क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ा देनी चाहिए। अगर इस तरह से इनिशियल डेज में रूटीन सेट किया जाता है, तो एक बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाता है खुद को खाने के साथ इंट्रोड्यूस कर पाना। इसलिए कहा जाता है कि हर एक छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखना शुरुआती दौर में बहुत जरूरी होता है। फिलहाल वक्त हो गया है एक म्यूजिक ब्रेक का, फिर से लौटेंगे पोषण की पाठशाला में आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: इस शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। डॉक्टर, अगर बात की जाए शुरुआती दौर में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो ये बताइए न्यूट्रिएंट्स सबसे ज्यादा जरूरी क्यों होते हैं, जैसे आयरन, प्रोटीन या फिर गुड फैट्स। साथ ही जो पेरेंट वेजिटेरियन है वो कैसे इंश्योर करे कि प्रॉपर प्रोटीन वो अपने बच्चे को दे सके, जैसे कि दाल का पानी या फिर दाल मैश कर या फिर कोई सब्जी। किन तरह के ऑप्शंस को वो इंक्लूड कर सकते हैं बेबी के खाने में, सो दैट कि प्रॉपर प्रोटीन एक बच्चे को दिया जा सके।
1: बढ़ते हुए बच्चे के लिए हमें बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन और एनर्जी की जरूरत है, तो एक कोई पर्टिकुलर खाना लेकर हम नहीं चलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हरी सब्जियां हों, सीजनल सब्जियां हों और दालें, लेग्यूम्स हैं। अंडा और दूध हम 8 महीने कंप्लीट होने पर शुरू कर सकते हैं। जो लोग केवल वेजिटेरियन फूड खाते हैं उनके लिए भी बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन देना बहुत आसान है, अगर हम अलग अलग तरह के फूड ग्रुप्स में से खाना पिक करके कॉम्बिनेशन में बनाते हैं। जैसे आप खिचड़ी दे रहे हैं तो उसमें दाल जा रहा है, और दलिया है तो उसमें दूध चला जाएगा। 6 महीने से लेकर 2 साल तक का बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है, और इस समय उसे आयरन और जिंक जैसे मिनरल बहुत बहुत जरूरी हैं, ताकि उसकी ग्रोथ पे कोई असर ना पड़े। उसको हेल्दी फैट्स चाहिए, क्योंकि इस समय पर उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, एक्टिविटी बढ़ रही है बॉडी की, और प्रोटीन्स ऑफ कोर्स हमें उसकी मसल्स बन रही हैं, वो बड़ा हो रहा है, इसलिए प्रोटीन्स की बहुत ज़रूरत है। तो हमें कोशिश करना है कि हम दाल है, लेग्यूम्स है, और खिचड़ी बना रहे हैं अगर हम तो उसमें 1 चम्मच घी डाल देंगे, और बादाम को पीस कर भिगो कर वो हम खाने में ऐड कर सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो हम थोड़ा सा तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली उनको भिगो कर पीस कर पका कर ही देना है। देखिए, इस स्टेज पर बेबी को सिर्फ पेट भरना नहीं है, उसको सही तरह से ग्रो भी करना है, इसलिए कुछ न्यूट्रिएंट्स थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे आयरन, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स। वेजिटेरियन घरों में भी ये इजीली मैनेज हो सकते हैं। दाल, खिचड़ी, सब्जी मैश, थोड़ा सा घी ऐड करके हम दे सकते हैं। अलग अलग तरह के अनाजों का हम दलिया बना सकते हैं, उसमें कुछ नट्स और सीड्स को हम भिगो कर पीस कर ऐड कर सकते हैं। इस समय जो बच्चे की न्यूट्रिशनल जरूरत है वो पूरी हो जाती है। और एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है कि हमें दाल देनी है या दाल का पानी देना है। तो अगर हम बच्चे को दाल का पानी देते हैं, उसकी छोटी सी भूख जो है वो दाल के पानी से भर जाएगी, लेकिन अगर हम दाल को अच्छे से पका कर मैश करके वो बच्चे को खिलाते हैं तो उन्हीं 2 चम्मच में उसको ज्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है, जो कि उसकी इस समय की जरूरत है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि डॉक्टर ने बताया, शुरुआती दौर में सिर्फ बच्चे का पेट भरना जरूरी नहीं है, बल्कि एक बच्चे को सही खाने के साथ सही न्यूट्रिएंट्स देना जरूरी है, जैसे कि सही तरह से आयरन देना, गुड फैट्स देना, प्रोटीन देना, ताकि एक बच्चे की सही ग्रोथ, सही डेवलपमेंट और एक सही फाउंडेशन बन सके। सो माय डियर पेरेंट्स, बस इन्हीं बातों का आपको ख्याल रखना है कि आपका मोटिव सिर्फ बच्चे को खाना खिलाना नहीं, बल्कि बच्चे को सही पोषण वाला खाना खिलाना है। इसी के साथ अब वक्त हो गया है एक म्यूजिक ब्रेक का। बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: इस शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। सो डॉक्टर, जब बात की जाती है कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, जहाँ बच्चे को शुरुआती दौर में इंट्रोड्यूस किया जाता है खाने से, सो ऐसे में कई बार देखा गया है कि डाइजेशन इश्यूज, एलर्जीज और सेफ्टी एक बहुत बड़ा डाउट रहता है। तो ऐसे में हर नया खाना इंट्रोड्यूस करते वक्त क्या गैप देना चाहिए, साथ ही कितने दिन का गैप रखना चाहिए अगर हम बच्चे को एक खाना इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर बात की जाए फूड एलर्जीज की, तो फूड एलर्जी के अर्ली साइन क्या होते हैं जिनको पेरेंट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, घर में सफाई और हाइजीन का खाने से क्या कनेक्शन है सो दैट कि बच्चे को किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो।
1: ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन है बहुत सिंपल सी बात। जब हम बच्चे को कोई नया खाना इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे उस खाने को फेमिलियर होने में या एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लग सकता है। इसीलिए ये एक प्रिंसिपल है कि जब भी आप कोई नया खाना बच्चे को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक रूल लेकर चलें कि एक समय पर आप एक ही खाना उसे खिलाएं और 2-3 दिन के गैप के बाद हम नया खाना उसको टेस्ट कराएं। जैसे आज हमने उसको मैश डाल दिया, तो 3rd या 4th डे पर जाकर हम उसे मैश राइस देंगे, फिर 3 दिन वही देकर और 4th दिन पर हम उसको खिचड़ी बनाकर दे सकते हैं या दलिया बनाकर दे सकते हैं। इससे आपको समझ आता है कि बेबी को उस फूड की टॉलरेंस है या बच्चे को भी उस खाने का टेस्ट समझ में आता है। खाना बच्चे को सूट नहीं कर रहा है तो उसे डेफिनेटली उससे रिएक्शन होगा। अब उसके सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं कि आंखों में स्वेलिंग आ जाएगी या आंखों से पानी बह रहा है बच्चे के, कभी कभी स्किन पर रैश हो जाता है या बच्चा वॉमिटिंग्स करता है, लूज मोशन हो सकते हैं, बच्चे के लिप्स में स्वेलिंग हो सकती है या फेस पर स्वेलिंग हो सकती है। ये सब साइंस हैं जो आपको बताते हैं कि बच्चे को फूड एलर्जी हो सकती है। तो इस बारे में आप थोड़ा ध्यान दें और बच्चे को डॉक्टर से मिलवाएं। बच्चा इस समय ग्रो कर रहा है, वो नया खाना एक्सेप्ट कर रहा है, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग नहीं होती है इस टाइम पर, तो हमें कोशिश करना है कि बच्चे के आसपास और खाना खिलाने के वक्त भी हम सफाई का बहुत ध्यान रखें। खाना बनाते समय और उसको खिलाते समय हमारे हाथ साफ हों, बर्तन साफ हों, घर का ताज़ा बना हुआ खाना उसको दें और बॉटल फीड बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि बॉटल से इन्फेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों में। सो जहाँ तक हो सके बॉटल फीड ना दें।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर अपने वैल्यूएबल इनसाइट्स हमें देने के लिए। डॉक्टर ने हमें ये बताया एक छोटी सी लापरवाही भी बेबी की हेल्थ पर बहुत बड़ा असर डाल सकती है, इसलिए हाइजीन और पेशेंस दोनों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो माय डियर पेरेंट्स, इन सभी छोटी छोटी बातों का जरूर ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बेबी का ख्याल रखिए, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: पोषण की पाठशाला सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रेणु खुराना, जहां आज हम जान रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के बारे में। सो डॉक्टर, अगर बात की जाए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की, तो इस दौरान फोर्स फीडिंग क्यों हार्मफुल हो सकती है एक बच्चे के लिए, साथ ही जितने भी वर्किंग पेरेंट आज हमें सुन रहे हैं, सो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैसे मैनेज की जा सकती है, उनके लिए कुछ ऐसे इजी ऑप्शंस जो आप बताना चाहें।
1: फोर्स फीडिंग एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है नॉर्मली हर घर में ही, और पेरेंट्स को बहुत नेचुरल लगता है क्योंकि वो बच्चे को अच्छे से पेट भर के खाना खिलाना चाहते हैं। अगर बच्चे को भूख नहीं है और हम उसको जबरदस्ती खिला रहे हैं तो बच्चा खाने को प्रेशर के साथ एसोसिएट कर लेता है, धीरे धीरे खाने को डिसलाइक करना शुरू कर देता है, उसे एज ए पनिशमेंट समझने लगता है और खाने से बचना चाहता है। इसलिए बेबी के हंगर क्यूज को समझें, इसे हम रिस्पॉन्सिव फीडिंग कहते हैं। माने आप देखें कब वो खाना मांग रहा है या उसको कितनी भूख है और कब वो खाना नहीं खाना चाहता। तो अगर हम बात करें वर्किंग मदर्स की, शुरू शुरू में उनको ये बहुत टफ लगता है, लेकिन काउंसलिंग के साथ, अवेयरनेस के साथ बहुत इजी बनाया जा सकता है इसको। इसके लिए कुछ चीजें हैं, जैसे प्लानिंग अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और थोड़ा सा प्रिपरेशन करके पहले से रख लेते हैं, और या फिर फैमिली फूड जो हम कुक कर रहे हैं उसमें एक या दो चीजें हम ऐसी बनाते हैं जो हम बच्चे को दे सकते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है। सिंपल घर का खाना हम बच्चे को दे सकते हैं आराम से। प्लानिंग में जैसे हमें अगर मालूम है कि हमें दिन में उसको दो फीड देने हैं, या जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो फीड बढ़ता जाएगा, तो वो छोटे छोटे पोर्शन आप प्रेप करके और कुक करके रख सकते हैं, और जो भी केयर गिवर है बच्चे का उसको आप अच्छे से बता सकते हैं। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, बस थोड़ा सा प्लानिंग की जरूरत है इसमें।
0: सो डॉक्टर ने आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है कि फोर्स नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस के साथ फीडिंग करनी है, और जितने भी वर्किंग मदर आज हमें सुन रही है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप बैलेंस बना सकते हैं। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आज डॉक्टर ने हमें बताए हैं, इन सभी ट्रिक्स एंड टिप्स का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा और कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को इजी बनाइएगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: इस शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजी अंशली आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हमने बात की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को लेकर। सो डॉक्टर, अगर आप एक लाइन में पेरेंट्स को मैसेज देना चाहें तो वो क्या होगा जो 6 महीने के बाद अपने बच्चे की कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं?
1: अंजलि, मैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को सिर्फ न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन नहीं मानती, ये एक बिहेवियरल ट्रांजिशन भी है। सो 6 महीने से लेकर 24 महीने तक का टाइम एक बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। इस फेज में बच्चा टेस्ट और टेक्सचर से फेमिलियर होता है फूड के, वो अपनी भूख को और फुलनेस को समझता है, ईटिंग एनवायरनमेंट एब्जॉर्ब करता है। इसलिए फीडिंग को सिर्फ कितना खाया से जज नहीं करना है, हमें उस प्रोसेस पर फोकस करना है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए। बच्चे को हमें रिस्पॉन्सिव फीडिंग कराना है, क्यों समझना है कि बच्चा खाना मांग रहा है या अब उसको भूख नहीं है। बच्चे को कभी भी ओवर फीड ना कराएं और ना ही उसकी भूख को नेग्लेक्ट करें। प्रेशर फीडिंग बिल्कुल अवॉइड करें। खाते समय बच्चे के आसपास पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाकर रखें, उसको डिस्ट्रैक्शन से बचाएं, टीवी फोन या बहुत ज्यादा शोर आसपास ना हो, ताकि वो अपने खाने को एंजॉय कर सके। बेबी को खाना एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करें, जैसे खाना वो अपने हाथों से खाएगा तो वो उसके टेक्सचर को समझेगा, अपनी भूख को समझेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कभी भी बच्चे को उसके सिबलिंग से या और बच्चों से कंपेयर ना करें। मैंने प्रैक्टिस में रिपीटेडली देखा है, जहाँ फीडिंग प्रेशर कम होता है वहाँ लॉन्ग टर्म ईटिंग हैबिट्स बेटर होती हैं बच्चों के। सो हमें ध्यान रखना है कि फीडिंग न्यूट्रिशन प्रोसेस के साथ साथ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स की फाउंडेशन भी है, जो असल में उसकी एडल्ट लाइफ की हेल्थ की भी बहुत बड़ी फाउंडेशन है। सो आखिर में मैं कहना चाहूंगी, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को सिर्फ खाना शुरू करना मत समझिए। ये वो दौर है जहां बच्चा टेस्ट के साथ साथ ईटिंग हैबिट्स डेवलप कर रहा होता है और भी बहुत नई चीजें सीख रहा होता है। अगर ये फेज पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ हैंडल किया जाए तो फीडिंग स्ट्रगल नहीं होती बल्कि हेल्थी रूटीन बन जाता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड बहुत ही खूबसूरत और सिंपल मैसेज डॉक्टर ने आज हमें दिया है, जो मुझे लगता है कि हर पेरेंट को याद रखना चाहिए। सो माय डियर न्यू पेरेंट्स, अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हैं, सो उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ही यूजफुल और रियश्योरिंग रहा होगा। 6 महीने के बाद बच्चे का पहला खाना उसके हेल्दी ग्रोथ और डेवलपमेंट की एक बहुत जरूरी शुरुआत होती है, और आज हमने जाना कि सही समय पर सही तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करना बच्चे के फ्यूचर हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। एंड इसी के लिए थैंक यू सो मच डॉक्टर रेणु खुराना, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया और इतनी सिंपल और प्रैक्टिकल गाइडेंस आप तक पहुंचाई। इसी के साथ अब वक्त हो गया है मेरा यहां से जाने का, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अगले वीकेंड पोषण की पाठशाला में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: पूछा?
1: नहीं
2: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: आप बात में यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूदा मत मर जाऊंगा।
3: साले डर गया, ट्यूबलाइट
2: साले इतना सारे, तू कूद गया।
3: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
2: क्यों
3: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
2: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू भी खुद मेरे साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM कुछ छक्के
1: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
2: कुछ हटके।

0: बॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझे मुझसे मिलाया है।

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुआ है।
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

सोचिए, एक 14 साल की लड़की जिसे कभी बॉक्सिंग पसंद थी, कभी स्केटिंग, कभी टेनिस, अचानक एक दिन बंदूक उठाती है और कुछ ही सालों में दुनिया के सबसे बड़े मंच पर भारत का नाम रोशन कर देती है। लेकिन इस सफर में एक ऐसा मोड़ भी आया जहां पूरा देश उसे असफल मान चुका था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं मनु भाकर की। 18 फरवरी 2002 हरियाणा के झज्जर जिले के गोरिया गांव में जन्मी मनु भाकर बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग थी। उनमें एक चीज कॉमन थी, हर काम में सबसे आगे निकलने की जिद। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने बॉक्सिंग की, मार्शल आर्ट सीखी, स्केटिंग में हिस्सा लिया और टेनिस भी खेला। ऐसा लगता था कि खेल कोई भी हो, मनु उसमें अपनी पहचान बनाई लेंगी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन उन्होंने शूटिंग रेंज देखी, पहली बार हाथ में पिस्टल पकड़ी और यहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। दिलचस्प बात यह है कि शूटिंग बहुत महंगा खेल माना जाता है, लेकिन मनु के परिवार ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और पूरा साथ दिया। मनु ने ट्रेनिंग शुरू की और बहुत जल्दी सबको एहसास हो गया था कि ये लड़की नॉर्मल नहीं है। जहां कई खिलाड़ी सालों तक नेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत संघर्ष करते हैं, वहीं मनु ने बेहद कम समय में अपने खेल से सभी को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करना शुरू कर दिया था। उनकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, इंडिया के लिए कुछ बड़ा करना है। और शायद उन्हें खुद भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले कुछ सालों में वो भारतीय शूटिंग की सबसे बड़ी स्टार बनने वाली है। लेकिन स्टार बनने से पहले उन्हें दुनिया को साबित करना था कि वो सिर्फ एक टैलेंट नहीं बल्कि एक चैंपियन है। और कैसे बनी वो चैंपियन करेंगे इसके बारे में बात, कैसे वो पहुंची इंटरनेशनल स्टेज तक, सब कुछ करेंगे बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई तुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

जिस उम्र में ज़्यादातर स्टूडेंट स्कूल असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम की टेंशन ले रहे होते हैं, उस उम्र में एक इंडियन गर्ल इंटरनेशनल स्टेज पर रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी। साल था 2018। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं मनु भाकर की। मनु भाकर नेशनल लेवल पर अपना नाम बना चुकी थी, लेकिन अब उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर खुद को प्रूव करना था। मौका मिला कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 का, जो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हो रहे थे। पूरे इंडिया की नजरें इस यंग शूटर पर टिकी हुई थी। प्रेशर बहुत था और एक्सपेक्टेशंस उससे भी ज्यादा थी, लेकिन मनु ने प्रेशर को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने इतना जबरदस्त परफॉर्म किया कि कंपटीशन के रिकॉर्ड्स तक हिल गए। और फिर आया वो मोमेंट, स्कोर अनाउंस हुआ और मनु भाकर ने गोल्ड मेडल जीत लिया। सिर्फ 16 साल की उम्र में पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था, न्यूज चैनल्स पर उनका नाम छा गया। लेकिन मनु यहीं नहीं रुकी, इसी साल उन्होंने ISSF वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीता और दुनिया के टॉप शूटर्स को चैलेंज कर दिया। अब उन्हें इंडियन शूटिंग का फ्यूचर स्टार कहा जाने लगा। हर तरफ एक ही डिस्कशन था, क्या ये लड़की ओलंपिक मेडल भी ला सकती है? मनु का कॉन्फिडेंस पीक पर था, वो किसी बड़े नाम से नहीं डरती थी। टारगेट चाहे कितना भी टफ हो, उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता था और वो है परफेक्ट शॉट। लेकिन स्पोर्ट्स की दुनिया में सक्सेस कभी परमानेंट नहीं होती, कभी कभी एक ही दिन सब कुछ बदल देता है। और मनु की लाइफ में भी वो एक दिन आने ही वाला था, एक ऐसा दिन जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगी। कौन सा था वो दिन, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ।

0: गोवा जा रहा हूँ। सवार है पानी की एक बूंद भी दिखी हो। चल मिठू, बस थोड़ी देर और।
1: गाय हमारी माता है तो बोलते हैं, तो फिर इस मम्मी को पानी भी तो पिला ही सकते हैं। उफ, देख क्यों नहीं रहा ये पानी।
2: ओ नो, ये प्लेट में तो पानी ही नहीं है। अले, दूसरा भी खाली है। बहुत गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं?
3: गर्मी सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि उन बेजुबानों को भी सताती है जो बिन घर और खाने के रोज भटकते हैं। तो ये समझते हुए, क्या आप उनके लिए थोड़ा सा पानी रखेंगे? सड़क किनारे, बालकनी, छत या घर के बाहर, जगह नहीं इंटेंशन ढूंढो। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

कभी कभी सालों की मेहनत एक ही पल में बिखर जाती है, और मनु बाकर के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब पूरा देश उनसे मेडल की उम्मीद लगाकर बैठा था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं इंडियन शूटर मनु भाकर की। साल था 2021, टोक्यो ओलंपिक्स, हर एथलीट का सबसे बड़ा सपना, और मनु भाकर इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट मेडल कंटेंडर्स में से एक मानी जा रही थी। करोड़ों इंडियंस को उनसे मेडल की उम्मीद थी। कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरी कहानी बदल दी। मैच के टाइम पर उनकी पिस्टल में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। ओलंपिक्स जैसे स्टेज पर हर सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। समय निकलता गया, प्रेशर बढ़ता गया, और मनु का रिदम टूट गया। रिजल्ट आया और वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं दे पाई। जो एथलीट मेडल फेवरेट थी वो पोडियम से बहुत दूर रह गई। सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, लोग क्वेश्चंस पूछने लगे, कुछ लोगों ने तो उनकी कैपेबिलिटी पर भी डाउट करना शुरू कर दिया। लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि एक यंग एथलीट के दिल पर क्या बीत रही थी। ओलंपिक से खाली हाथ लौटना उनके लिए बहुत ज्यादा पेनफुल था। यह सिर्फ एक डिफीट नहीं थी, यह उन सपनों का टूटना था जो उन्होंने बचपन से देखा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग हार के बाद रुक जाते हैं और कुछ लोग हार को अपनी कमबैक स्टोरी बना देते हैं। मनु ने दूसरा रास्ता चुना, और आगे कैसे उन्होंने दुनिया के मन से डाउट को खत्म किया, करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा।

0: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ, इसलिए गधा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
2: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

सबसे मुश्किल बैटल कभी कभी ग्राउंड पर नहीं बल्कि अपने दिमाग के अंदर लड़ी जाती है, और टोक्यो के बाद मनु बाकर को वही बैटल जीतनी थी। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं मनु बाकर की। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मनु के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो डिसअपॉइंटमेंट में डूब जाती या फिर वापस उठकर दुनिया को जवाब देती। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। ट्रेनिंग दोबारा स्टार्ट हुई, गलतियों का एनालिसिस हुआ, मेंटल स्ट्रेंथ पर काम हुआ, हर दिन एक नए मिशन की तरह था। उनका गोल बहुत सिंपल था, वापस आना और पहले से ज्यादा स्ट्रांग होकर वापस आना। अगले कुछ सालों में मनु ने लगातार कॉम्पिटिशन खेले, हर टूर्नामेंट उनके कॉन्फिडेंस को थोड़ा और स्ट्रांग बनाता गया। अब वो सिर्फ टैलेंटेड शूटर नहीं थी, वो एक एक्सपीरियंस्ड एथलीट बन चुकी थी। उन्हें पता चल चुका था कि प्रेशर को हैंडल कैसे करना है। क्रिटिक्स धीरे धीरे चुप होने लगे और सपोर्टर्स को लगने लगा कि मनु की बेस्ट परफॉर्मेंस अभी आनी बाकी है। अब सारी नजरें पेरिस ओलंपिक्स पर थी। एक सवाल सबके दिमाग में था, क्या मनु भाकर अपनी अधूरी ओलंपिक स्टोरी को कंप्लीट कर पाएंगी? जवाब जल्दी मिलने वाला था और वो जवाब हिस्ट्री बनाने वाला था। कैसे करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं

ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ। जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

0: दिया।
1: मम्मा मम्मा आपको गर्मी लगती है क्या?
2: बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुबह से 3 बार नहा चुकी हूँ फिर भी वही हाल है मेरा।
1: तो फिर मम्मा बाहर जो डॉगी है और जो छत पे जो बर्ड्स आते हैं उन्हें भी तो लगती होगी ना मम्मा?
2: शायद मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे?
1: मम्मा जब आप इतनी गर्मी से परेशान हो तो सोचो वो बेजुबान तो बता भी नहीं पाते उन्हें कितनी गर्मी से दिक्कत होती है, तो मम्मा हम उनके लिए पानी तो रख सकते हैं ना।
3: कभी कभी इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात हमें किसी किताब से नहीं एक छोटे बच्चे की मासूमियत से सीखने को मिलती है। इस तपती गर्मी में एक छोटा सा बोल पानी का किसी बेजुबान की प्यास ही नहीं उसकी जान भी बचा सकता है। तो इस गर्मी घर के बाहर जानवरों के लिए और बेल्कनी या टेरिस में बर्ड्स के लिए थोड़ा सा पानी जरूर रखिए।

0: जिस एथलीट को टोक्यो के बाद लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर दिया था, उसने पेरिस में ऐसा कमबैक किया कि पूरा देश खड़े होकर तालियां बजाने लगा। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन शूटर मनु भाकर की। पेरिस ओलंपिक्स 2024, मनु भाकर अब पहली वाली यंग प्रोडिजी नहीं थी, अब वो स्ट्रगल, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन चुकी थी। कॉम्पिटिशन शुरू हुआ, प्रेशर फिर से था, एक्सपेक्टेशंस फिर से थी, लेकिन इस बार मनु मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से तैयार थी। वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया, और फिर आया वो हिस्टोरिक मोमेंट, मनु भाकर ने ओलंपिक मेडल जीत लिया। पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ ही समय बाद उन्होंने एक और मेडल जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। वो इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली एथलीट बन गई जो कि एक ही ओलंपिक्स में दो मेडल्स जीतने में सक्सेसफुल रही। ये सिर्फ मेडल्स नहीं थे, ये टोक्यो के दर्द का जवाब था। ये उन सब लोगों के लिए जवाब था जिन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, और सबसे बड़ा जवाब था उनके खुद के लिए। आज मनु भाकर की कहानी हमें एक सिंपल लेसन देती है। कभी कभी जिंदगी आपको गिरा देती है, कभी कभी सपने टूट जाते हैं, लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखते हो तो वही टूटे हुए सपने एक दिन हिस्ट्री बन सकते हैं। और इसीलिए मनु भाकर एक शूटर नहीं, एक कमबैक स्टोरी है, एक इंस्पिरेशन है, और एक नाम है जो इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। हमारा नंबर है 9654896896। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। रेडियो महारानी के नाम से आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते रहिए और मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आप सभी से फिर से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, you are not ready for this.
2: Na de dil par desi mohan tan ne tadaruna.

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: Yes, yes. Say it again.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं सहयोगी संस्थान ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियां लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आप सबने हमारे इस कार्यक्रम में अंगदान, उतक दान और देहदान से जुड़े लोगों के अनुभवों को सुना है तथा इन विषयों से जुड़े डॉक्टर्स के द्वारा दी गई जानकारी ली है। हमारे देश में उतक दान की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग आई डोनेशन और स्किन डोनेशन के बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो उतक दान से जुड़ी जानकारी देंगे, तो सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ये भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: एक बार फिर आप सभी का ऑर्गन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत है। आज हमारे साथ ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा हैं और वो बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से, जो हमें स्किन डोनेशन से जुड़ी खास जानकारी देंगे। तो चलिए उनके पास चलकर बात करते हैं।
1: धन्यवाद पायल। दोस्तों, हम हमेशा आपसे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बात करते हैं और उनके विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम खास तौर पे स्किन यानी कि त्वचा के प्रत्यारोपण के बारे में लेके आए हैं। दोस्तों, हमने अपने पहले के कई कार्यक्रमों में टिश्यू डोनेशन यानी कि ऊतक दान के बारे में बताया है और स्किन डोनेशन भी एक तरह का ऊतक दान ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी, जो कि बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक प्लास्टिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हैं और भोपाल शहर के जाने माने विशेषज्ञों में इनकी गिनती होती है। डॉक्टर राठौर, मैं सभी दर्शकों और ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ बांट सकूं और ऑर्गन इंडिया के इस ऑर्गन डोनेशन अभियान का हिस्सा बन सकूं, मुझे बहुत खुशी है।
1: डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि स्किन डोनेशन क्या होता है, स्किन ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टिंग किस तरह के मरीजों के काम में आती है।
2: हाँ देखिए, जिस तरह आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उसी तरह स्किन ट्रांसप्लांट होता है। स्किन ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी और व्यक्ति की स्किन को यदि मरीज में दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है तो उस चीज को हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो एक अलग है। स्किन ग्राफ्टिंग में पेशेंट की ही स्किन पेशेंट के घाव भरने के लिए लगाई जाती है और स्किन ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन को पेशेंट में लगाया जाता है तो उसे हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। स्किन ट्रांसप्लांट बहुत ही कारगर मेथड है, स्पेशली बर्न वाले पेशेंट्स में, जिनमें जो है अधिक डिग्री का और अधिक मात्रा में बर्न होता है। जैसे कि आप समझिए कि यदि किसी को 60-70% का बर्न है तो उसके पास इतनी अवेलेबल स्किन नहीं है कि हम उस घाव को जो कि उस बर्न के बाद हुआ है उसको स्किन से भर पाए, तो उन कंडीशंस में हमें स्किन डोनर्स की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत एक्सटेंसिव ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी जो है स्किन डोनर की हमें जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि एसिड विक्टिम्स जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी एक्सटेंसिव बर्न होता है, उसमें भी स्किन डोनेशन की बात होती है। यदि आप आंकड़ों की बात करें तो साल भर में लगभग 10 लाख लोग जलते हैं और कम से कम 3-4 लाख लोगों को स्किन डोनेशन से बहुत हेल्प मिलती है और इनको होने वाले संक्रमण के खतरे और मृत्यु का जो खतरा है उसे स्किन डोनेशन के माध्यम से टाला जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि स्किन डोनेशन किस तरह से किया जाता है।
2: देखिए, स्किन डोनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइव डोनर और आफ्टर डेथ दोनों तरीके से स्किन डोनेट किया जा सकता है। लाइव डोनर का मतलब है कि कोई भी जिंदा आदमी, चाहे वो उस पेशेंट का रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो स्किन डोनेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, कोई भी 18 साल का व्यक्ति जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है स्किन को डोनेट कर सकता है। दूसरी बात आती है कि किस किस तरह से हम और कहां कहां से स्किन ले सकते हैं। जनरली हम बॉडी के हिडन पार्ट मतलब छुपे हुए भागों से स्किन लेते हैं, जैसे कि थाइज हो गई या फिर बटक्स वाले रीजन हो गए, ताकि आपको स्किन हार्वेस्ट करने के बाद भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो डिफॉर्मिटी है वो आपके कपड़ों में ढकी हुई रहती है। कोई बहुत मेजर विकृति इसमें नहीं बनती है क्योंकि इसमें स्किन का सुपरफिशियल जो पार्ट है वो लिया जाता है। स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस का आधा भाग लिया जाता है, तो वो नीचे जो थाइस पे आपके घाव बनता है वो अपने आप 21 डेज में ऑटोमेटिकली हील अप हो जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ विद इन 6 आवर्स जो है हम स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्किन को हार्वेस्ट हम दोनों लेग से करते हैं, दोनों अपर लिम्स मतलब ऊपर के दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया पे ड्रेसिंग कर दी जाती है, तो आपको बॉडी भी बहुत ज्यादा म्यूटिलेटेड कंडीशंस में नहीं दिखती है, ताकि आपके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो भी अफेक्ट नहीं होंगे।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और थोड़ी ही देर में हम वापस आके अपनी इस बात को कंटिन्यू करेंगे।

save life. पर सेव वॉटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम बात कर रहे हैं भोपाल शहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील राठौर जी से। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम जिंदा रहते हुए और मरने के बाद दोनों तरह से स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो आपने बताया कि स्किन में जो दो लेयर्स होती हैं उसमें से सिर्फ हम ऊपरी लेयर का इस्तेमाल करते हैं, सुपरफिशियल लेयर लेते हैं। तो जब हम जिंदा रहते हुए अगर अपने और स्किन को डोनेट करते हैं जहाँ से हम स्किन ले रहे हैं, तो उस पार्ट पे जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो चीज़ें नहीं दिखती क्या?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्किन है उसका ऊपरी लेयर लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी जो है, स्किन जो है वो बॉडी का आउटर कवरेज है, तो स्किन की ऊपरी जब हम लेयर लेते हैं तो उसमें अंदर का कोई भी मांसपेशी या ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता और स्किन एज ए बॉडी कवर यूज किया जाता है या बॉडी कवर यूज होता है। इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन यदि आप स्कारिंग और डिफॉर्मिटी की बात करें कि वो गंदा दिखेगा, सुपरफिशियल लेयर लेने की वजह से वहां पे कोई सिग्निफिकेंट स्कार भी नहीं आता है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हम बॉडी के जो है हिडन पार्ट से लेते हैं, तो आपको इस बारे में कि कोई शारीरिक कमजोरी होगी, कोई मेजर डिफॉर्मिटी होगी या कोई बहुत भद्दा सा स्कार आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम मरने के बाद भी अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो मरने के बाद हम कितनी देर के अंदर, आपने बताया कि 6 घंटे के अंदर हम स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो उन 6 घंटों में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, अगर ऐसी कोई एडवाइस आप देना चाहें?
2: स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इवन मरने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा कुछ एडिशनल सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन आपको रखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि जिस पेशेंट की आप स्किन हार्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर जो डोनर आपके पास अवेलेबल हो, वो किसी भी तरह से कुछ इन्फेक्शंस जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोई स्किन का इन्फेक्शन, कोई स्किन का ट्यूमर या फिर कोई स्किन की गंभीर बीमारी उस पेशेंट को ना हो। यदि उस पेशेंट को इस तरह का कोई भी बीमारी नहीं है, तो 6 घंटे के अंदर हम किन्हीं भी कंडीशंस में स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट स्पेशल प्रिकॉशन।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर जिसको हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनसे हमारा ब्लड ग्रुप या टिश्यू मैच होना जरूरी है, HLA मैच होना जरूरी है, तभी हम अपना कोई ऑर्गन रेसिपिएंट को दे सकते हैं, तो क्या स्किन डोनेशन के टाइम पर भी ब्लड ग्रुप का मैच होना या टिश्यू मैच का होना बहुत जरूरी है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। स्किन ट्रांसप्लांट या स्किन डोनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही है कि स्किन डोनेशन के लिए किसी भी तरह का टिश्यू मैच या HLA मैचिंग करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पेशेंट्स आफ्टर डेथ स्किन को डोनेट कर सकता है, तो आपको किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुपिंग या किसी पर्टिकुलर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट स्किन डोनेशन में नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि कॉर्निया और दूसरे टिश्यूज को हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो क्या हम स्किन को भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कितने समय के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जैसे आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे के बाद स्टोर नहीं कर सकते हैं उनको। आपको कोई ना कोई इमीडिएट रिसिपिएंट की जरूरत होती है उसके ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन स्किन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्किन में हम स्किन बैंक में स्किन को 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं, इवन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 21 डेज के लिए जो है स्किन को स्टोर कर सकते हैं। तो स्किन डोनेशन में ये जरूरी नहीं कि

0: आप डोनेट करने जा रहे हैं या आपका पेशेंट स्किन को डोनेट करने जा रहा है तो इमीडिएट रिसिपिएंट की नीड हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उस स्किन को 5 साल तक किसी भी और मरीज के लिए यूज किया जा सकता है, इमीडिएट रिसिपिएंट की इसमें नीड नहीं।
1: डॉक्टर साहब हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से और कुछ ही समय में हम वापस आएंगे और अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे।
2: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का, जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी श्रोताओं का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार है। मैं हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। सर, जब हम लोगों से इस बारे में बात करते हैं स्किन डोनेशन के बारे में, तो हमारे सामने इससे जुड़े कई गलत तथ्य और भ्रांतियां सामने आती हैं, तो मैं चाहता हूं कि एक विशेषज्ञ के तौर पर आप इनके बारे में सही जानकारी हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहला जो मिथ आता है, वो सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन डोनेट करने पे हमारी बॉडी या हमारी उस बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट विक्षिप्त हो जाता है, म्यूटिलेटेड हो जाता है, तो क्या ये सही है?
2: देखिए, ये मिथ जो है, ये भ्रम जो है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्किन डोनेशन में जो स्किन ली जाती है उसकी ऊपरी परत ली जाती है। उसको परत लेने के बाद जो शरीर का जो घाव रहता है वो 2 से 3 हफ्ते में बॉडी उसको अपने आप हील कर लेती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, हल्का फुल्का निशान जरूर रह सकता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जनरली स्किन डोनेशन के टाइम हम ट्राई करते हैं कि बॉडी के हिडन पार्ट से स्किन ली जाए, जैसे आपके थाइस के पीछे का एस्पेक्ट जो आपके कपड़ों के बाहर जो है जनरली दिखाई नहीं देता। और स्किन अकेले लेने की वजह से उनके अंदर के जो मांसपेशियां या फिर जो ऑर्गन्स हैं उनमें किसी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होता। तो आपका ये कहना कि बॉडी म्यूटिलेटेड हो जाती है या फिर कोई शारीरिक कमजोरी डेवलप होगी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। इस तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती।
1: जी, एक दूसरा भ्रम भी है जो अंग भंग को लेकर है कि हमारी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी इसके आड़े आते हैं। जैसे कि हिंदू मिथोलॉजी में ये कहा जाता है कि अंग भंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप जैसे दुनिया में आए थे आप वैसे ही दुनिया से जाने चाहिए, अदरवाइज आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये अंग भंग का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप इसके बारे में
2: देखिए। स्किन डोनेशन मैं ये चीज अच्छी है कि किसी भी तरह का कोई भी अंग भंग जो है आपको मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जो है वो सिर्फ स्किन का जो है हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जो है ड्रेसिंग कर दी जाती है। तो किसी भी तरह का जैसा हाथ या पैर का कटना, उस तरह का कटना जो है स्किन डोनेशन में नहीं किया जाता है। कोई भी हाथ या पैर नहीं निकाला जाता है, मृत शरीर के बॉडी पार्ट्स सारे अटैच होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स के ही जो हिस्से रहते हैं उनसे स्किन की ऊपरी लेयर निकाल दी जाती है। तो आपका ये कहना कि स्किन डोनेशन के बाद जो आपको बॉडी मिलेगी किसी तरह का उसमें अंग भंग रहेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी किसी भी तरह का बॉडी म्यूटिलेशन या अंग भंग आपके मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा।
1: एक और भ्रांति है कि अगर मेरी स्किन पर कोई टैटू है या स्टिकर है तो मैं स्किन डोनेट नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं
2: नहीं नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके स्किन पर टैटू है या फिर कोई मार्क है तो आप स्किन डोनेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपके शरीर पर टैटू हो या नहीं हो, किसी भी पार्ट की बॉडी की स्किन ली जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि उस टैटू वाले पार्ट की यदि स्किन को लेंगे तो सामने वाले जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें भी वो टैटू ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दें और बाकी जो नॉर्मल स्किन है वहां से स्किन हार्वेस्ट की जाती है। हाँ, ये यदि है कि आपके होल बॉडी पे आपने टैटू करवा के रखा है फिर भी और कोई डोनर अवेलेबल नहीं है, तो लाइफ सेविंग सिचुएशन में हम उस टैटू वाले व्यक्ति की स्किन भी एज ए डोनेशन ले सकते।
1: जी, और जब हम कोई स्किन लेते हैं और जब हम उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो रिसिपिएंट होता है उसके बॉडी पर वही स्किन मौजूद रहती है या फिर सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है?
2: ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। स्किन ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो स्किन है दूसरे पेशेंट की जो स्किन ली जाती है वो एक टेम्पररी कवर प्रोवाइड करती है। शुरुआती दौर में 4 से 5 दिन में जो घाव है उसके ऊपर स्किन अटैच हो जाती है, उस अटैच होने की वजह से उस घाव को वो कवर कर देती है और उस दौरान का जो संक्रमण है और बॉडी के जो पोषक तत्व उस घाव से बह रहे हैं वो रुक जाते हैं। उसके रुकने की वजह से जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो जाता है और मरीज की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन 25 से 30 दिन बाद, लगभग 1 महीने के बाद, धीरे धीरे करके वो स्किन जो है वो झड़ने लगती है, लेकिन जो घाव है वो सिकुड़ने लगते हैं, पेशेंट रिकवर करने लगता है और पर्टिकुलर घाव यदि उस स्किन के झड़ने के बाद जो बचते हैं उन पे जो स्किन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है और उस कम रिक्वायरमेंट को हम जो पेशेंट की अवेलेबल स्किन है उस स्किन से कवर कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक टेम्परेरी बायोलॉजिकल कवर है, लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट जो है वो ये है कि ये एक बेस्ट बायोलॉजिकल कवर है। किसी भी ड्रेसिंग या किसी भी दवाई से अच्छा है कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का एक पार्ट यदि उस घाव पे रखा जाता है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक नेचुरल वे में कन्वर्ट हो जाता है और मरीज के बचने की संभावना, स्पेशली एक्सटेंसिव बर्न जो बहुत ज्यादा जले हुए रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े ट्रॉमा वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें उनकी जान को बचाने में ये तरीका बहुत कारगर है।
1: डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार सुना है कि फेस ट्रांसप्लांट भी इस दुनिया में हुआ है, तो इस तरह की कोई चीज में भी ये चीज काम आती है, स्किन डोनेशन?
2: नहीं, स्किन डोनेशन और फेस ट्रांसप्लांट दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। स्किन डोनेशन में हम स्किन की एक पतली लेयर को जो है मृत शरीर या किसी जिंदा आदमी से जले हुए मरीज में लगाते हैं उसकी जान को बचाने के लिए। फेस ट्रांसप्लांट टोटली डिफरेंट है, उसमें किसी मृत शरीर के 6 घंटे के अंदर जो है उसके पूरी चेहरे और गर्दन के स्किन को छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के साथ निकाला जाता है,
1: पूरी मोटाई के साथ
2: निकाला जाता है और उसमें रक्त की नलियां होती हैं जिनको हम दूसरे पेशेंट में, स्पेशली बर्न विक्टिम्स जो रहते हैं जिनमें एक्सटेंसिव बर्न है, जिनमें कोई और प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हैं फेस को सुधारने के लिए, तो उन कंडीशंस में उस पूरी मोटी स्किन को जो है पूरे फेस के स्किन को दूसरे पेशेंट के फेस पे लगाया जाता है और छोटी छोटी रक्त नलिकाओं को जोड़ा जाता है, तो जो उनका जो नेचुरल ब्लड है वो ब्लड जो है उस ट्रांसप्लांटेड स्किन में सप्लाई होता है और ऑलमोस्ट नेचुरल एक्सेप्टेबल लुक देता है। आजकल एडवांस प्लास्टिक सर्जरी के इस दौर में फेस ट्रांसप्लांट भी जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, स्पेशली बर्न विक्टिम्स और ज्यादा जले हुए मरीजों में जिनमें कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाता है। लगभग काफी कुछ फेस ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले 5 से 10 साल में इस जो विधा है उसमें गति आएगी।
1: बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि किन किन परिस्थितियों में हम स्किन डोनेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: जी, स्किन डोनर को सिलेक्शन करने के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। सबसे पहला रहता है इन्फेक्शन। ये आपको अश्योर होना चाहिए कि जिस पेशेंट को या जिस मृत शरीर को आप एज ए डोनर यूज कर रहे हैं, यानी कि जो डोनेट करने के लिए रेडी है, उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई इन्फेक्शन ना, कोई स्किन का कैंसर ना हो, कोई स्किन की और इन्फेक्शियस गंभीर बीमारी ना हो, कोई और बॉडी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन ना रहा हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उस पेशेंट को ना रही हो, यदि ये सारी चीजें उस पेशेंट में नहीं होती हैं या पेशेंट या किसी व्यक्ति में जो लाइव डोनर है, तो उसके स्किन हम जरूर डोनेट करवा के एक जो है पेशेंट में ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी हमने स्किन डोनेशन से जुड़ी हुई जानकारी और तथ्य डॉक्टर साहब के माध्यम से जाने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन डोनेशन के माध्यम से नई जिंदगी मिली है। कल अगर आपको किसी भी समय ये लगता है कि हमें भी स्किन डोनेट करनी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाके प्लेज फॉर्म यानी कि संकल्प पत्र भर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए हमें हमारी हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील को धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी तरफ से और आपके मंगल भविष्य की भी हम कामना करेंगे और ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।
2: नमस्कार,
1: धन्यवाद।
3: तो ये थी आज की खास बात। मैं ऑर्गन इंडिया और उनकी टीम की प्रयासों की बहुत ज्यादा सराहना करती हूँ कि वो जनता के भविष्य और उनकी सेहत के लिए इतनी जटिल जानकारी जुटा के लाते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे इन प्रयासों से बहुत से मरीजों को और उनके परिवारों को फायदा हो रहा होगा, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा होगा। दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेते हैं और जल्द वापस आएंगे नई जानकारियों के साथ, नई कहानियों के साथ। आप सभी हमेशा सलामत रहें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
1: कुछ हटके.
3: हेलो, हाय, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके, और शो है खास मुलाकात. आज बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ, SIR, जिसका मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन. और आखिर ये SIR क्या है, इस सब पर बातें होंगी आज के शो में. मेरे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं रेडियो महारानी 89.6 FM पर. मेरे साथ हैं शिखा अंतिल जी, CEO जिला परिषद. मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका.
4: थैंक यू
3: जी.
4: मैं शिखा, CEO जिला परिषद फरीदाबाद. और हमारे, जैसा कि आप जानते हैं, फरीदाबाद में 6 असेंबलीज हैं, जिसमें से एक तिगांव है. तिगांव विधानसभा क्षेत्र की ERO जो है वो मैं हूँ
3: जी. तो मैम, मेरा क्वेश्चन सबसे पहला यही है, ये SIR प्रोसेस आखिर है क्या?
4: SIR बेसिकली एक बस ये हमारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है. ये जो हम सब ये जानते हैं कि जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है उनको अधिकार दिया गया है वोट कास्ट करने का.
3: जी जी.
4: जब वो वोट कास्ट करने का 18 प्लस का अधिकार है, तो वो सारा डेटा हम, जैसा कि सबको पता है, बूथ होता है, बूथ पे हमारी वोट कास्ट करने जाता है. वो हमारे एक इलेक्टोरल रोल बनता है, जिसमें हर वोटर की डिटेल्स होती है कि इस बूथ पर ये 1000 व्यक्ति है या ये 1200 व्यक्ति है जो वोट कास्ट कर सकते हैं. तो उस बूथ के जो वोटर्स हैं उनको हम चेक करना, उनका पूरा डेटा रिकलेक्ट करना, इस बेसिकली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. ये 2002 में इससे पहले हुआ था
3: जी,
4: और
3: जी.
4: उसके बाद 2026 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दिशा निर्देश पर ये कार्यवाही चल रही है. 14 जून से ये हमारा स्टार्ट हुआ था
3: जी,
4: और हम लगभग इसके एंडिंग के फेज में है, इन दी सेंस ऑफ की जो हमारे एनुमेरेशन फॉर्म की कलेक्शन.
3: यहाँ पर वक्त है गाने का. गाने के बाद फिर से लौटेंगे. शो है खास मुलाकात.

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है खास मुलाकात, और हम बात कर रहे हैं जो वोटिंग में थोड़ा सा चेंज हुआ है, एक रिविजन हुआ है इसी के बारे में, जिसको कहा जा रहा है SIR। और हमारे साथ मौजूद है शिखा अंतिल जी, CEO जिला परिषद।
1: मेरा सवाल ये आता है कि जब लोगों का ऑलरेडी वोटर लिस्ट में नाम है एड, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी?
2: देखिए, इसकी जरूरत ऐसे पड़ी कि आज मेरे वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन हम लोग जो है हमारे क्षेत्र में जागरूक नहीं है। अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, जैसे हम उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो हम लोग ध्यान ये नहीं देते कि हमें उसकी वोट भी डिलीट करा देनी चाहिए, या किसी बहन बेटी की शादी हो गई, या किसी ने अपना घर शिफ्ट कर लिया, तो हम नई जगह जाके वोट तो बनवा ले, लेकिन पुराने इलेक्टोरल रोल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हम एक्नोलेज करते कि हमें वहां से वोट कटवा भी देनी चाहिए। तो रोल में सरप्लस वोटर्स जो है वो रहते हैं, तो उसका बेसिकली इट्स अ शुद्धिकरण।
1: ओके,
2: हम अपने रोल को जो है क्लीनजिंग का प्रोसेस है कि जो हमारे एलिजिबल वोटर्स है वही रहे वहाँ पर। दिस इज द SIR।
0: तो अब हमने जान लिया है कि SIR प्रोसेस क्यों जरूरी है, और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है खास मुलाकात।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जी।

0: इसी ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ स्वागत है, शो है खास मुलाकात। हम बात कर रहे हैं SIR प्रोसेस के बारे में और मेरे साथ मौजूद है शिखा अंतिल जी, CEO जिला परिषद।
1: आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं, बिकॉज अगर कोई नई प्रोसेस बनती है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें लोगों को?
2: बेसिकली SIR फेजेस में चल रहा है। सबसे पहले तो जो हमारा बूथ है, सबसे महत्वपूर्ण इकाई इलेक्शन में रहती है हमारा बूथ, जहाँ पर हम वोट कास्ट करने जाते हैं, वहाँ पर एक बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, BLO। हर बूथ पर एक BLO डेजिग्नेटेड है
1: जी।
2: उस BLO ने एनुमरेशन फॉर्म, एक तरीके का फॉर्म है जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया है, वो हर वोटर का बाय नेम आया है।
1: हाँ जी।
2: जिसे सपोज करो अगर 1200 वोटर है तो हर वोटर का अपने नाम से एक एनुमरेशन फॉर्म जो है वो BLO के पास आया, जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है।
1: हाँ जी।
2: अब आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस फॉर्म को भरे, उसमें डेटा जो है वो ठीक भरे और अपने BLO को सबमिट करे।
1: हाँ जी।
2: उसको सबमिट करने से क्या होगा, एक हमारा ड्राफ्ट रोल बनेगा जो 21 तारीख को हमारा पब्लिश होगा, जो हमारे ऐसे वोटर हैं जिनका जिन्होंने अपना नाम बूथ उस पे तो है हमारा वोटर लिस्ट में, लेकिन अपना फॉर्म नहीं भर के दिया, तो उनके नेम्स जो है वो उस वोटर लिस्ट में से काट दिए जाएंगे।
0: ओके। तो ये भी बात हो गई है कि SIR में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन वो इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप प्रोसेस करते हैं तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है खास मुलाकात।

0: इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है खास मुलाकात। मेरे साथ शिखा अंथिल जी जुड़ी हुई हैं, सीईओ जिला परिषद। हम बात कर रहे हैं एसआईआर के बारे में, जो अभी वोटिंग लिस्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं, एक रिवीजन हुआ है। अब इस रिवीजन में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, क्यों ये रिवीजन किया गया है, बस इसी सब पर बातें चल रही हैं।
1: अब यहां तो हमने बात कर ली कि जिनका नाम ऑलरेडी एड है वोटर लिस्ट में, लेकिन जो यंगस्टर पहली बार वोट करने जा रहे हैं या जिनका नाम पहली बार एड होगा, तो उनके लिए भी क्या कुछ अलग तरीके चेंजेस किए गए?
2: बिल्कुल अब बढ़िया बात। अभी ये जो हमारा प्रोसेस चल रहा है एसआईआर का, ये चल रहा है केवल जो एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं उनका चेकिंग का, उनके फॉर्म्स कलेक्ट होंगे, जो एलिजिबल है वो रहेंगे। लेकिन जैसा कि आपने पूछा नए वोटर्स का, तो 21 जुलाई को हमारा एक ड्राफ्ट रोल बनेगा और उसके बाद हम एक महीना तक जो है, जो ऐसे वोटर्स है, जो एलिजिबल वोटर्स है, वो अपना फॉर्म 6 होता है नई वोट बनवाने के लिए, उस वो भर करके अपने नई वोट बनवा सकते हैं।
0: ओके, तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे लिए कितनी जरूरी थी, जो जिसके बारे में हम अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है खास मुलाकात।

0: तो ऐसे ही धमाकेदार गाने मैं आपको सुनाती रहूंगी। मैं आपके साथ गीत हूँ, शो है खास मुलाकात। मेरे साथ शिखा अंतिल जी जुड़ी हुई हैं, सीईओ जिला परिषद। हम बात कर रहे हैं एसआईआर प्रोसेस के बारे में।
1: अब कोई इंसान जो है जिसका एड्रेस चेंज हुआ है या नया नया फरीदाबाद में शिफ्ट हुआ है, तो क्या उनके लिए कुछ अलग प्रोसेस है?
2: हाँ बिल्कुल, उनके लिए शिफ्टिंग का रहेगा, वो भी इसके बाद हमारा जब एनुमरेशन फॉर्म कलेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे सपोज करो एक बूथ में हमारे 1000 वोट थे, 600 फॉर्म हमारे कलेक्ट हो गए, 400 वोटर्स रह गए
1: जी।
2: तो उसमें से जो शिफ्टिंग वाला डेटा है वो हम पब्लिश भी करेंगे। 400 वोटर्स अगर हमें नहीं मिले तो हर बूथ पर, हर पब्लिक प्लेस पे हम उसको पेस्ट करेंगे कि ये थे इस बूथ पे जो किसी कारणवश हमें नहीं मिला है। अगर हमें कंफर्म है शिफ्टेड है तो हम शिफ्टेड कर देते हैं, डेड है तो डेड, और अगर एब्सेंट है समहाउ किसी को ना पता लगे ड्यू टू सर्टेन रीजन या कोई अपना फॉर्म नहीं दे पाए तो उसके लिए भी सफिशियंट टाइम है
1: जी।
2: वो वहां पर जाकर तो अपना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं
1: जी।
2: और जो वाक्य में वही जो शिफ्ट हो ही गए हैं उनके लिए फिर आफ्टर ड्राफ्ट रोल, जब हम फॉर्म 6 की जो बात कर रहे थे कि नई वोट बनवा सकते हैं, उसी टाइम पर फॉर्म 8 में अपना शिफ्ट भी करा सकते हैं।
0: तो वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है खास मुलाकात।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: गाना है फ्रॉम द मूवी भाग मिल्खा भाग, और इसी गाने के साथ स्वागत है शो है खास मुलाकात। मेरे साथ शिखा अंतिल जी जुड़ी हुई हैं, सीईओ जिला परिषद। बातें चल रही हैं एसआईआर प्रोसेस के बारे में।
1: अब कोई नई प्रोसेस जब बनती है तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, काफी सारे मिथ भी होते हैं उनके दिमाग में, डाउट्स होते हैं, तो इस एसआईआर के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को, ये मैं जरूर।
2: देखिए, जब हम 18 साल के होते हैं तो सबसे जो पहली खुशी यही होती है, मुझे याद है जो पहली खुशी थी कि भाई अब मैं वोट कास्ट कर पाऊंगी, बीइंग आई एम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नाउ। तो उसी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अच्छे से निर्वहन करें, इसके लिए हमें अपना एनुमरेशन फॉर्म अपने BLO को जमा कराना जरूरी है। इससे हमारा जो राइट है वो इंटैक्ट रहेगा और हम वोट अपनी कास्ट कर पाएंगे। दूसरा, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे, जो 2002 में सपोज करो जिसके खुद का वोट नहीं है या जिसके पेरेंट्स हैं वो ट्रेस आउट नहीं हुआ, उस केस में डॉक्यूमेंटेशन है। तो आप ये विश्वास कीजिएगा, ये जो गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन की तरफ से है, अपने BLO पे विश्वास कीजिएगा, डॉक्यूमेंट देने में किसी प्रकार की कोई हिचक ना रखे। ये केवल और केवल आपको अपने अधिकार से मिलाने के लिए ये प्रक्रिया है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने जो है एनुमरेशन फॉर्म आप अपनी जिम्मेदारी मानते हुए सबमिट कीजिए। 14 जुलाई इसकी अभी लास्ट तारीख है, तो अपने अपने BLO से जरूर संपर्क करके अपना एनुमरेशन फॉर्म सबमिट कीजिए।
1: जी, वैसे हमने जान ही लिया है मैम से कि SIR प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है और आपको इसका हिस्सा जरूर बनना है। थैंक यू सो मच मैम मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए।
2: थैंक यू सो मच गीत, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई होप आपके प्लेटफॉर्म से हम मैक्सिमम लोगों तक फरीदाबाद को जो है अपना मैसेज पहुंचा पाएंगे।
1: डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स लिसनर्स, आप सुनते देखते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।
2: इतनी सी

0: स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है, तुझे

बचत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हो है?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 एफएम कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

आज मैं एक सवाल के साथ आई हूँ। अगर मैं कहूँ कि घर की सबसे महंगी जगह ड्राइंग रूम नहीं होती, सबसे खास जगह बेडरूम नहीं होती, तो आप कहाँ जाएंगे? वहाँ जहाँ धूप पैर फैलाकर बैठी थी, जहाँ बारिश मिट्टी से बातें करती थी, जहाँ बचपन चिल्ला चिल्ला कर हंसता था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं घर के आंगन के बारे में। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा। और कल्चर कारवा का आज का सफर हमें ले आया है घर के आंगन तक। आज बात करेंगे उस जगह की जो ना सिर्फ घर का सेंटर होती थी बल्कि जिंदगी का रिदम भी होती थी। वो कहा है कि आंगन सिर्फ जगह नहीं होता, ये घर की सांसों का पता होता है। अब सवाल ये है कि आखिर आंगन आया कहाँ से? इस कॉन्सेप्ट पर आज बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हो आंगन कोई डिजाइन ट्रेंड नहीं था, ये एक सोची समझी जरूरत थी। जी बिल्कुल, माना जाता था कि पुराने इंडियन घर कोर्टयार्ड के बिना अधूरे माने जाते थे। वास्तु के हिसाब से आंगन घर का भ्रम स्थान होता था, जहां से हवा, रोशनी और एनर्जी पूरे घर में फैलती थी। ये वही जगह थी जहां सुबह सूरज पहला कदम रखता था और शाम को दिया जलता था। ना एसी था, ना एग्जॉस्ट फैन था, फिर भी घर सांस लेता था। वो कहा है कि आंगन ने हमें सिखाया खुली छत के नीचे भी घर महफूज होता है। आखिर कॉन्सेप्ट तो जाना, आंगन कहाँ से आया, और बात करेंगे आगे भी आंगन और रोज की जिंदगी के बारे में। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर है।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

कभी आपने सोचा है, अगर आंगन बोल पाता तो शायद सबसे ज्यादा कहानियां वही सुनाता। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। आज हम बात कर रहे हैं आंगन के कॉन्सेप्ट के बारे में, आंगन और रोज की जिंदगी। इसी आंगन में माँ धूप में अचार मिलाती है, दादी गीली जमीन पर बैठकर दाल छाटती है, बच्चे गिट्टे कंचे स्टैपू खेलते थे, शादी हो या शौक आंगन सबका गवाह होता था। यहाँ कोई मेहमान अजनबी नहीं लगता था क्योंकि ये जगह ही ऐसी थी, ओपन वार्म एंड इंक्लूसिव। वो कहा है कि आंगन ने हमें सिखाया जिंदगी बंद कमरों में नहीं पलती। फिर धीरे धीरे इसके पीछे का साइंस एक ट्रेडिशन बन गया। अब बात कर ही रहे हैं कॉन्सेप्ट के बारे में तो थोड़ा साइंस भी जान लेते हैं। जो चीज सालों से हमें परंपरा लगती है अक्सर उसके पीछे साइंस खड़ी होती है। ठीक ऐसा ही कुछ आंगन के कॉन्सेप्ट के पीछे भी था। दरअसल आंगन टेम्परेचर को रेगुलेट करता था, गर्मी में ठंडक और सर्दी में सनलाइट देता था। और साथ ही अगर बात की जाए बरसात की तो कहा जाता है कि बारिश का पानी सीधा मिट्टी में जाता, इसलिए ना सीपेज ना गर्मी की मार, इन सारी चीजों से हमें आंगन ही बचाता था। और इतना ही नहीं, तुलसी का पौधा, मिट्टी की सुगंध, खुला आसमान, ये सब मिलकर घर को हेल्दी बनाते थे। वो कहा है कि हमने जिसे रिवायत कहा वो प्रकृति का फॉर्मूला निकला। आंगन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, ये तो पूरी कहानी है। आंगन के पीछे की कहानी जानी, कॉन्सेप्ट जाना। अब बात करेंगे वापस आकर आंगन की एक और खासियत के बारे में। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशा है। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

आंगन और बाती। एक घर को अगर किसी ने संभाला तो अक्सर वो काम आंगन में हुआ। 89.6 FM पर मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है कल्चर कारवा। माना जाता था कि आंगन कोई मामूली चीज नहीं था, आंगन महिलाओं की दुनिया का सेंटर था। यहीं बैठकर वो काम भी करती थी और सांस भी लेती थी। यहीं से रिश्तों की बातें निकलती थी, यहीं से परिवार की प्लानिंग होती थी। आंगन उनका ऑफिस भी था और उनका सेफ स्पेस भी। वो कहा है कि आंगन ने औरत को बंद नहीं किया, उसे खुला रहने का मौका दिया। आखिर इतना खास होने के बाद भी आज सवाल ये उठता है कि आंगन कहाँ गया। फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि घर बड़े हो गए पर जगह छोटी हो गई। धीरे धीरे आंगन कहीं खोसा गया। फ्लैट्स आए, बैल्कनीज रह गई, पर बैल्कनी में वो बात नहीं जो आंगन में थी। आज हम धूप भी टाइम टेबल से लेते हैं और हवा भी फिल्टर करके। शायद इसलिए हम कनेक्टेड रहकर भी थोड़े अलग अलग लगते हैं। वो कहा है कि कंक्रीट के घर बने पर मिट्टी वाली फीलिंग कहीं छूट सी गई। कल्चर कारवा का ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग, या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आज अगर आंगन वापस आ जाए तो शायद घर थोड़ा और घर लगने लगे, और अगर जगह ना हो तो कम से कम यादें जिंदा रखिए। कल्चर गारवा का आज का सफर हमें एक ऐसी कहानी के पास ले आया, एक ऐसे कॉन्सेप्ट तक ले आया, जहां हमने ये जाना कि कितना जरूरी होता है एक घर का घर कहलाना, जहां सिर्फ लोग मायने नहीं रखते, जहां मायने रखता है आंगन भी। जिस घर में धूप मुस्कुराए, समझ लो वहां कभी आंगन था। कल्चर कारवा के आज के सफर में हमने बात की आंगन के कॉन्सेप्ट के बारे में। जानी आज इससे जुड़ी हुई कहानी, जाना इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और जाना इसके पीछे की साइंस। आंगन घर की सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि घर का एक हिस्सा रहा, जिसने एक मकान को घर बनाया। फिलहाल अब मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। कल्चर कारवा के इस सफर में कल फिर से आऊंगी एक नई कहानी के साथ, एक नई याद के साथ, एक नए जायके के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। दिस इज योर आरजे अंजलि साइनिंग ऑफ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

रात हो, थोड़ा सा अंधेरा हो और बैकग्राउंड में कोई हॉरर फिल्म का गाना चला।

और तब अचानक याद आई कि जिस फिल्म का ये गाना है उसके पीछे भी एक कहानी थी जो स्क्रीन पर कभी दिखाई ही नहीं गई। आज का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम सिर्फ गाने नहीं सुनेंगे बल्कि उन फिल्मों के पीछे के वो हिडन फैक्ट्स, वो रियल इंसिडेंट्स और वो मोमेंट्स जानेंगे जो इन्हें और भी ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाले बना देते हैं। म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप, मैं हूं पलक आप सभी के साथ। शुरू करते हैं एक ऐसी फिल्म से जिसका नाम सुनते ही एक अलग सी अनईजी फीलिंग आ जाती है और वो फिल्म है 1920। इस फिल्म का जो माहौल है ना वो इतना रियल लगता है कि लगता ही नहीं ये सिर्फ एक सेट है, और एक्चुअली ये सेट था भी नहीं, यूके का एलिटन कैसल था जिसे लोग हॉन्टेड मानते हैं। कहते हैं वहां एक कारपेंटर का मर्डर हुआ था और तब से उस जगह पर अजीब सी प्रेजेंस फील होती है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, शूट के दौरान विक्रम भट्ट और उनकी टीम ने भी कुछ ऐसे मोमेंट्स फील किए जो एक्सप्लेन करना मुश्किल था, जैसे एक पेंटिंग की फोटो का बार बार ब्लर हो जाना। और अब जब पेंटिंग की बात हो ही रही है तो याद आता है फिल्म का वो इंटेंस करेक्टर गायत्री जिसके अराउंड पूरी कहानी घूमती है। उसका जो पोर्ट्रेट फिल्म में दिखाया गया था उसे बनाने में लगभग 7 घंटे लगे, सिर्फ इसलिए ताकि उस करेक्टर का वो हॉन्टिंग फील स्क्रीन पर और स्ट्रॉन्ग लगे। वैसे इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि रजनीश दुग्गल और अदा शर्मा ने इस फिल्म से डेब्यूट किया, लेकिन रजनीश दुग्गल की आवाज एक्चुअली किसी और ने डब की थी और वो थे विराज अधव। और अगर आपको स्टोरी थोड़ी फैमिलियर लगी हो तो वो इसलिए क्योंकि इसका कंसेप्ट हॉलीवुड फिल्म द एग्जॉर्सिस्ट से इंस्पायर्ड था। और इसी डार्क और इंटेंस कहानी के बीच फिल्म में एक गाना आता है और वो गाना था बिछुआ, जिसमें राखी सावंत का अपीयरेंस भी था, एक तरह से फिल्म के हैवी मूड के बीच एक कंट्रास्ट क्रिएट करता हुआ। तो जब 1920 की इतनी बात हो ही रही है, चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का गाना बिछुआ। और गाने के बाद बात करेंगे एक ऐसे फिल्म की जहां डर भूत से कम दिमाग के खेल से ज्यादा लगा था। कौन सी थी ये मूवी बताऊंगी आपको कुछ ही देर में। स्टे ट्यून्ड।

0: कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं।
1: लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, पर म्यूजिक हमेशा साथ रहता है। म्यूजिकल डायरीज याद दिलाता है, एक सही गाना मूड ही नहीं बल्कि माइंडसेट भी चेंज कर सकता है। थक गए हो, एक सूदिंग मेलोडी ऑन कीजिए। कंफ्यूज्ड हो, लिरिक्स ध्यान से सुनिए। कभी कभी जवाब किसी इंसान में नहीं, एक सिंपल सी धुन में मिल जाते हैं। इसलिए म्यूजिक को सिर्फ सुनिए मत बल्कि उसे महसूस कीजिए।
2: जरा जरा बहकता है, महकता है।
1: और सुनते रहिए म्यूजिकल डायरीज विद आरजे पलक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
3: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
4: सुन भाई सुरेंद्र।
5: हाँ भाई तुरेंद्र।
4: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे ATM हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
5: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं पलक आप सभी के साथ, और अब जैसा कि मैंने हिंट दिया था, चलते हैं एक ऐसी फिल्म की तरफ जहां पूरी मूवी में आपको लगता है कि भूत है, लेकिन एंड में पता चलता है कि ये कहानी कुछ और ही थी। और इस फिल्म का नाम है भूल भुलैया।

इस फिल्म का कंसेप्ट ही इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये असल में मलयालम फिल्म का रीमेक थी और डायरेक्टर प्रियदर्शन उस ओरिजिनल फिल्म का पार्ट रह चुके थे, तो उन्हें एग्जैक्टली पता था कि सस्पेंस को कैसे बिल्ड करना है। वैसे इस फिल्म का मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर है छोटा पंडित, मतलब जब वो बोलता है ना बेटी पुष्पा, वो भाई आइकॉनिक था। खैर इसी के साथ मंजुलिका के कैरेक्टर की बात आती है ना, तो ऑनेस्टली विद्या बालन ने उसे एक अलग ही लेवल दे दिया। और जब वो बेड उठाने वाला सीन आता है, मतलब थोड़ा तो दिल ऐसे धक धक धक होने लगता है। और ये मंजुलिका के कैरेक्टर के पीछे की अगर मैं बात बताऊं तो वो ये है कि इनिशियली ये रोल ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ और रानी मुखर्जी को ऑफर हुआ था। अब वो महल जहाँ इतनी सारी चीजें होती हैं फिल्म में, वो एक्चुअली राजस्थान का चोमू पैलेस है। और इसी फिल्म का टाइटल ट्रैक आपको याद हो, यानी कि तेरी आंखें भूल भुलैया, वो पहले सिर्फ प्रमोशनल गाना था लेकिन इतना हिट हुआ कि फिल्म में ऐड करना पड़ा और इसको बना दिया गया टाइटल ट्रैक। तो जब भूल भुलैया की इतनी बात हो ही गई है, चलिए सुनते हैं इसका आइकॉनिक टाइटल ट्रैक और गाने के बाद बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जो एक रियल लेजेंड से इंस्पायर्ड थी। कौन था वो लेजेंड बताऊंगी आपको कुछ ही देर में, स्टे ट्यून्ड।

0: घर का छोटा हूँ इसलिए निकम्मा हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: मैं घर का छोटा हूँ जिसको सब निकम्मा बोलते हैं। मम्मी बोलती है काम कर लिया कर, रोज सुबह पानी की बोतल फ्रिज में रख देता हूँ, रिमोट मैं ढूंढता हूँ, पापा का फोन मैं चार्ज करता हूँ, जब सब सोते हैं तब लाइट बंद मैं करता हूँ, जब घर में कुछ गलत होता है सब बोलते हैं इसी ने करा होगा, मेरी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता, मार्केट से सामान मैं ही लेकर आता हूँ, फिर भी सब मुझे ही कहते हैं।
2: सही कह रहा है तुरेंद्र, कितना भी कर ले कार का छोटा बेटा रही का तो निकम्मा ही।
3: हम आप तक पहुंचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
1: अरे आगे भी बोलना।
0: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं पलक आप सभी के साथ, और अब बात करते हैं उस फिल्म की जिसे देखकर लोग डरे भी लेकिन हंसे भी बहुत, और वो फिल्म थी स्त्री।
1: हाथ पकड़ बोली बिक्की प्लीज, बिक्की प्लीज।
0: इस फिल्म की कहानी किसी इमेजिनेशन से नहीं बल्कि एक रियल अर्बन लेजेंड नालेबा से इंस्पायर्ड थी। मतलब लोग सच में अपने घर के बाहर लिखते थे, ओ स्त्री कल आना, ताकि वो अंदर ना आए। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि फिल्म का नाम भी पहले यही था, लेकिन बाद में इसे शॉर्ट करके सिर्फ स्त्री कर दिया गया। और राजकुमार राव, व्हाट अ लेजेंडरी एक्टर ही इज, उन्होंने अपने रोल को इतना रियल बनाने के लिए 20 दिन तक टेलरिंग सीखी। मतलब इतना हार्ड वर्क उन्होंने करा इस फिल्म के लिए। फिल्म मध्य प्रदेश के चंदेरी में शूट की गई थी, जहां का एनवायरनमेंट भी फिल्म को और रियल फील देता है। शूट के दौरान क्रू ने कुछ अजीब एक्सपीरियंसेस भी फील किए थे, लेकिन उन्होंने ये चीज मूवी के बाद इंटरव्यू में बताई थी। और हाँ, कमरिया गाना, मतलब वो एनर्जी, वो वाइब बिल्कुल अपोजिट है फिल्म के हॉरर टोन से, और शायद इसी वजह से इतना हिट भी हुआ था ये गाना। ऊपर से नौरा फतेही ने जो ठुमके लगाए थे इस गाने पे, तो ये गाना तो हिट होना बनता ही था। तो जब स्त्री की इतनी बात हो ही रही है, चलिए सुनते हैं कमरिया गाना, और इसके बाद बात करेंगे ऐसी फिल्म की जहाँ रियल लाइफ से रियल लाइफ तक कहानी पहुँच गई। कौन सी थी ये कहानी?

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा सी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चाहिए?
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियरा, किसी की बातें ध्यान से सुनना उसकी सबसे आसान हेल्प है, तो आज से ही सुनो पर जज मत करो।
4: चाहता हूँ कभी ना बीते चमकीले दिन।
5: यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
6: कामयाबी हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी।

0: म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सुन रहे हैं। मैं हूं पलक आप सभी के साथ और अब बात करते हैं मूवी शापित की।
1: मैंने तुम्हारा हाथ कभी न छोड़ने के लिए थामा है काया। दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो तकदीर को बदलना होगा, उस श्राप को हारना होगा, नियति को हमारा साथ देना ही होगा।
0: वैसे ये फिल्म अपनी स्टोरी से ज्यादा एक और रीजन से याद रखी जाती है, जो कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था, और वो है इसकी रियल लाइफ लव स्टोरी। आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल दोनों इस फिल्म में साथ काम कर रहे थे और वहीं से इनकी बॉन्डिंग स्टार्ट हुई और 10 साल बाद यानी कि 2020 में दोनों ने शादी कर ली। वैसे सही कहते हैं, डेस्टिनी आपको अपने पार्टनर से कहीं भी मिला सकती है और इन दोनों कपल्स ने ये प्रूव कर दिया। और इसी फिल्म से आदित्य नारायण ने एडल्ट एक्टर के रूप में डेब्यू भी किया। साथ ही साथ मुरली शर्मा ने पहली बार फादर का रोल प्ले किया था इस मूवी में और राहुल देव इस फिल्म के बाद काफी टाइम तक हिंदी सिनेमा से दूर रहे क्योंकि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री से थोड़े दिनों का ब्रेक चाहिए था। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस फिल्म में पुराना मंदिर और 1920 का इन्फ्लुएंस भी फील होता है। तो जब शापित की इतनी बात हो ही रही है, चलिए सुनते हैं इसका गाना हयाती। अच्छा, बॉलीवुड की हॉरर फिल्म में सिर्फ कहानियां नहीं होती, उनके पीछे भी एक कहानी होती है। और अब इसी गाने के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। मैं हूँ पलक और आप सुन रहे थे म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और अगले वीकेंड फिर मिलेंगे एक नए थीम, एक नए म्यूजिकल सफर के साथ। सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: अरे मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
2: और आगे
0: याद रखिए, हेलमेट पहनने वालों का कभी चलान नहीं कटता।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
5: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए U150,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। OTP मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
6: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
7: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।
8: हम आप तक पहुंचाते हैं हर दिल की कहानी क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: जॉनी जॉनी,
1: यस पापा।
0: बाइक चलाना है?
1: यस पापा।
0: हेलमेट पहनना है?
1: ओके पापा।
0: हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे?
1: नो पापा।
0: यू आर वेरी गुड बच्चा। हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बनाए दूरी, आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।
4: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
5: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
4: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
5: शायरी पे ध्यान लगाओ
4: इरशाद।
5: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
4: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
5: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है, फिर भी अपना रुतबा है यारों।
4: ये बात तो सही है।
5: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
4: कैसे कैसे?
5: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
4: यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो, मुंह उठा के आगे बढ़ना था, अब मैं चली तुम बोलते रहो।
5: सुनो सुनो, हेलो, टिकट कटवा लेना।
6: जो हर तूफान हर बारिश को चीरते हुए पहुंचती है आपके पास, वो है रेडियो महारानी 89.6 FM की आवाज़। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: जॉनी जॉनी
1: यस पापा
0: बाइक चलाना है यस पापा हेलमेट पहनना है ओके पापा हाई स्पीड में गाड़ी चलाओगे नो पापा यू आर वेरी गुड बच्चा हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से बनाए दूरी आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट है बेहद जरूरी
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें।
1: कामयाब हो या हो टूटे दिलों की जिंदगानी, हर कदम पर आपके साथ है रेडियो महारानी।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बातें हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में कह नहीं पाते वो किसी नज्म में निकल जाती हैं या किसी कविता में सांस लेने लगती हैं. और शायद इसीलिए हर पोइट सिर्फ लिखता नहीं है बल्कि अपना एक हिस्सा छोड़ जाता है अल्फाजों में. तो आज इन्हीं अल्फाजों पर बात होगी. आज दिल शायराना में मेरे साथ अखिलेश पुरोहित जी मौजूद हैं जो कि एक बहुत ही बढ़िया पोइट हैं. तो आज उनसे बहुत सारी बातें करेंगे. बहुत बहुत स्वागत है आपका.
5: जी मैम, बहुत बहुत आभार. रेडियो महारानी की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपका आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे मौका दिया आपने.
4: जी, तो मैं हर किसी शायर से या पोइट से यही सवाल सबसे पहले पूछती हूँ कि आपने क्यों चुना पोइट्री को? पोइट्री को आपने चुना या पोइट्री ने आपको चुना?
5: एग्जैक्टली मैं इसी सवाल का आपके इस सवाल में ही जवाब रहता है क्योंकि कुछ चीजें नियति निर्धारित करती हैं और जो नियति निर्धारित कर लेती है उसके बाद हम नहीं जा पाते. तो मेरा ये मानना है कि शब्दों ने, कविता ने या साहित्य ने मुझे चुना है, ना कि मैंने उसे चुना. और कोई भी शायर या कवि कोई भी हो वो इतना स्वतंत्र नहीं है कि इस प्रोफेशन को खुद चुने.
4: जी,
5: तो मुझे लगता है कि ये तो नियति का निर्धारण है.
4: जी, तो जब हम किसी भी फील्ड में आ रहे होते हैं या कोई भी चीज़ हम चूज़ करते हैं अपने लिए, तो हम कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं कि हमने उन्हें पढ़ा था या हमने उन्हें बहुत सुना था. तो कौन ऐसे शायर या पोइट रहे जिनको आपने बहुत सुना है?
5: जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है क्योंकि मैं हिंदी पृष्ठभूमि से हूँ और मेरी स्टार्टिंग की जो जर्नी है वो हिंदी से जुड़ी रही. मैं संस्कृत में भी पढ़ा. तो 2009 और 10 के आसपास जब मैंने 9th में एडमिशन लिया तब आदरणीय कुमार साहब को बहुत सुना और उसके साथ साथ जब साहित्य में हमारे जो दिनकर साहब हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी, तो उनको पढ़ते पढ़ते. और दूसरी बात जो मूल है, मुझे लगता है कि जो मैं रामचरितमानस को पढ़ता था,
4: क्या बात,
5: और उसकी जो चौपाइयाँ हैं उनको अलग अलग तरीके से गाने की कोशिश करता था. तो मुझे लगता है वो रिदम या ईश्वर की कृपा का हो या माँ शारदे का आशीर्वाद, तो कुछ ना कुछ वहाँ से जुड़ी चीजें. बाकी कुमार साहब रहे, कुंवर बेचन साहब रहे, तो इन सब चीजों को बहुत सुना है.
4: जी जी,

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: एक और सवाल है मेरा, हर पोइट का अपना एक मूड होता है लिखने का, तो सवाल ये है कि जो कविता होती है वो किस चीज से पैदा होती है, ऑब्जर्वेशन से या अपने खुद के इमोशन से?
1: जी बहुत अच्छा सवाल, इसलिए है कि कवि और शायर वो नहीं है, सबसे बड़ी जो उपलब्धि उसकी ये है कि जो वो खुद महसूस कर रहा है वो तो वो बयां करेगा ही, सबसे बड़ी खासियत उसकी ये है कि जब वो सामने वाले के दर्द को बयां करे,
0: जी
1: मतलब उसकी जगह पे खुद के दिल को रखकर देखेगा तो जो एहसास उत्पन्न होते हैं उसको तालमेल मिलता है तो वो कविता का रूप ले लेती है। मैं शॉर्ट में कविता की डेफिनेशन भी आपको बताता
0: चलूं। बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि कविता का मतलब कल्पना और वी का मतलब विचार और ता का मतलब तालमेल, कल्पना में आए हुए विचारों का जब तालमेल होता है तो वो कविता का रूप ले लेती
0: है। क्या बात है, मुझे इतना बढ़िया कविता की डेफिनेशन किसी ने नहीं दी है अब तक, खैर बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है,
1: बहुत आभार
0: जी। जी एक और सवाल है, हम बात करेंगे हमारे हिंदी लिटरेचर के बहुत ही फेमस कवि प्रेमचंद जी के बारे में, जिनकी कविताएं हमारे समाज को बहुत पहले से ही आईना दिखाने का काम कर रही थी और कर रही हैं इनफैक्ट। तो आज के वक्त में कितने परसेंट ऐसे कवि या शायर रहे हैं जो वाकई में समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं?
1: देखिए इस चीज का मूल्यांकन और आकलन करने की मेरी क्षमता तो नहीं है, लेकिन हिंदी का साहित्य का एक छोटा सा विद्यार्थी होने के नाते इस तरह की दृष्टि में रखता हूँ। प्रेमचंद जी ने और जयशंकर प्रसाद जी ने या उस समय के जितने भी महान कवि हुए, उन्होंने जो कुछ भी भापा समाज से और जो कुछ उन्होंने महसूस किया, आप प्रेमचंद जी का जीवन अगर देखेंगी तो उन्होंने ज्यादातर साहित्य अपने ही जीवन से प्रेरित होकर लिखा है, क्योंकि जो उन्होंने सहा है वो कहा है और जो समाज में देखा है वो कहा है। दूसरी बात क्या आ जाती है, जब साहित्य राजनीतिक हो जाता है तो वो साहित्य खत्म हो जाता है, क्योंकि साहित्य किसी की पैरवी और गुलामी नहीं कर सकता, न कविता कर सकती है, तारीफ कर सकती है, गुलामी नहीं कर सकती। तारीफ कैसे कर सकती है कि आप ये कहें कि चांद सा जब कहा उनको तो वो कहने लगे, चांद सा जब कहा उनको तो वो कहने लगे, चांद कहिए ना, चांद सा क्या है,
0: क्या बात है।
1: तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी आज के दौर, जो आपका क्वेश्चन है मतलब कि आज कितने प्रतिशत शायर या कवि ऐसे हैं जो समाज, हर समय अपने आप एक चुनौती लेकर आता है और वो साहित्य में भी बदलाव बहुत जरूरी है। मैं ये कहूं कि 90% साहित्य खत्म हो चुका है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता इसलिए देनी पड़ेगी जो आने वाली पीढ़ी है, जो अभी इस समय चल रही है, उसके पास ऑप्शंस बहुत हैं। अगर उन सारे ऑप्शंस के बावजूद भी अगर वो साहित्य में रुक ले रहे हैं तो थोड़ी सी उनके लिए मुझे लगता है कि एक विंडो इस तरह की खुली रहनी चाहिए कि उसमें ज्यादा बाउंडेशन इतनी नहीं रहे कि आप मीटर में नहीं हैं या आप कविता के दायरे में नहीं हैं। वो जो उनके भाव हैं वो उनको शब्द देने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका हमें आदर करना चाहिए।
0: तो मतलब आप इस बात से बिल्कुल अग्री हैं कि जरूरी नहीं है कि कविता को एक मीटर में ही लिखा जाना चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट कविता।
1: देखिए कविता और कवि हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, जो भी महत्वाकांक्षी लोग हैं वो एक स्वतंत्रता में चाहते हैं अपने आप को, चार दीवारी में रहेंगे लेकिन खुद में स्वतंत्र रहेंगे, तो वो बहुत जरूरी है, तो कला उससे जिंदी रहती है।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: एक और सवाल है, स्टेज पोइट्री का एक अलग ही प्रेशर होता है और आजकल तो ओपन माइक्स में लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं, तो मेरा सवाल यही है कि जब आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं तो आप ये कैसे महसूस करते हैं कि कहीं उनकी वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अफेक्ट तो नहीं हो रही, कि सिर्फ आप उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में वो पोइट्री तो नहीं सुना रहे कि जो सिर्फ उनको ही समझ आए, तो ऐसा होता है आपके साथ?
1: होता है और अक्सर होता ही है,
0: होता ही है।
1: जो कवि सम्मेलन और मुशायरे जो संयोजक और आयोजक कराते हैं जिसमें ऑडियंस भी आती है, तो वहाँ हमको मूल कविता अगर हम साहित्य पूरा सुनाने लगेंगे तो लोग इतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे।
0: ओके।
1: क्योंकि लोग खुद एक तो इतनी जल्दबाजी में है, दूसरे उनके पास ऑप्शन भी बहुत है। अगर इस इतनी व्यस्तता के बाद भी अगर वो हमारे सामने बैठे हैं कुछ कविता के सुनने के लिए, तो हमारा भी दायित्व ये बनता है कि सिर्फ उनको सारी चीजें जो है ज्ञान की ना बताई जाए, कुछ उनके मन के हिसाब से मूड के हिसाब से कहकर, चार शेर आप उनके मूड के हिसाब से कहिए, दो शेर जो आपको अपनी बात कहनी है जो समाज के लिए प्रासंगिक है, जो समय के लिए प्रासंगिक है, वो आप कह सकते हैं। तो मेरा कहना है कि थोड़ा सा जैसा सैंडविच होती है, तो उसमें दोनों ब्रेड के बीच में जो आप वेजिटेबल डाल सकते हैं, तो इस तरीके का काम भी कर सकते हैं, या माला की तरह परो सकते हैं, सारे व्हाइट मोती जो सफेद मोतियों के बीच में दो चार सुनहरे मोती रख दें, तो उससे क्या है कि माला भी थोड़ा सा और अलग अंदाज में निखर के आएगी और मोतियों की भी सही स्थिति आपको वहां पर मिल जाएगी।
0: जी।

0: आप बहुत कुछ लिखते होंगे, बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस भी होते होंगे जिसके थ्रू आप लिखते होंगे, और आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज या कौन सी पोइट्री आपको पब्लिक तक पहुंचानी है और कौन सी अपने पास बचा के रखनी है, ये चीज कैसे डिसाइड करते हैं?
1: खुद तक बचाने की तो कोशिश ये है कि मैं, मेरी हर आह को वह मिलती है जहाँ मैं खो जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ। तो ये चीजें हैं कि खुद तक अगर समेट कर रखेंगे तो फिर हम आजाद नहीं रह पाएंगे। और लोगों तक जुड़ना ये है कि हमारे ही शब्दों में अगर उनके गम मिल रहे हैं तो ये समझिए कि लोग हमारे साथ चल रहे हैं।
0: अच्छा, इस बात में कितना अग्री करते हैं कि जब कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा कवि तभी बनता है

0: अच्छा शायर तभी बनता है जब उसका दिल टूटता है। तो जब लाइफ में बहुत सारे बहुत ज्यादा गम मिलता है तब आप बहुत बहुत अच्छा या डेप्थ में कुछ कह पाते हैं, इस बात से कितना एग्री करते हैं आप?
1: हाँ, इससे तो आपकी से 200% एग्री करना भी पड़ेगा क्योंकि कोई जो शायर और कवि इस धारा से नहीं भी है,
0: हाँ,
1: वो जब दिल टूटता है तो शायर उनके अंदर से निकल के आता है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि कविता और शायरी क्या है कि अंदर की वेदना को जब शब्द मिलते हैं, आदमी गद्य में अगर कहना चाहे सीधे सीधे जी मुझे दुख हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, वहां बात नहीं जमती, लेकिन जब उसको तालमेल मिल जाता है विचारों को तो कविता एक अपना सृजन कर लेती है अपने आप में। तो हर कवि, हर व्यक्ति अपने आप में कवि और शायर है, समय समय पर उसकी वेदनाएं उछाल कर अपने लफ्जों में आ जाती हैं, तो वो शायर कवि बनता है। दूसरी बात जो आपने कही कि जब भी कोई प्रेम है, हमारा जो दिल धड़कता है उसी से सारी वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, या तो गम की हुई या प्रसन्नता की हुई, तो प्रसन्नता के लिए उतना गहराई तक आदमी नहीं जा पाता जितना गम में चला जाता है। तो गम से मतलब ये समुद्र मंथन है जिससे अमृत भी निकल आता है,
0: हाँ,
1: और भी कई सारे रत्न निकल आते हैं
0: जी।
1: तो मंथन बहुत जरूरी है।
0: एक और सवाल है, एक वक्त था जब लोग शायरी को सिर्फ सुनते नहीं थे बल्कि महसूस भी करते थे, लेकिन अब जो है सिर्फ लोग वायरल होने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इनफैक्ट थोड़ा बहुत उन्होंने कहीं सुना तो लिखने लग जाते हैं, तो आप इस चीज से क्या कहना चाहेंगे इस चीज के बारे में कि आजकल जो लोग हैं वो इतना ज्यादा सिर्फ वायरल होने पर क्यों ध्यान दे रहे हैं जबकि वो अच्छा लिख भी नहीं रहे?
1: बिल्कुल सही बात कही आपने, वायरल होने की दौड़ में हम खुद भी खत्म होते जा रहे हैं। प्रोफेशन कोई भी हो, सिर्फ वायरल होकर और किसके कितने फॉलोवर हैं हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं बजाय उसकी कविता या बजाय उसके काम को जाने हुए। तो ये जो दौर तकनीकी का चल रहा है इसमें हर आदमी इतना स्पीड में भाग रहा है कि उसको इतना समय नहीं दे पा रहा है कि 30 सेकंड से ज्यादा मैं किसी शायर या कवि को या किसी व्यक्ति को सुन सकूं। दूसरा, वायरल होने की जो होड़ है या वायरल होने की जो ग्लोरीफाई चीजें कर दी गई हैं उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पर खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जो मूल साहित्य है वो समय लेगा और समय जो पकने में लेता है वो फिर बिकने में समय लेता है, तो चीजें थोड़ी सी मैटर।
0: अच्छा, साहित्य की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है?
1: खूबसूरती ये है कि आप हर किसी से आप मित्रता कर सकते हैं बजाय किसके कि आप अपने शब्दों से उसका मन जीत सकते हैं, उसका मन हल्का कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप किसी के मन को हल्का कर सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा तो ये सबसे बड़ी पूजा है, आपको कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है
0: जी। और इस चीज में आप कितना अग्री करते हैं कि अगर एक पोइट खुद लिखता है और वो बहुत अच्छा खुद रिसाइट करना भी जानता है तो और खूबसूरती बढ़ जाती है कविता की?
1: हाँ, अगर हम 50 शेर ऐसे लिखते हैं तो शायर को खुद अंदाजा हो जाता है कि 2-3 शेर मैंने ऐसे लिखे हैं जो उस गहराई तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि शायर या कवि निरंतर हम साहित्य को पढ़ते भी रहते हैं, आज का जो साहित्य है उसको भी पढ़ रहे हैं, जो पुराना साहित्य है उसको भी पढ़ रहे हैं, तो जब हम दोनों के बीच में होते हैं तो खुद का
0: क्या डिफरेंस महसूस करते हैं दोनों साहित्य?
1: डिफरेंस थोड़ा सा गहराई का रहता है और थोड़ी सी जो आज के समय में जो शायरी आ रही है उसमें एक तुकांत बनाने पे ज्यादा फोकस है कि राइमिंग बन जाए मेरा काम हो जाए। तो सिर्फ राइमिंग इसका एक खूबसूरत मतलब भाग हो सकता है, लेकिन जो उसका मूल है, जो उसकी जो गहराई है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो बरकरार रहेगी तभी शेर लंबा चलेगा, तभी आप जीवंत रहेंगे
0: जी।

0: एक और सवाल है, अच्छा क्या ज्यादा पसंद है अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं तो, ओपन माइक या काव्य गोष्ठी की तालियां, या ऐसे कमरे में बैठकर अकेले कुछ गहरी लाइंस लिखना खुद के लिए या किसी के भी लिए, क्या ज्यादा पसंद होगा?
1: देखो पसंद की तो बात ऐसी, एक तो आपने ओपन माइक या कवि सम्मेलन में डिसाइड कराइए और या फिर आपने एक कमरा दे दिया
0: हाँ।
1: तो कमरा तो जैसी बात है कमरे से ही सारी चीजें निकलती है, जो ओपन माइक तक जाएंगी या कवि सम्मेलन तक जाएंगी, तो सबसे पहले तो उस कमरे को तवज्जो देंगे। उसके बाद बात रही कवि सम्मेलन और मुशायरे की, मेन क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, तो ओपन माइक में चीजें मैं ये कह सकता हूँ कि शुरुआती दौर में जो नए कवि हैं कलमकार हैं वो खुद का मूल्यांकन करने के लिए खुद को तराशने के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं, और वहां भी सबसे बड़ी बात क्या होती है, वहां ऑडियंस नहीं होती, वहां सारे लोग शायर या कवि होते हैं, तो आप उनके बीच में पढ़कर और उनके कलामों को सुनकर ये पता लगा सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं।
0: अच्छा क्या डिफरेंस है, जैसे अगर मैं बात करूं मुशायरे की, जहां लोग आते हैं वो जानते नहीं है शायद उस फील्ड के बारे में या स्पेसिफिक लिटरेचर के बारे में, जस्ट वो आपको सुनते हैं और फील करके उनको अच्छा लगता है शायद, और जैसे हम ओपन माइक की बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि वहां पर सब लोग जानते हैं, वो सब पोएट्री होते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस लगता है?
1: डिफरेंस एक तो ऑडियंस का हो गया, दूसरा जैसे आपने कहा पॉपुलैरिटी और फेम, तो इसमें क्या होता है जब चौराहे सर या गली मोहल्ले के लोग हमें सुनने आते हैं तो वो हमें नहीं सुन रहे हैं, वो भाषा को सुनने आ रहे हैं, भाषा के सृजन को सुनना आ रहे हैं, साहित्य को सुनने आ रहे हैं, तो साहित्य के प्रेमियों की हमेशा हम आदर करते हैं क्योंकि हम साहित्य से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे नाम पर आ रहे हैं वो। हमें इतनी खासियत नहीं है कि हम इतने लोगों को इकट्ठा कर लें आप। और दूसरा जो ओपन माइक है, ओपन माइक में चीजें क्या है, थोड़ा सा रिकॉर्ड, क्योंकि तकनीकी दौर है तो वीडियो का भी जमाना है, ऑडियो का भी जमाना है, और उसको शूटिंग करके अपनी अपनी पोर्टल्स पर डालने के लिए, तो वो भी एक जरिया हो गया अपने शेर को लोगों तक डायरेक्ट पहुंचाने का, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग मोबाइल पर अपना समय बिताते हैं, तो डिफरेंस मेन यही है कि वहां पर जो लोग आते हैं वो अपना पूरा समय देते हैं साहित्य के लिए, साहित्य के प्रेमी हैं, और हर तरह से उनको एक समय निकाल कर आते हैं, तो उनकी हमेशा जो है कद्र रहती है, साहित्य ऐसे लोगों से ही जिंदा है
0: जी।
1: ओपन माइक ही सारे हो जाएंगे तो साहित्य नहीं रह पाएगा
0: जी।
1: साहित्य के लिए काव्य गोष्ठियां बहुत जरूरी है
0: जी।
1: ओपन माइक तो ये कह सकते हैं कि एक वार्म अप है, उसके बाद आप मैदान में जा सकते हैं।
0: क्या बात है।

0: अब इम्पॉर्टेंट टास्क पर आते हैं, बिकॉज इतनी सारी बातें आपसे हो गई हैं और हमारे जो लिसनर्स हैं जो अभी हमें सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपने अभी कितनी खूबसूरत रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं, तो कुछ ऐसी रचनाएं जो आज आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहें तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा भी और इतना लंबा सफर हमने जो है वार्तालाप में पूरा किया है, तो मैं शेर पढ़ता हूँ कि कितना मुश्किल है तजुर्बे की आबरू रखना। मैंने आपके सारे सवाल के जवाब दिए लेकिन फिर भी बहुत कुछ रह गया जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ, तो शेर आप पकड़ने की कोशिश करें कि कितना मुश्किल है तजुर्बे की आबरू रखना, जितना सहा है उसको हुबहू रखना।
0: क्या बात है,
1: जितना सहा है उसको खूब हुबहू रखना। और शेर बतौर खास कि किरदार चंदन सा रखना भी तो खेल नहीं, किरदार चंदन सा रखना भी तो खेल नहीं, मुश्किल है अजगर लपेट कर खुशबू रखना। तो ये अजगर मेरा मानना है कि तकनीकी दौर के वो अनछुए कारनामे हैं जिनमें व्यक्ति विजी है, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनलिटी जो मूल है वो चंदन की तरह अपनी खुशबू बिखेरता ही रहेगा, साहित्य बिखेरता रहेगा।
0: जी क्या बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जाते हुए कोई और एक गजल जो हम जरूर सुनेंगे आपकी?
1: जी मैं एक गजल के दो शेर और पढ़ता हूँ कि आजकल बेमोल बिक रहा हूँ मैं, आजकल बेमोल बिक रहा हूँ मैं, हाँ तेरी दास्तान इश्क लिख रहा हूँ, हाँ तेरी दास्तान इश्क लिख रहा हूँ मैं। और बड़ा शेर इसमें ये है, जिंदगी का फलसफा बांधने की कोशिश की है, हाँ तेरी दास्तान इश्क लिख रहा हूँ मैं, ख्वाहिशें जरूरतों से कब आजाद होंगी। जिंदगी इसी बीच में है, ख्वाहिशें जरूरतों से कब आजाद होंगी, जिंदगी तेरे बोझ से थक रहा हूँ मैं। पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन हम ये तय नहीं कर पाते, हमारे जो कदम हैं वो चाहते हैं पर चाहते हैं कि ख्वाहिशों के आसमान में उड़ें, लेकिन जरूरतें कदम की बेड़ी बन जाती है।
0: जी
1: तो इसके बीच का सफर जिंदगी रहता है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपकी रचना है। अभी मुझे लगता है कुछ और कहना भी चाहते
1: हैं। तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही अच्छा मुक्तक मैंने ताजा लिखा है, बिल्कुल आपके ही लिख कर ले गया था।
0: बिल्कुल,
1: कि मन्नतों के ये धागे तुम्हारे लिए, रात भर हम थे जागे तुम्हारे लिए, रुखसती से तो तुम चढ़ गए सीढ़ियां। अब शेर देखिए कैसे पलटता है, रुखसती से तो तुम चढ़ गए सीढ़ियां, हम थे कितने अभागे तुम्हारे लिए।
0: क्या बात है,
1: मतलब इसमें ये कोशिश की है कि मतलब मेरे हट जाने से उसको तरक्की मिली है, मैं इतना अभागा था।
0: जी
1: तो जो क्या दौर की आजकल जो केस आ रहे हैं उसके उसमें भी ये प्रासंगिक बैठता है, मुझे ही किनारा करने के बाद तुझे तरक्की मिलेगी।
0: क्या बात है, बहुत
1: मेरी सारी कोशिश रही कि तुझे तरक्की कराऊं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जाते हुए आपका एक मैसेज जो हम अपने लिसनर्स तक जरूर पहुंचाएंगे और उन यंग पोइट्स तक भी जो लिखने की फील्ड में आ रहे हैं लेकिन उनको एग्जैक्ट वो पाथ नहीं पता है किस तरह से लिखा जाए, कौन कौन से टिप्स हैं जो उनको एक बेहतर शायर या एक कवि बना सकते हैं, तो उनके लिए क्या आपके टिप्स या क्या मैसेज है?
1: सबसे पहली बात तो ये है कि आप लिखने से पहले सुनिए और पढ़िए। जब आप 10 शेर सुनेंगे, 20 शेर सुनेंगे या पढ़ेंगे, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 22वां शेर आपके अंदर से निकलेगा या 22वीं कविता आपके अंदर से निकलेगी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पढ़ते रहिए और सुनते भी रहिए। जब हम मंचों के कवियों को सुनते हैं तो उससे हमें अंदाज पता चलता है किस तरह से चीजें रखी जाती हैं, परोसी कैसे जाती है, प्रेजेंटेशन कैसी होती है। मैंने बहुत सुना है हर कवि को, हर मुझे लगता है आजकल जितने भी कवि और शायर हैं, दुबई मुशायरा से लेकर और आपके लाल किला के कवि सम्मेलन जितने भी हैं, मैंने उनकी एक एक कविताओं को 4-4 बार भी सुना है। क्यों? क्योंकि मुझे उनके हर एक अंदाज को सुनकर महसूस करना, ऑब्जर्वेशन करना, तो वो बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात क्या है कि जैसे आप नए कवि हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात, जैसे जो कुछ भी आपके अंदर आ रहा है उसको शब्द देते रहिए। ये मूल्यांकन मत कीजिए यार ये पंक्ति तो बहुत छोटी है, ऐसा तो नहीं होता। अपना मूल्यांकन करने के लिए आप बड़े कवियों की जो साहित्य है उसका सहारा लेंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो भी अंदर आ रहा है उसको शब्द देते रहिए। लिखना महत्वपूर्ण है, बाजार में निकलना कम।
0: क्या बात है,
1: लिखना ज्यादा, लिखते रहोगे तो आप जिंदे रहोगे अगर आपके अंदर ये चीज है तो।
0: जी जी, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए, थैंक यू।
1: बहुत बहुत आभार मैम आपका।
0: जी, और लिसनर्स आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके और मैं हूँ आपकी अपनी
1: रेट्रो वाली सपना
0: और ले आई हूँ आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप, मैं और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार। आज मैं जिस स्टार की बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने कभी भी हीरोइन बनने की रेस में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि हर कैरेक्टर को इतना पावरफुल बना दिया कि लोग उन्हें उनके नाम से नहीं उनके काम से जानने लगे। ये बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं जिनके लिए स्क्रीन टाइम ने कभी मैटर ही नहीं किया, चाहे वो 5 मिनट का रोल हो या फिर पूरी फिल्म का रोल। जब भी वो स्क्रीन पर आती हैं, सारी अटेंशन वही ग्रैब कर लेती हैं। नेशनल अवार्ड विनर, हंड्रेड्स ऑफ मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस और हर इमोशन को इतनी ऑनेस्टी से निभाने वाली एक्ट्रेस। आज हम जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग जर्नी और वो वजह जिसने उन्हें इंडियन सिनेमा की सबसे रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल कर दिया। किसकी बात कर रही हूँ बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ सस्पेंस तो रहना ही चाहिए। चलिए, जब तक आप सोचिए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तब तक सुनाती हूँ आपको कुछ खूबसूरत से गीत और जल्द मुलाकात होगी आपसे यहीं।

0: आज मैं आपको बताती हूँ प्लास्टिक इस्तेमाल करने के दो फायदे।
1: लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल।
0: पहला फायदा, आपका हर दिन संडे जैसा हो जाएगा, क्योंकि दमा और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां आपको बेड से उठने नहीं देंगी।
2: ये भगवान क्या जुलुम है।
0: दूसरा फायदा, आपके बच्चे दिन रात पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दिमाग कमजोर होने की वजह से उन्हें एक ही चैप्टर बार बार पढ़ना पड़ेगा।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।
4: चेहरे को छूती सर्द हवाओं का सवेरा, धुंध में खोती शाम तुझसे है। 24 घंटे में कुछ मिनटों की फुर्सत, जुकाम में आराम तुझसे है। तुझी से है कैंटीन का बिल, टपरी पर मिलते दो दिल। तुझी पे खत्म पुराने दोस्तों में लड़ाई, और नए रिश्ते की बात तुझसे है। मौसम चाहे जो भी रहे, तेरा ही नाम जुबां पर आए। चाय चाय बस चाय, बातों की मस्ती और चाय की चुस्की के साथ होगी रेडियो महारानी पर मोहब्बत के नगमों की बरसात।

कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते। जब भी आप इन्हें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना तो अभी अभी मैंने सुना है और हमेशा मेरे कानों में रहता है। खैर, ये भी एक ऐसा ही गीत रहा जिसे जया भादुड़ी और संजीव कुमार पर पिक्चराइज किया गया था और फिल्म थी अनामिका। इसी गीत के साथ स्वागत है एक बार फिर से रात बाकी बात बाकी में, जहां मैं बात करने जा रही हूं एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिनका जन्म 25 सितंबर 1977 पंजाब में हुआ। इनके पिताजी लंदन में काम किया करते थे और इनकी मदर नलिनी दत्ता, जो कि पैशनेटली एक कथक डांसर और एक ऑथर थी, बट प्रोफेशनली शी वाज अ डॉक्टर, जो कि हमेशा अपनी बेटी को सपोर्ट किया करती थी। खैर, मैंने अभी तक अपने गेस्ट का नाम नहीं बताया, मैं आज बात करने जा रही हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाल और पंजाबी कुड़ी दिव्या दत्ता जी की, जिन्होंने सिर्फ अपनी एक्टिंग से नहीं, अपनी आवाज से भी नहीं, बल्कि अपनी आंखों से भी हर किसी को अपना दीवाना बना रखा है। तो दिव्या अपने फादर से बहुत ज्यादा अटैच थी, लेकिन इनके फादर जब लंदन चले गए काम के लिए तो ये इतनी डिसहार्टन हो गई कि इन्होंने एक बार अपने ताऊजी से ये कहा कि क्या मैं आपको पापा कहकर बुला सकती हूँ। जब इनके फादर साहब को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया और अपनी प्यारी बिटिया दिव्या के पास हिंदुस्तान वापस चले आए। पर यहाँ आकर उनका साथ ज्यादा वक्त का नहीं रहा और बहुत जल्दी दिव्या ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया। खैर, कहते हैं कि हर रात के बाद एक सवेरा होता है। ऐसा ही सवेरा बनकर इनकी मदर नलिनी दत्ता इनकी जिंदगी में आई और उन्होंने अपनी बेटी को हर तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। साथ ही एक और भी ऐसी इंस्पिरेशन रही इनकी लाइफ में जिन्होंने इन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रेरित किया। ये कोई और नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स हैं जो कि हर बडिंग आर्टिस्ट के आइडल रहे हैं। ये हैं अमिताभ बच्चन साहब, जिनसे दिव्या इतनी इंस्पायर्ड थी कि हमेशा उनकी मिमिक्री किया करती थी। खैर, अपने आइडल को एक बार स्कूल स्टेज पर भी प्रेजेंट करने का दिव्या को मौका मिला और वहीं से हर कोई दिव्या की एक्टिंग का दीवाना हो गया, एक्सेप्ट वन। इट वॉज नन अदर देन हर क्लास टीचर, जो कि ये मानती थी कि फिल्म इंडस्ट्री कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। इसलिए वो हमेशा दिव्या को ये समझाया करती थी कि एक्टिंग की तरफ कम और पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दे। खैर, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब एक्टिंग को एक अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था। दिव्या को भी इस बात से होकर गुजरना पड़ा, पर इनकी मदर हमेशा ये कहती थी कि जो दिल में आए, जो करना चाहो वो सब करो। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन थी जो इनकी मदर ने दिव्या पर इम्पोज की थी। वो क्या थी कंडीशन, आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल इतनी सारी बातें हो गई हैं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है ना।

0: मैं जितेश मल्होत्रा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक फरीदाबाद, रेडियो महारानी 89.6 के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा हेलमेट एवं सीट बेल्ट पहने, गाड़ी निर्धारित गति सीमा व निर्धारित लेन में ही चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, ट्रैफिक लाइट्स को देखकर ही आगे बढ़ें व रुकें, और यदि आप बीमार हैं या थके हुए हैं तो वाहन ना चलाएं, और पैदल चलने वाले यात्री सिर्फ ज़ेब्रा क्रॉसिंग या फुटओवर ब्रिज से ही सड़क को पार करें। धन्यवाद।
1: will tell you two advantages of cutting trees.
2: देख रहा है बिनो, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है।
1: पेड़ काटने का पहला फायदा, आप सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स भरने वाले नागरिक बन जाएंगे, क्योंकि फ्री में मिलने वाली ऑक्सीजन भी आपको लाखों में खरीदनी पड़ेगी।
3: गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है।
1: दूसरा फायदा, आपके साथ साथ आपका शहर भी पढ़ा लिखा हो जाएगा, क्योंकि हर गर्मी में उसकी डिग्री बढ़ती चली जाएगी।
4: ना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ।

कुछ दास्तानें अजीब होती हैं तो कुछ इतनी खूबसूरत कि जिनके बारे में बात करने का हमेशा ही मन करता है। जैसे आज मैं जिस अदाकारा की बात करने जा रही हूँ, इनके बारे में बात करते हुए मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है कि इन्होंने अपने बचपन को इस मजबूती से पकड़ के रखा कि आज वो जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए शायद इन्हें कई इम्तिहानों से होकर गुजरना पड़ा होगा। स्वागत है आप सभी का रात बाकी बात बाकी में, और आज मैं बात कर रही हूँ दिव्या दत्ता जी की, जिन्होंने बचपन में ही अपने फादर को खो दिया, पर इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ निभाया उनकी माँ ने, जो कि एक दीवार बनकर दुनिया और इनके बीच में खड़ी हो गई थी। खैर, दिव्या इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को हमेशा ही इंस्पिरेशन माना करती थी और उन्हें मिमिक किया करती थी, और उनकी मिमिक्री करते करते वो अपने स्कूल में हर किसी की फेवरेट भी बन गई थी। जहाँ इनका पूरा फोकस एक्टिंग पर रहा करता था, वहीं इनके छोटे भाई का फोकस अपनी बहन को अपने कैमरा से कैप्चर करने में रहता था। उसकी फेवरेट थी उसकी बड़ी बहन, इसलिए हमेशा ही उसकी इमेजेस क्लिक किया करता था। खैर, यहाँ तो दिव्या बिजी थी अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ताकि वो फिल्म इंडस्ट्री में जा सके। इसके लिए उनकी मदर हमेशा ही उन्हें अपनी पोएट्री, अपने मोनोलॉग्स दिया करती थी, जिन्हें दिव्या बाय हार्ट कर लेती थी और किसी न किसी मौके पर स्कूल स्टेज पर परफॉर्म किया करती थी और सबकी वाहवाही लूट लिया करती थी। ऐसे ही करते करते वो वक्त आया जब दिव्या और उसके छोटे भाई ने मजाक मजाक में कुछ इमेजेस एक टैलेंट हंट में भेज दी, जहां पर दिव्या का सिलेक्शन भी हो गया। खैर, ये टैलेंट हंट कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि सोनाली बेंद्रे जैसी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी कलाकार जो आज कलाकार बनी है, पहले तो वो भी एक कंटेस्टेंट थी, इस टैलेंट हंट में हिस्सा ले रही थी। और वहीं दूसरी ओर सुभाष घई और शेखर कपूर जैसे फेमस डायरेक्टर्स इस टैलेंट हंट को जज कर रहे थे। फर्स्ट राउंड हुआ और वो बहुत अच्छा गया। दिव्या दत्ता ने अपनी मदर की लिखी हुई एक पोएम पढ़ी, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट भी हो गई, और उसके बाद इन्हें कई चीजों के लिए ट्रेन भी किया गया। फाइनल राउंड तक पहुंचते पहुंचते दिव्या थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, पर जिसके साथ माँ हो वो पीछे कैसे रह सकता है। दिव्या का साथ एक बार फिर से उनकी माँ ने निभाया और उनके लिखे हुए मोनोलॉग को दिव्या ने स्टेज पर परफॉर्म किया, एंड शी बिकेम द विनर ऑफ दैट टैलेंट हंट। और यहीं से दिव्या की एक अलग जर्नी शुरू हुई। यहाँ दिव्या को विनर बनने के बाद भी कई तरीके से ट्रेन किया गया। खैर, इसी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अपने आइडल से मिलने का मौका भी मिला। ये आइडल मैं पहले बता चुकी हूँ, ये आइडल थे अमिताभ बच्चन साहब, जो वहाँ विनर को ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन दिव्या तो उन्हें देख कर इतनी नर्वस हो गई, इतनी कॉन्शियस हो गई कि वो अपनी जगह से ही नहीं हिल पाई। और जब अमिताभ सर वहां से चले गए, उसके बाद सबने उन्हें जगाया कि भाई दिव्या क्या कर रही हो, तुम्हारे आइडल चले गए हैं। तो दिव्या के मुंह से जो पहले शब्द निकले वो आज हकीकत में बदल चुके हैं। दिव्या ने कहा कि आज तो मेरे आइडल मेरे आगे से चले गए हैं, लेकिन वो दिन जल्द आएगा जब मैं उनके साथ काम करूंगी। खैर, ये मौका भी किस्मत ने दिव्या को दिया, पर पहले मैं आपको बता दूं कि वो कंडीशन क्या थी जिसने बांध रखा था दिव्या को। दरअसल दिव्या की मदर हमेशा से ये चाहती थी कि दिव्या जो भी करना चाहती है, जो भी बनना चाहती है वो बन सकती है, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक थी कि अपना पैशन फॉलो करने से पहले दिव्या को अपनी

0: आपको बताती हूँ सिगरेट या तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स लेने के दो फायदे।
1: क्या बात, ये बात है।
0: पहला फायदा, आपके घर पर कभी चोरी नहीं होगी क्योंकि रात भर खास खास कर आपको नींद ही नहीं आएगी।
2: ये गड़बड़ है बाबा।
0: दूसरा फायदा, आप स्पेशल ह्यूमन बन जाएंगे क्योंकि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बाकी लोगों से दो गुना ज्यादा हो जाएंगे।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।
4: रेडियो महारानी पर बिताएं सुकून का एक मिनट। मौके सड़कों पर लगी लाइट्स की तरह होते हैं, ये हमारे सफर की दूरी तो कम नहीं कर सकते पर रास्तों को रोशन जरूर करते हैं। यही है आज की कहानी, एक मौका। एक मौका, एक मजदूर को समुद्र किनारे एक बड़ा शंख हाथ लगता है जिसको बेचकर वो अच्छी खासी कीमत कमा सकता था। ये देखकर वहीं खड़ा दूसरा मजदूर भी बड़े शंख की तलाश में मिट्टी खोदना शुरू कर देता है। उसके

कई छोटे शंख लगते हैं, पर वो उन्हें फेंक देता है और सिर्फ बड़े शंख को ही ढूंढने में पूरी शाम बिता देता है। रात को बाजार से लौटने के बाद पहला मजदूर बताता है कि उसे बड़े शंख को बेचने की कीमत पूरे 1000 रुपए मिली। ये सुनकर दूसरा मजदूर चिढ़ जाता है, पर उसकी चिढ़ अफसोस में बदल जाती है, क्योंकि जिन छोटे शंखों को वो फेंक रहा था उसे भी पहला मजदूर बाजार में बेच आया था, जिसके बदले उसे पूरे 3000 रुपए मिले थे। और ऐसे मजदूर ने गवा दिया एक मौका।

बाजीगर फिल्म का टाइटल ट्रैक जो भी आप कर रहे थे एंजॉय, और इसी के साथ एक बार फिर से दिव्या दत्ता के साथ हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने लेकर अपना शो रात बाकी बात बाकी सपना हूं मैं आपके साथ। और आज दिव्या दत्ता की जो हम बातें कर रहे हैं, सच में मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पर्सनली उन्हें जानती हूँ। और उनकी जो स्टोरी है वो इतनी इंस्पायरिंग है, एक ऐसी बच्ची जिसने बचपन में ही अपने फादर को खो दिया, किस तरह से मजबूती से खड़े कर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अकेले अपना एक मुकाम हासिल किया। ये छोटी बात नहीं है किसी भी शख्स के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, स्पेशली जब वो आर्टिस्ट एक फीमेल हो। खैर प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, लेकिन इनिशियल स्टेज पर हर कोई हमें तोड़ने को तैयार रहता है। मजबूत इंसान ही अपने प्रोफेशन में, अपने पैशन में आगे बढ़ सकता है, जिसमें आज दिव्या दत्ता का नाम भी शामिल है। खैर टैलेंट हंट में विनर बनने के बाद जब ये पहुंची फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे पर, तो इन्हें ऐसा लगा कि अरे मैं तो विनर बन चुकी हूँ, बहुत सारे एक्टर स्टार्स मुझे ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो मेरे लिए तो दरवाजे खुल ही चुके हैं। लेकिन कोई भी जर्नी इतनी आसान कहाँ होती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिव्या को मिल रहे थे, जिसमें से कुछ एडवर्टाइजमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, तो कुछ म्यूजिक एल्बम्स, तो कुछ फिल्में भी थी। कुछ फिल्में इनकी शॉर्ट हाइट और इनकी कम उम्र को देखते हुए इनसे वापस ले ली गई, तो कुछ फिल्मों में इनका रोल ये कहकर काट दिया गया कि इनका फेस काफी रिजेंबल करता है उस फिल्म की एक्ट्रेस के साथ। खैर यहाँ मैं बात कर रही हूँ बाजीगर फिल्म की, जिसमें शिल्पा शेट्टी को मिलने वाला रोल पहले दिव्या दत्ता को ऑफर हुआ। अगर दिव्या ये रोल कर लेती तो ये उनकी डेब्यू फिल्म हो सकती थी, पर डायरेक्टर को ऐसा लगा कि दिव्या दत्ता और काजोल के फेसेस एक दूसरे से काफी रिजेंबल करते हैं, इसलिए ये फिल्म दिव्या दत्ता से लेकर शिल्पा शेट्टी की झोली में जा गिरी। खैर ये पहली ऐसी फिल्म नहीं थी, ऐसी बहुत सारी फिल्में थी जो दिव्या को मिलते मिलते रह गई। 1994 में फिल्म इश्क में जीना इश्क में मरना फिल्म से दिव्या ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया। ये फिल्म दिव्या के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, लेकिन ऑडियंस के लिए नहीं, इसलिए उन्होंने दिव्या को इस फिल्म में कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत अच्छा कमाल नहीं दिखा पाई। धीरे धीरे दिव्या ने बहुत सारी फिल्में की और एक मुकाम ऐसा आया जब इन्हें समझ में आ गया कि लीड रोल में इनकी दाल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गलने वाली, इसलिए इन्होंने कैरेक्टर रोल्स भी एक्सेप्ट करने स्टार्ट कर दिए। पर वो कहते हैं ना कि आप काम करते रहते हैं तो एक टाइम पर आकर आपको ऐसा लगता है कि बस शायद ये काम ही मेरे लिए नहीं बना जिसमें मैं अपना इतना पोटेंशियल लगा रही हूँ। ऐसा ही दिव्या के साथ भी हुआ। There was a time जब उन्हें ऐसा realize हुआ कि नहीं, शायद फिल्म इंडस्ट्री मेरे लिए बनी ही नहीं है। पर एक मौका ऐसी कंडीशन में आपको अपने आप को जरूर देना होता है, जो कि दिव्या ने भी दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद अगर मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट काम करने के लिए मिला तो मैं करूंगी, अदरवाइज फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दूंगी। खैर वो वक्त भी दिव्या की लाइफ में आया जब इन्हें अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। पर वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो दिव्या को भी अच्छे प्रोजेक्ट्स पाने के लिए कुछ खोना पड़ा था। क्या खोया था दिव्या ने कुछ पाने के लिए, वो आपको जरूर बताऊंगी। तब तक हम एंजॉय करते हैं शिल्पा शेट्टी पर पिक्चराइज एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, चिरक दिल मेरा। वैसे इस हसीन मौसम में गोरिया दिल चुरा ही बहती है।

0: बताएं सुकून का एक मिनट।
1: पूरी दुनिया को डुबोने की ताकत रखने वाला समुद्र क्यों तेल की एक बूंद को डुबा नहीं पाता, यही है आज की कहानी। अपनी अपनी खूबियां। एक बड़ा बिजनेसमैन एक नाव पर बैठकर नदी पार कर रहा था। उसने नाव चलाने वाले नाविक को बताया कि वो बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ गांव में फैक्ट्री डालने आया है, पर उसे कोई पहचान ही नहीं रहा, जबकि उसकी फोटो तो रोज अखबार में छपती है। नाविक ने उसे बताया कि गांव में कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो अखबार का क्या करेंगे। बिजनेसमैन ने गांव वालों को बहुत कोसा और कहा, क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का। नदी के बीचों बीच पहुँचते ही नाव अचानक डूबने लगी। बिजनेसमैन डर गया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। नाविक उसे देख कर बोला, घबराओ नहीं साहब, मुझे तैरना भी आता है और डूबते को बचाना भी। यही फायदा है मेरी जिंदगी का, क्योंकि हर किसी में होती है अपनी अपनी खूबियाँ।

चौहान की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और इसी गीत के साथ मैं वापस आ चुकी हूँ स्टूडियो में लेकर आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, जहाँ आज हम दिव्या दत्ता जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनने की इच्छा लेकर कदम रखा। यहाँ इन्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिली, कुछ फिल्मों में भी काम किया, कुछ एड फिल्म्स में भी काम किया, और यहाँ तक कि कुछ म्यूजिकल एल्बम्स में भी इन्होंने काम किया। इनका डेब्यू फिल्म इंडस्ट्री में एक लीड रोल से हुआ था, लेकिन लोगों ने इन्हें लीड रोल में इतना पसंद नहीं किया, तो इन्होंने अपने दिल को समझाया कि भाई साहब, आपको अगर फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना है तो कैरेक्टर रोल्स पकड़ने पड़ेंगे। इन्होंने कई फिल्में ऐसी भी की जिसमें इन्होंने साइड रोल्स यानी कि कैरेक्टर रोल्स भी किए, जिसमें छोटे सरकार, राम और श्याम, राजा की आएगी बारात, घर वाली बाहर वाली, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इसकी टोपी उसके सर, ना जाने ऐसी कितनी फिल्मों में इन्होंने काम किया। पर जो सक्सेस एक आर्टिस्ट को चाहिए होती है, जो रिकॉग्निशन चाहिए होती है, वो अब तक इन्हें नहीं मिल पा रही थी। तो इन्होंने अपने आप को अपना ही डिसीजन सुनाया कि अगर कुछ दिनों के अंदर अंदर मुझे वो रोल नहीं मिला जिसकी मैं तलाश कर रही हूँ, तो मैं फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। पर फिल्म इंडस्ट्री इन्हें कहाँ छोड़ रही थी, क्योंकि 1998 में इन्हें एक ऐसी फिल्म बनी जिसने इनका डिसीजन पूरी तरह से बदल के रख दिया। फिल्म का नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान, और इस फिल्म में इन्होंने हसीना का किरदार निभाया था। ये भी एक कैरेक्टर रोल था, पर इस बार इस फिल्म से इन्हें काफी रिकॉग्निशन मिली। फिल्म सुपर डुपर हिट रही, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये फिल्म कई मायनों में दिव्या दत्ता के लिए बहुत ही कामयाब फिल्म साबित हुई। इसी फिल्म के हिट होते ही एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी दिव्या की झोली में आकर गिरी, क्योंकि उस वक्त के एक बहुत ही वर्सेटाइल पंजाबी एक्टर और सिंगर गुरदास मान साहब के साथ इन्हें एक फिल्म ऑफर हुई। फिल्म का नाम था शहीदे मोहब्बत बूटा सिंह। वैसे शायद आप लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे मैं उन्हें बता दूं कि इसी फिल्म को 2001 में रीमेक किया गया था, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी इसी कॉन्सेप्ट पर एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था गदर, और दिव्या दत्ता और गुरदास मान साहब को रिप्लेस करते हुए सनी देओल और अमीषा पटेल इस फिल्म में नजर आए थे। कमिंग बैक टू दिव्या, दिव्या ने इस फिल्म में एक पंजाबी किरदार निभाया था, जो कि उनकी ओरिजिनलिटी और स्पेशलिटी थी, इसलिए वो इस किरदार को पूरी तरह से जी पा रही थी। लोगों को उनका काम इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने दिव्या को वापस जाने से हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया, और इसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। दिव्या के पास लाइन लग गई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की, और वो लोग जो अब तक दिव्या को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे, अब वही उनके दरवाजे पर उनसे उनका वक्त मांग रहे थे। यही तो खूबसूरती है ना सक्सेस की, जब वो आती है तो ऐसी छा जाती है कि हर कोई आपके पीछे पड़ जाता है। तो खैर, यही स्टारडम इस वक्त दिव्या एंजॉय कर रही थी। जब तक दिव्या एंजॉय करती है अपना स्टारडम, चलिए हम एंजॉय कर लेते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक को। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैंने अपनी चॉइसेस तो आपको बता दी कि दिव्या की कौन कौन सी फिल्में मुझे पसंद थी। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है जिसमें दिव्या का किरदार आपको बहुत पसंद आया। नंबर है मेरा 9654896896। आप चाहे तो मुझे कॉल करके बता सकते हैं, या फिर मुझे टेक्स्ट करके भी अपना जवाब दे सकते हैं। इंतजार कर रही हूँ मैं आपके कॉल का, और मेरा इंतजार कर रहा है ये म्यूजिकल ब्रेक।

0: आज मैं आपको बताता हूँ पानी बर्बाद करने के दो फायदे।
1: कौन है ये पागल आदमी?
0: पहला फायदा, आपको बारिश से बचने के लिए छाता नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि नदियाँ सूख जाने से बारिश ही नहीं होगी।
2: बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी।
0: दूसरा फायदा, आप एनिमल लवर बन जाएंगे और आपको ऊंट पालना पड़ेगा, क्योंकि पानी सूख जाने से आपका सारा इलाका रेगिस्तान बन जाएगा।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को।

0: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेडियो महारानी पर। सपना जुड़ी हुई हूँ मैं आपके साथ। और म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आप सभी से एक सवाल किया था कि दिव्या दत्ता की वो फिल्म बताइए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट हैं और बहुत सारे कॉलर्स भी मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए जुड़ते हैं अपने पहले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो मैम।
0: हाय, इतनी खूबसूरत आवाज है आपकी, तो चलिए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए अपनी खूबसूरत आवाज में।
1: मैम मेरा नाम अनुष्का है।
0: हाय अनुष्का, आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं एक स्टूडेंट हूँ।
0: ओके, और कहाँ रहती हैं आप?
1: मैम

0: लेकर आए
1: जी। बिल्कुल,
0: उसमें मुझे उनका पंजाबी एक्सेंट बहुत ही ज्यादा पसंद है।
1: बिल्कुल, ये सिर्फ आपको ही नहीं, ये किरदार बहुत से लोगों को बहुत पसंद आया। और इस फिल्म में अगर कोई प्रीति जिंटा जी को टक्कर दे सकता था तो वो रानी मुखर्जी नहीं, हमारी प्यारी शब्बो दिव्या दत्ता जी थी। अच्छा चलिए, मैं इसी फिल्म से रिलेटेड एक छोटा सा फैक्ट भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने दिव्या दत्ता को रीलॉन्च किया था फिल्म इंडस्ट्री में।
0: ओके मैम,
1: तो थैंक यू सो मच अनुष्का, आपने इस फिल्म का जिक्र किया और आप हमारे साथ जुड़ी हमारे शो में। स्टे कनेक्टेड एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।
0: ओके मैम, थैंक यू।
1: भाई अब शब्बो हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो चलिए शब्बो के बारे में ही आपको कुछ बता देती हूँ। दरअसल जब यश राज फिल्म्स के थ्रू दिव्या जी को ये रोल ऑफर हुआ, उस वक्त ये लंदन में किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, पर ये साइड रोल नहीं करना चाहती थी। ये चाहती थी कि प्रीति जिंटा का रोल इन्हें ऑफर हो, लेकिन यश राज जी की तरफ से यही पॉइंट इनके सामने आया कि इन्हें इस रोल के लिए मना नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस फिल्म को कम्प्लीटली ना कहने से पहले एक बार अपनी मदर से ये डिस्कस कर लूं कि मुझे ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं। और जैसे ही इन्होंने अपनी माँ के साथ इस स्क्रिप्ट को शेयर किया तो उन्होंने इमीडिएटली कह दिया कि ये तुम्हारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा, तुम्हें इस फिल्म को करना चाहिए। और उनकी बात मानकर दिव्या जी ने इस फिल्म को एक्सेप्ट किया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में शब्बो ने हर मेन लीड को पीछे छोड़ दिया और शब्बो के लिए ये फिल्म बन गई एक रीलॉन्चिंग फिल्म। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा दिव्या जी कहती हैं। खैर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे अभी आपसे कहनी है, पर फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। लेकिन जाने से पहले बता दूं कि अभी बहुत सारे लिसनर्स हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं, जुड़ेंगे आगे हम उनसे भी।

0: आपको बताता हूँ पानी बर्बाद करने के दो फायदे।
1: कौन है ये पागल आदमी?
0: पहला फायदा, आपको बारिश से बचने के लिए छाता नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि नदियाँ सूख जाने से बारिश ही नहीं होगी।
2: बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी।
0: दूसरा फायदा, आप एनिमल लवर बन जाएंगे और आपको ऊंट पालना पड़ेगा क्योंकि पानी सूख जाने से आपका सारा इलाका रेगिस्तान बन जाएगा।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को।

0: तो लो जी, वक्त आ चला है एक और कॉलर के साथ जुड़ने का। अरे यार दिव्या दत्ता जी, आपकी फैन फॉलोइंग देख रहे हैं, अब कितने लोग जुड़ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि इस वक्त कॉल पर मेरे साथ कौन मौजूद है।
1: हेलो हेलो मैम,
0: क्या बात है। मुझे लगता है दिव्या दत्ता जी, आपकी जितनी भी फैन फॉलोइंग है ना, उनमें फीमेल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज।
1: हाय मैम, मेरा नाम दीक्षा है एंड मैं सेक्टर 29 फरीदाबाद से हूँ।
0: हाय दीक्षा, वेलकम टू रेडियो महारानी। तो चलिए अब आप मुझे बताइए दिव्या दत्ता जी की उस फिल्म के बारे में जो कि आपको बहुत पसंद है।
1: सो मैम, मुझे दिव्या दत्ता जी का भाग मिल्खा भाग में जो उनका बड़ी बहन का रोल था, वो रोल बहुत ज्यादा पसंद आया था एंड उसमें उनका नाम इसरी कौर था। और इस फिल्म से मुझे बहुत कनेक्टेड फील हुआ, उनके रोल से बहुत कनेक्टेड फील हुआ, क्योंकि उनका जो प्यार, त्याग और हिम्मत उन्होंने दिखाई है एज अ बड़ी बहन, वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं खुद अपने घर में सबसे बड़ी बहन हूँ और सब मेरे सब छोटे भाई बहन हैं, तो इसलिए मुझे वो फिल्म बहुत पसंद आई।
0: एग्जैक्टली, हर बड़ी बहन के लिए ये एक ड्रीम था और ऐसा लग रहा था जैसे उनका त्याग बिल्कुल सामने फिल्म पर आ गया हो। थैंक यू सो मच दीक्षा, हमें इस फिल्म के बारे में याद दिलाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू सो मच दीक्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भाग मिल्खा भाग फिल्म का ही एक बहुत ही खूबसूरत सा किस्सा भी मेरे पिटारे में मौजूद है, तो चलिए आपको वो किस्सा सुना ही देती हूँ। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में उन्होंने फरहान अख्तर साहब की बड़ी बहन का किरदार निभाया, लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि फरहान पर उन्हें लाइफ टाइम क्रश था और वो कभी भी इस रोल को नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अपने क्रश की बड़ी बहन बनना बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो दिव्या जी भी यही मानती थी और वो ये रोल नहीं करना चाहती थी, पर जब उन्हें ये सलाह दी गई कि आप 2 दिन का वक्त ले लीजिए और 2 दिन बाद आप हमें अपना डिसीजन सुनाइएगा, जब अपना डिसीजन देने के लिए वो सेट पर पहुंची तो उन्होंने वहां पर फरहान को एक ऐसे अवतार में देखा जो कि मिल्खा सिंह का था, और उन्हें किरदार में इस तरह से घुसे हुए जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि एक किरदार के लिए जब फरहान अपनी पूरी लुक चेंज कर सकते हैं तो अपने किरदार के लिए वो माइंडसेट नहीं चेंज कर सकती। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने क्रश की बड़ी बहन का रोल इस फिल्म में प्ले किया एंड व्हाट एन अमेजिंग रोल, स्पेशली अगर मैं बात करूं उस सेगमेंट की जहां मिल्खा सिंह आकर अपनी बड़ी बहन को अपना इंडिया का ब्लेजर पहनाते हैं और उन्हें कहते हैं कि पॉकेट में हाथ डालो, और पॉकेट में उसकी बहन की वही बालियां होती हैं जो उन्होंने किसी वक्त पर बेच दी थी अपने भाई को जेल से छुड़ाने के। और इसी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ एक कॉलर, चलिए बात करते हैं इनसे। हेलो।
2: हेलो मैम।
0: हाय, मेरी बात किससे हो रही है?
2: मेरा नाम तंदी है और मैं जेसीबोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट।
0: ओके, हाय तन्वी। तो तन्वी, वैसे तो आपने बता दिया दैट यू आर अ स्टूडेंट, तो अब आप मुझे ये भी बता दीजिए कि हम दिव्या दत्ता जी की जो बात कर रहे हैं तो उनकी कौन सी फिल्म ऐसी है जो आपके दिल के काफी करीब है?
2: जी हाल ही में आई दिव्या दत्ता जी की मूवी चिरैया, जिन्होंने उसमें एक्टिंग इतनी कमाल की थी, उस मूवी में उनके इमोशंस एक्सप्रेशन इतने अच्छे थे, बहुत ज्यादा जो लोगों को कनेक्ट करा, और उनका कॉन्फिडेंस, उनकी पावरफुल परफॉर्मेंस देख के हमको इंस्पिरेशन मिलती है। तो मेरी तरफ से यही था कि उनको उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। एग्जैक्टली, ये सिर्फ आप नहीं बल्कि सब मानते हैं कि ये एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं, क्योंकि इस फिल्म में जिस सोशल मैसेज को ये फॉरवर्ड कर रही हैं, आई थिंक वो लाउड एंड क्लियर मैसेज हम सब तक पहुंच चुका है। और इस मूवी को हमारे सामने लाने के लिए तन्वी, थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे रेडियो महारानी के साथ जुड़ते रहिए।
2: थैंक यू मैम।
0: ओके बाय, ऑल द बेस्ट। खैर, तन्वी ने जिस फिल्म के बारे में बात की, ये फिल्म अपने आप में एक ऐसे बोल्ड सब्जेक्ट पर बनी हुई फिल्म है जिसके बारे में हम आम तौर पर बात नहीं करते, लेकिन दिव्या जी ने जो रोल इसमें प्ले किया वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल है। और जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो गांव की आसपास की लेडीज जो इनके इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई थी, उन्हें ऐसा लगता था कि दिव्या वॉज दी फीमेल जो उनको उनकी फैमिली से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन दे सकती हैं। ये देखकर दिव्या वॉज ओवरवेल्म्ड और उन्हें ऐसा लगा कि काश उनके हाथ में भी कोई ऐसी पावर होती जिससे कि वो इन सभी महिलाओं की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकती। दिव्या जी, पहली बात, जो बोल्ड सब्जेक्ट आपने पिक किया इस फिल्म के लिए उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि जनरली फीमेल्स इस टॉपिक पर बात नहीं करती और खुलकर तो सबके सामने बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन आपने इस कॉन्सेप्ट को इतने खूबसूरत तरीके

रेडियो महारानी पर बिताएं सुकून का एक मिनट। एक घर से छोटा होता है उसका दरवाजा, दरवाजे से छोटा होता है उस पे लगा ताला, और ताले से छोटी होती है उसकी चाबी, पर उसी छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। यही है आज की कहानी, छोटी सी कोशिश। छोटी सी कोशिश। एक बार एक झोपड़ी में आग लग गई। उसे बुझाने के लिए एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर फेंकने लगी। पास पेड़ पर बैठे बंदर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके इतने पानी से क्या ही होगा, जिस पर चिड़िया ने जवाब दिया, ये बात सच है कि मैं इस आग को बुझा नहीं सकती, पर जब भी इसे बुझाने वालों की गिनती होगी तो उसमें मेरा नाम भी शामिल होगा और उस दिन सफल हो जाएगी मेरी ये छोटी सी कोशिश।

और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेडियो महारानी पर। रात बाकी बात बाकी में सपना बनी हुई हूँ मैं आपके साथ। और आज हमने बात की एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिन्होंने अपने एक्टिंग के करियर में पूरी 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, ना केवल हिंदी बल्कि पंजाबी, मलयालम और इंग्लिश सिनेमा में भी इन्होंने अपीयरेंस दी है। छोटी सी उम्र में इन्होंने 25 से ज्यादा अवार्ड्स अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं, जिसमें नेशनल फिल्म अवार्ड्स, फिल्म फेयर OTT अवार्ड और 2 आईफा अवार्ड्स भी शामिल हैं। अच्छा, दिव्या दत्ता जी सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि अपनी आवाज के लिए भी जानी जाती हैं। अगर आपकी आंखें बंद कर दी जाए और इनका कोई डायलॉग सुनाया जाए तो आप तुरंत ही इन्हें पहचान लेंगे। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि इन्हें डबिंग के लिए कभी कोई ऑफर ना आया हो। खैर आया, बहुत फिल्मों के लिए आया, लेकिन इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस सिर्फ ये कहता है कि कभी किसी और को अपनी आवाज ना दो। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ एक फिल्म में एक्ट्रेस को डब किया था और उसके बाद इन्होंने कानों को हाथ लगाया और कहा कि मैं आज के बाद किसी भी एक्ट्रेस को अपनी आवाज नहीं दूंगी। खैर, इन्हें हम फीमेल गुलजार भी कह सकते हैं क्योंकि ये ना केवल अच्छा बोलती हैं बल्कि बहुत अच्छी पोएट्री भी करती हैं, और जितनी अच्छी पोएट्री करती हैं उतनी अच्छी ऑथर भी हैं। दिव्या जी अब तक अपनी 2 किताबें भी पब्लिश करवा चुकी हैं, जिसमें से एक किताब इन्होंने अपनी माँ को डेडिकेट की और एक किताब उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने इन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया, यानी कि फिल्म इंडस्ट्री। इनकी कुछ खूबसूरत फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो वीर जारा, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग, वेलकम टू सज्जनपुर, बदलापुर, धाकड़ और आजकल एक और भी फिल्म इसी लिस्ट में शामिल हो चुकी है, वो है चिरैया। ऐसे बोल्ड टॉपिक्स पर इन्होंने काम किया और अपना एक्टिंग का लोहा इस इंडस्ट्री को मनवा ही दिया है। आज मुझे दिव्या जी की बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको ये शो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। और साथ ही मैं एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहूंगी अपने सभी कॉलर्स का जो आज के शो में मेरे साथ जुड़े। इसी के साथ छोड़े जा रही हूँ आपको कुछ खूबसूरत गीतों के साथ, और साथ ही आज से शुरुआत कर रही हूँ एक नई पहल की, यानी कि सुनाने जा रही हूँ आपको एक कहानी, और आशा करती हूँ कि ये कहानी आप सबको अपनी सी लगेगी और आपको पसंद आएगी। कैसे लगी ये कहानी ये भी मुझे जरूर बताइएगा, ताकि आगे भी मैं और मेरी टीम इस तरह की कहानियों पर काम कर सकें। फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा। अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और हाँ, प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको।

0: यार मम्मा मेरा टिफिन कहाँ है?
1: मम्मा मेरी टाई नहीं दिखाई दे रही।
2: सिमरन मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है।
3: बहू आज चाय के साथ नमकीन वाले बिस्किट दे देना।
4: सिमरन के घर की हर सुबह कुछ इसी तरह से बीतती थी। हस्बैंड, दो बच्चे और सासू माँ, कुल 5 लोग। सिमरन को पता भी नहीं लगता था कि कब दिन से रात और कब रात से दिन हो जाता था। 21 साल की शादी में कोई ही ऐसा दिन गया होगा जब सिमरन ने छुट्टी ली हो। जिंदगी तो मशीन बन गई थी, फिर भी सिमरन पूरी ईमानदारी से सबको खुश रखने के लिए सारा दिन ऐसे नौकरी कर रही थी जिसकी उसे सैलरी भी नहीं मिलती। हर सोमवार सिमरन अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए व्रत रखा करती थी और शिवलिंग पर जल चढ़ाने पास के मंदिर जाया करती। आज भी सिमरन अपने तय वक्त पर मंदिर पहुंचने के लिए निकली तो थी, पर वहां तक पहुंची नहीं क्योंकि रास्ते में ही एक बाइक वाले से टकरा कर रोड पर गिर पड़ी थी। आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई और उसी भीड़ में से एक आवाज ऐसी भी थी जिसने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
5: और सिमरन बता, क्या जी ली तूने अपनी जिंदगी?
4: सबने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए सिमरन को निहार रहा था।
3: अविनाश तुम ही हो ना? आउच,
5: संभल कर। सिमरन तुम ठीक तो हो ना?
3: हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तुम परेशान मत हो।
5: यार सिमरन तुम अपने आप को इतना ज्यादा समझदार क्यों समझती हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा?
3: अरे अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना नाराज हो रहे हो?
5: तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, जब देखो अपना हुक्म चलाती हो।
3: और तुम हर बार की तरह इस बार भी ओवर रिएक्ट कर रहे हो, अब चुप हो जाओ वरना।
5: वरना क्या बोलो?
3: वरना तुम्हें हर बार की तरह इस बार भी मुझे चाय पिलानी पड़ेगी, समझे?
5: और जिसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। वैसे भी कितने साल हो गए हैं तुम्हारे साथ बैठकर चाय पिए हुए।
3: आज कितने सालों बाद किसी से दिल खोल कर लड़ाई की है, बाय गॉड मजा आ गया।
5: चलो अब साइड में आ जाओ वरना दूसरी बाइक वाला ना शायद इतना मेहरबान नहीं होगा तुम पर।
3: अब चाय पी ले प्लीज।
5: भैया
3: दो अदरक वाली कड़क चाय। तुम्हें याद है?
5: हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ घर में कौन कौन है?
3: दो बच्चे, मदर इन लॉ और हस्बैंड। अब तुम बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है?
5: मैं, दो बिल्लियाँ और 4 कुत्ते, मैं और मेरा छोटा सा परिवार, बस और कुछ नहीं।
3: और तुम्हारी वाइफ?
5: उसे तो कोई और ब्याह के ले गया था आज से 21 साल पहले।
3: डोंट टेल मी तुमने अब तक शादी नहीं की।
5: अरे तुमसे किसने कहा कि मैंने शादी नहीं की? मेरी शादी तो बहुत अनोखी है, मैंने तो किसी की याद के साथ ही 7 फेरे ले लिए थे। एंड आई कैन प्राउडली से दैट आई एम हैप्पीली मैरिड।
3: अभी आई एम रियली सॉरी, मैं क्या करती, पेरेंट्स का प्रेशर ही इतना था मुझ पर कि मैं चाहकर भी नहीं रुक पाई।
5: अरे तुम्हें क्या लगता है मैं इतने सालों के बाद तुम्हें रीजन पूछने आया हूँ?
3: अच्छा तो क्या मुझे अदरक वाली चाय पिलाने आए हो?
5: ना बाबा मैं इतना भी प्यार नहीं करता हूँ तुमसे।
3: प्लीज बताओ ना तुम यहाँ कैसे आए?
5: तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास पड़ा था, बस वही लौटाने आया था।
3: क्या
5: याद है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं मरने से पहले तुम्हें बालियां बनवा कर दूंगा, बस वही प्रॉमिस पूरा करने आया हूँ।
3: अच्छा तुम कौन सा अभी मर रहे हो? बोलो अविनाश सब ठीक है ना?
5: तुम्हें क्या लगता है मैंने अपना सर खुद मुंडवाया है क्या?
3: मतलब ठीक से बताओ ना।
5: मुझे कैंसर है, 4th स्टेज।
3: अभी तुम अपना ट्रीटमेंट कहाँ से करवा रहे हो?
5: डोंट वरी यार आई एम ओके, बस जो वक्त तुम पहले नहीं दे पाई आज वही वक्त मांगने आया हूँ। दे पाओगे मुझे 3 महीने?
3: यार मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ।
5: क्या मुझे मेरा सबसे प्यारा दोस्त मिल सकता है वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए?
3: अभी
5: मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा, सिर्फ 1 कप अदरक वाली कड़क चाय और बहुत सारी बातें।
3: अच्छा तो चलो पहले मेरी बालियां तो दो।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही ना रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

लौंडा दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान टच जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता
0: है। अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो, मैं तो चली को मिनी बस आ गई।
1: सुनो

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो
0: इरशाद।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी जिलायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स OTP सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: यार वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो, मुंह उठा के आगे बढ़ना था, अब मैं चली तुम बोलते रहो।
1: सुनो सुनो।

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर ना करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है,
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
2: है फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोता हूं।
1: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
3: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
2: बहुत भोला है बेचारा, मैं जाने किस पे आएगा।
3: सदा सुरक्षित रहो, अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशा है। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है।
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

बेहतर है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मेरे सब दिखाई दे रहे हैं।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर।
3: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ, रात बाकी बात बाकी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
4: उस पर

0: कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हो है?
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

Yours, पर सेव वॉटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हक के

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: ना ना पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओहो काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले जरा

0: हो?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं, सुनो तो, सुनो तो,

इसलिए आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मेरे लिए, मेरे लिए मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: कहना था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा अच्छा।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं।
2: है तो टेढ़ी मेढ़ी राय, उल्टी पुल्टी बातें,
1: इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना से तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।

0: कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक गुरु श्री प्रेमानंद जी महाराज के विचार।
1: एक दिन मानसरोवर से आवाज आ रही थी, राधा राधा राधा, ऐसी आर्त आवाज आ रही थी कि ये मानसरोवर हमारे वृंदावन में ही है। पहले यमुना जी मानसरोवर के उधर से प्रवाहित होती थी वृंदावन की, अब वृंदावन के किनारे से और मानसरोवर उधर हो गया, तो कहते वृंदावन बाहर नहीं हो, वृंदावन ही है, मानसरोवर वृंदावन के अंतर्गत ही है, बंशीवट मानसरोवर ये सब अंतर में ही है। प्रेम में छकी हुई मतवाली परम सावधान चतुर शिरोमणि ललिता जी के कान में आवाज पड़ी। उस सीधे वहां गई, देखा कौन ऐसे आर्त भाव से पुकार रहा है, तो देखा कि बाल खुले हुए हैं और श्रीअंग से ऐसी सौरभ आ रही है जो अनुराग को बढ़ा रही है। बड़ा सुंदर छापेदार लहंगा पहने हुए, तन में सुंदर साड़ी धारण किए हुए हैं, जो स्वर्णिम सितारों से जड़ी हुई है, सुंदर कंचुकी पहने हुए हैं, श्याम रंग है और फूलों से जटित उसके ऊपर ओढ़नी ओढ़े हुई है और अश्रु प्रवाह हो रहा है और मुख से बोल रहे राधा राधा राधा। ये कौन है जो हमारी स्वामिनी जी का ऐसे आर्त भाव, ध्यान रखना, नारायण बेटे के भाव से पुकारा तो उसी समय हरि पार्षद प्रकट हो गए, तुम राधा राधा बोलोगे श्री जी की सखी सुनकर के उदासीन हो जाएगी, नहीं, जो भगवान को भी आदेश करती है वो सखियां तत्काल आपकी तरफ देखेंगी और उनका देख लेना अपने को निहाल कर देना है। एक बार किसी सखी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी लाडली लाल हमारी संपत्ति हो जाएंगे, ध्यान रखना, बड़ी उदार सखियां हमारी स्वामिनी जी की है। रीझ गई देख कर, अरे मेरी स्वामिनी जी का नाम लेके रो रही, ये राधा नाम है ही ऐसा, जिस दिन रंग चढ़ेगा ना राधा कश वो हृदय की कुछ दशा बदल जाती है।